सुप्रभात, ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज दिन शुक्रवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 30वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 21 अगस्त सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:59 और 3 सेकंड हो रहे हैं। आरंभ होती हमारी आज की यह सभा। आप सबका दिन मंगलमय हो।

0: आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। समाचारों के लिए अब आइए हम आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में देश के बुनियादी ढांचे, संपर्क, सुरक्षा, विदेश नीति और सुशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए दूरगामी योजना बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। श्री मोदी ने डेटा के सही इस्तेमाल पर जोर दिया और इसे देश की महत्वपूर्ण संपत्ति बताया। उन्होंने कहा कि विभागों के बीच सोचने और काम करने के तरीकों में सुधार होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच बेहतर संवाद पर बल दिया, ताकि नीतियां बनाने में नए विचार शामिल हो सके। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को मजबूत बनाने और उसे वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया। जापान के रक्षा मंत्री शिंजीरो कोइजुमी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में जापान की कंपनियों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करने, खासकर रक्षा उपकरणों के विकास और उत्पादन में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री, वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक का विषय है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण।

0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने को स्वीकृति दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इसकी जानकारी दी। श्री शाह ने कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को न्याय और उन्हें मिलने वाली कानूनी सेवाओं का लाभ उठाने में लगने वाला समय कम हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य हिस्सों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
1: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने कहा है कि किसी प्रश्न के उत्तर की चुनौती प्रणाली सभी विद्यार्थियों के लिए निष्पक्ष है। एजेंसी ने इसके महंगे होने की चिंताओं को खारिज कर दिया है। एनटीए ने बताया कि यह एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसमें जेईई मेन, नीट या यूजीसी नेट परीक्षा देने वाले उम्मीदवार अस्थायी उत्तर में मौजूद गलतियों पर आपत्ति जता सकते हैं। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि अगर कोई भी उम्मीदवार किसी प्रश्न को चुनौती देता है और विषय विशेषज्ञ उस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं तो संशोधित उत्तर परीक्षा देने वाले सभी उम्मीदवार पर लागू होता है। और खेलों में नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज भारतीय खिलाड़ी पुरुष और महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल में खेलेंगे। पुरुष डबल्स की जोड़ी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी का मुकाबला चीन के तीसरी वरीयता प्राप्त लियांग वेई खेंग और वांग चांग से होगा। महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद का सामना चीन की चौथी वरीयता प्राप्त चिया यी फेन और झांग शू शियान से होगा। वहीं हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में आज अम्स्टरडेम में भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आइए सुनते हैं आज का चिंतन। विषय है मिथ्याभिमान।

भारी सामानों से लदी एक बैलगाड़ी कड़कड़ाती दोपहरी में खुली सड़क पर जा रही थी। उसी राह एक कुत्ता भी जा रहा था। कुत्ते को एक जुगत सूझी, बैलगाड़ी के नीचे तो छां बनती जाती है, उसके नीचे नीचे चलूं तो चिलचिलाती धूप से बच सकता हूं, राह भी मजे मजे कट जाएगी। वह गाड़ी के नीचे हो लिया, राहत मिली, इत्मीनान से चलने लगा। इत्मीनान भी कभी कभी खुराफात की जड़ हो जाती है। राहत मिली तो दिमाग बेसिर पैर की सोचने लगा। कुत्ते को लगा ये भारी बैलगाड़ी मैं ही खींच रहा हूं, धूप भार से बस्त बैलों को कैसे तो इसका भान हो गया। उन्होंने आपस में मशविरा किया, एक साथ दोनों ने कंधे से जुआ पटक दिया, कुत्ता पिच गया, तुरंत मर गया। जिसने भी यह कथा गढ़ी होगी कुछ सीख देने के लिए ही गढ़ी होगी। मिथ्या अभिमान को दंभ को उचित दंड मिला। सुना है संघर्ष के दिनों में वल्लभ भाई पटेल ने कांग्रेस के एक महाअधिवेशन में अरुणा आसफ अली की किसी उक्ति के उत्तर में यह कथा बताई थी। ये सच हो या न हो, मूल कथा हमारे सामने एक प्रश्न प्रस्तुत कर देती है। कल्पना कीजिए, विरादरी वालों के प्रयत्न से हो, किसी प्रत्यक्षदर्शी के प्रयत्न से हो, यह प्रसंग न्यायालय में विचारार्थ पहुंच जाता है। मान लीजिए कि न्यायाधीश की कुर्सी पर आप हैं, हत्या तो हुई है, बैलों द्वारा ही हुई है, न्याय की दृष्टि से हत्या हत्या है। रियायत की गुंजाइश सिर्फ राजा के प्रसंग में हो सकती है। यदि हत्या विशेष लाचारियों में हो या की गई हो, ध्यान दीजिए, हत्या हो गई हो, की नहीं गई हो, यहां हत्या हुई नहीं, की गई है, शरारतन की गई है। एक गलत सोच को पहचान कर, कुत्ते के भीतर उपजे अहंग को जान कर, उससे किसी का अहित तो हो नहीं रहा था, क्या करेंगे आप? बैलों को फांसी पर चढ़ा देंगे या उन्हें रिहा कर देंगे? कथा रचने वाले ने बैलों के मशविरे का जिक्र तो किया, उन दोनों के आपसी तर्कों की तफसील में न गए। जुआ पटक देने के निर्णय के विरुद्ध दो में से एक यह अनुरोध तो कर सकता था कि जाने दे यार, हमारा क्या बिगाड़ रहा है। आगे जोर देने के लिए यह भी कह सकता था कि किसी का क्या बिगड़ता है। विकल्प तो था उनके पास। कुत्ते की रुग्ण सोच से वे दुखी थे, ठीक था, ऐसे मिथ्याभिमानी सोचों का विरोध तो होना ही चाहिए, पर विरोध का स्वर इतना आक्रामक न हो कि विरोध करने वाले स्वयं विवेक खो बैठे। जूलियस सीजर नाटक में ब्रूटस कहता है, मैं सीजरिज्म को मारना चाहता था, पर बिना सीजर की हत्या किए वह संभव नहीं था। सीजरिज्म खतरनाक हो चुका था। कुत्ते के भीतर जो सीजरिज्म वैचारिक आकार में था, वह किसी का अहित नहीं कर रहा था, आगे भी उससे किसी का अहित होने वाला नहीं था। ऐसे सीजरिज्म को बरजने की जरूरत थी। कुत्ता अगर विवेक खो बैठा था तो बैलों ने भी कोई विवेक सम्मत काम न किया था।

आप सुन रहे थे चिंतन, विषय था मिथ्याभिमान। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

आपने ट्यून किया है 102.1 मेगाहर्ट्ज और इस वक्त आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। लीजिए पेश है कार्यक्रम का ये आखिरी भक्ति गीत।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान की आज की कड़ी।

एक बार सभा में बैठे हुए महाबली रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। राक्षसों की संख्या और जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। सभी राक्षस माया जानते थे और मनमाना रूप बना सकते थे। वे देवताओं को अपना शत्रु मानते थे। रावण ने सोचा, क्योंकि ऋषि मुनि तथा देवगण ऐसे शत्रु हैं जो सामने आकर युद्ध नहीं करते और शत्रु को देखते ही भाग खड़े होते हैं, अतः उन्हें मारने का एक ही उपाय है और वो है ब्राह्मण भोजन, जिससे उन्हें बल मिलता है, यज्ञ, हवन, तप, श्राद्ध आदि में बाधा डालना। उसने अपने बेटे मेघनाथ को आदेश दिया कि वो रण में धीर और बलवान सिद्ध देवताओं को युद्ध में जीतकर बांध लाए। वो स्वयं भी गदा लेकर निकल पड़ा, जिससे समस्त पृथ्वी डगमगाने लगी। सभी दिक्पाल अपना अपना स्थान छोड़कर भाग निकले। रण के मद में मतवाला रावण अपनी जोड़ी का योद्धा जगत भर में दौड़ता खोजता फिरा, किंतु उसे वैसा योद्धा कहीं नहीं मिला। वो सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल, यमराज जैसे अधिकारियों तथा किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, नाग आदि जीवधारियों के हठपूर्वक पीछे पड़ गया। सृष्टि में जहां तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी उसके अधीन हो गए। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा अन्य सुंदरी स्त्रियों को जीतकर

अभी आप सुन रहे थे श्रीराम चरित मानस गान की आज की कड़ी। हम आकाशवाणी के आजमीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:50 और 12 सेकेंड हो रहे हैं। अब आइए हम आपको बता दें आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का एक संक्षिप्त रूपरेखा।

श्रोताओं, सुबह 7 बजे आप सुनेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। सुबह 7:20 का वक्त होगा कार्यक्रम काव्य धारा का। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे कुछ कविताएं। सुबह 7:30 का वक्त होगा गैर फिल्मी गीतों के कार्यक्रम गीत संगीत का। सुबह 8 बजे आप सुनेंगे समाचार प्रभात। 8:15 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज, जिन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। प्रादेशिक समाचार का वक्त होगा सुबह 8:30 पर, आप इसे सुनेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। सुबह 8:45 पर आप लुत्फ उठाएंगे कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी का, ये फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा। सुबह 9 बजे से सुबह 10 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रमों को आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। सुबह 10 बजे आप सुनेंगे दैनिक कार्यक्रम हेलो हजारीबाग। सुबह 11 बजे आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रमों को आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। दोपहर 1:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

दोपहर 1:20 से आप फिर से सुन सकेंगे विविध भारती के कार्यक्रमों को आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। दोपहर 2:55 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। दोपहर 3:00 आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रमों को आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। शाम 4:00 आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। शाम 4:02 से आप फिर से लुत्फ उठाएंगे विविध भारती के कार्यक्रमों को आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। शाम 4:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी की आज की कड़ी को। शाम 5:00 आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। शाम 5:02 पर आप लुत्फ उठाएंगे फिल्म संगीत के कार्यक्रम इवनिंग मेलोडी का। शाम 5:30 पर आप सुनेंगे ग्रामीण भाई बहनों को संबोधित कार्यक्रम खेती बारी।

शाम 6 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। शाम 6:02 पर आप सुनेंगे महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम अंगना। शाम 6:30 पर आप लुत्फ उठाएंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत का। शाम 7 बजे प्रादेशिक समाचार। 7:10 पर जिले में आजकल, जिन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। शाम 7:15 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार। शाम 7:30 पर आप सुनेंगे साप्ताहिक कार्यक्रम खेलेंगे शान से। शाम 7:45 पर आप लुत्फ उठाएंगे सदाबहार फिल्मी गीतों के कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स का। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी चाहत। रात्रि 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या। रात्रि 9 बजे आप सुनेंगे न्यूज एट 9 और रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे स्पोटलाइट, जिन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात्रि 9:30 से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रमों को आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। रात्रि 10 बजे आप लुत्फ उठाएंगे फिल्म संगीत के कार्यक्रम रजनीगंधा का। रात्रि 10:30 पर आप फिर से लुत्फ उठाएंगे फिल्म संगीत के कार्यक्रम एक फिल्म से का। और रात्रि 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। रात्रि 11:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। और रात्रि 11:10 पर आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का समापन हो जाएगा। तो ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज शेष कार्यक्रमों का एक संक्षिप्त रूप विवरण। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। तो कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: देवो में महादेव की
1: जय हो।
0: देवो में महादेव की महिमा अपार है, इनका अलख जगाओ तो बेड़ा पार है।
2: जय हो जय हो जय हो।
0: सुनिए जरा ये ध्यान से कथा है यथाह की, सुनिए जरा ये ध्यान से कथा है यथाह की, महिमा सुना।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: अपनी टीम के 102.1 मेगाहर्ट्ज़ और इस वक्त आप सुन रहे हैं लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग। हम आपको सुना रहे हैं कार्यक्रम का ये आखिरी लोकगीत।
2: हम के सावन में झूलनी गढ़ा दफ

0: और अब इसी गीत के साथ ही लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम काव्य धारा। कार्यक्रम काव्य धारा के अंतर्गत आज आपको हम सुनवा रहे हैं अभिषेक अमन की कुछ कविताएं। आज आप सुनेंगे इन कविताओं का पुनर्प्रसारण।
1: मेरी कविता का शीर्षक है तिरंगा।

अब मेरी अगली कविता का शीर्षक है आजाद। मूछ पर भी ताव होगा, तलख तेवर जो हुआ,

पड़ी, गोलियां सब खत्म थी पर वो रहा आजाद था। एक गोली जब चली थी देश भी नाशाद था, अब वतन आजाद है तब भी वतन आबाद था, अब वतन आबाद है तब भी वतन आबाद था। पर हमें है या

0: खैर जो हुआ। शुक्रिया।
1: अभी आप सुन रहे थे अभिषेक अमन की कुछ कविताएं। कार्यक्रम था काव्य धारा।

102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत संगीत। कार्यक्रम का आगाज आइए हम करते हैं पंकज उदास के गाए इस खूबसूरत से गीत के साथ।

आप सुन रहे हैं गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत संगीत आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। और आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं पंकज उदास की गाए कुछ गैर फिल्मी गीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत पंकज उदास की आवाज में।

0: और अब कार्यक्रम में शेष गीतों से पहले हम आपको सुना रहे हैं कुछ जरूरी संदेश।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, उसे क्लिक में, अरे वाह।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: जरूरी संदेशों के बाद आपका एक बार फिर से कार्यक्रम गीत संगीत

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज, जिन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। उसके बाद सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। तो हमारे इन प्रसारणों की कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गांधी कथा
1: के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। देश के भविष्य के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय बाधाओं का समाधान करने का किया आह्वान। गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के मात्र दो छंद गाने के फैसले की आलोचना की, पूरा वंदे मातरम गाने पर बल दिया। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। जयपुर में होगी ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कहा, उत्तरों को चुनौती देने की प्रणाली निष्पक्ष है, इसके महंगी होने की चिंताओं को खारिज किया। अमेरिका ने ईरानी सरकार के साथ उसके संबंधों का हवाला देते हुए हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए। और हॉकी विश्व कप में आज एम्स्टलवीन में भारतीय महिला टीम का सामना नीदरलैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर भारत सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में अवसंरचना, संपर्क, सुरक्षा, विदेश मामलों और शासन प्रणाली से जुड़े मंत्रालयों और विभागों के भविष्य की कार्यसूची पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सचिवों से देश के भविष्य को आकार देने के बारे में दीर्घकालिक दृष्टिकोण से सोचने का आग्रह किया।
2: बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि अधिकारियों के बीच अनौपचारिक बातचीत और टीम भावना को बढ़ावा देने की जरूरत है। श्री मोदी ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच ज्यादा जुड़ाव की बात कही। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को और मजबूत करने और उसे वैश्विक स्तर पर ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया। श्री मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के असरदार इस्तेमाल के साथ साथ इंसानी दखल सुनिश्चित करने और क्षमताओं को इंसानी विशेषज्ञता साथ जोड़ने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने अपनी बात खत्म करते हुए जटिल चुनौतियों से निपटने और भारत के भविष्य को आकार देने के लिए बेहतर तालमेल, नई सोच और सामूहिक जिम्मेदारी की जरूरत को दोहराया। बैठक के दौरान सचिवों ने क्षेत्रवार प्राथमिकताओं, उभरती चुनौतियों और योजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़ी समस्याओं पर अपने अनुभव साझा किए। बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रमुख मंत्रालयों और विभागों के सचिव तथा प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में जापान की कंपनियों और स्टार्टअप

0: के साथ मिलकर काम करने, खासकर रक्षा उपकरणों के विकास और उत्पादन में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार को मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक का विषय है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: पुणे में भारत की 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत 17 से 21 अगस्त तक 5 दिवसीय ब्रिक्स सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी ICT ट्रैक का आयोजन किया जा रहा है। दूरसंचार विभाग के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम की थीम है इनोवेट, कोऑपरेट और ट्रांसफॉर्म फॉर अ रेजिलिएंट फ्यूचर। इसका उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना और सुरक्षित, समावेशी तथा मजबूत डिजिटल इकोसिस्टम विकसित करना है। 5 दिवसीय कार्यक्रम का समापन आज 21 अगस्त को 12वीं ब्रिक्स कम्युनिकेशंस मिनिस्टर्स मीटिंग के साथ हो रहा है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार पुणे से माधव जायभाई के साथ सुरेखा जोशी।
0: इसके अलावा ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक आज से जयपुर में शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। बैठक में पर्यटन क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। चर्चा के मुख्य विषयों में टिकाऊ और जिम्मेदार पर्यटन, कौशल विकास, आसान यात्रा और पर्यटन में प्रौद्योगिकी और AI का इस्तेमाल शामिल किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के पूर्ण गायन के बजाय केवल 2 छंद गाने के निर्णय की आलोचना की है। श्री शाह ने कहा कि यह निर्णय संसद द्वारा पारित कानून का खुला उल्लंघन और राष्ट्र विरोधी है। श्री शाह ने दावा किया कि वर्ष 1937 में कांग्रेस ने तुष्टीकरण के नाम पर वंदे मातरम को 2 भागों में विभाजित कर दिया था। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर केंद्र सरकार ने इस ऐतिहासिक गलती को सुधारते हुए पूर्ण गीत को कानूनी मान्यता दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने को स्वीकृति दे दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूरदराज के इलाकों में रहने वाले नागरिकों को न्याय और उन्हें मिलने वाली कानूनी सुविधाओं का लाभ उठाने में लगने वाला समय कम हो जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने कहा है कि किसी प्रश्न के उत्तर को चुनौती देने की प्रणाली सभी विद्यार्थियों के लिए निष्पक्ष है। एजेंसी ने इसके महंगे होने की चिंताओं को खारिज किया। NTA ने बताया कि ये एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसमें JEE मेन, नीट या UGC नेट जैसी परीक्षा देने वाले उम्मीदवार अस्थायी उत्तर में मौजूद गलतियों पर आपत्ति जता सकते हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: NTA ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अगर कोई भी उम्मीदवार किसी प्रश्न को चुनौती देता है और विषय विशेषज्ञ उस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं तो संशोधित उत्तर परीक्षा देने वाले सभी उम्मीदवार पर लागू होता है। NTA ने कहा कि उत्तर को चुनौती देने पर फीस इसलिए ली जाती है ताकि अकारण की चुनौती से बचा जा सके और अगर चुनौती सही साबित होती है तो फीस वापस कर दी जाती है। NTA ने बताया कि जिस उम्मीदवार की चुनौती सही मानी जाती है उसे प्रति प्रश्न 200 रुपए वापस किए जाते हैं। NTA ने कहा कि फीस का उद्देश्य अकारण की चुनौती को रोकना है, न कि सही चुनौती से लाभ लेना। किसी भी उम्मीदवार की सही चुनौती लाखों दूसरे उम्मीदवारों के रिकॉर्ड को सही कर सकती है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शिमला में शुरू हो रहा है। सत्र 3 सितंबर तक चलेगा और इसमें कुल 10 बैठक होंगी। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी। मॉनसून सत्र के पहले कल शिमला में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। गृहमंत्री अमित शाह कल शाम पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर बागडोगरा पहुंचे। हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, दार्जिलिंग से सांसद राजू बिस्ता और पर्यटन मंत्री शंकर घोष सहित अन्य लोगों ने श्री शाह का स्वागत किया। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमरीकी प्रशासन ने इस गुट को ईरान के प्रतिनिधि के तौर पर फिर से वर्गीकृत किया है। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका के वित्त विभाग ने 10 ऐसे लोगों पर प्रतिबंधों की घोषणा की है जिन पर हिजबुल्ला को धन अंतरित करने के लिए जिम्मेदार नेटवर्क का हिस्सा होने का आरोप है। अमेरिका के वित्त विभाग के अनुसार यह नेटवर्क लेबनान, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच वाणिज्यिक एयरलाइन उड़ानों से यात्रा करने वाले कुरियर का इस्तेमाल करके अलग अलग देशों में बड़ी मात्रा में पैसे भेजता था। इससे हिजबुल्ला को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से बाहर विदेशी मुद्रा हासिल करने और प्रतिबंधों से बचने का जरिया मिलता था। इस नए वर्गीकरण का उद्देश्य यह बताना है कि हिजबुल्ला ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC की ओर से काम करता है और कोई स्वतंत्र संगठन नहीं है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने 4 दिनों में 2 जहाजों का अपहरण कर लिया है। इलाके में बढ़ती अस्थिरता के बीच सोमालिया और यमन के समुद्री क्षेत्रों में समुद्री डकैती फिर से बढ़ने को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। एक रिपोर्ट।
4: हाल की घटनाओं में सोमालिया के पुंटलैंड तट के पास कैमरून के ध्वज वाले MV लुतुफ जहाज पर कब्जा और यमन के पास इरिट्रिया के ध्वज वाले सिबू 1 टैंकर का अपहरण शामिल है। खबरों के मुताबिक लुतुफ में तुर्की के हथियार और उपकरण थे जिन्हें मोगादिशु में एक सेना प्रशिक्षण केंद्र ले जाया जा रहा था। लुतुफ के 10 लोगों के चालक दल में 6 भारतीय, 1 तुर्की नागरिक, 1 जॉर्जियाई और 2 सर्बियाई सुरक्षा गार्ड शामिल थे। खबरों के अनुसार 8 समुद्री लुटेरे जहाज को पुंटलैंड के डंगोरोयो जिले में गरमाल के पास नुगाल तट की ओर ले गए। सोमालिया के अधिकारियों ने बताया कि समुद्री लुटेरों ने अभी 6 जहाजों पर कब्जा कर रखा है। इनमें इस हफ्ते कब्जा किए गए 2 जहाज भी शामिल हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: और अब खेल के मैदान की हलचल के साथ हैं शक्ति सिंह।
5: हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण मैच में आज अम्स्टरडैम में भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। कल पूल डी में अपने आखिरी मैच में इंग्लैंड के साथ बिना किसी गोल के ड्रॉ खेलने के बाद भारत दूसरे दौर में पहुंच गया। इस ड्रॉ की मदद से सलीमा टेटे की कप्तानी वाली भारतीय महिला टीम पूल डी में दूसरा महत्वपूर्ण स्थान हासिल करने में सफल रही। इधर नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज भारतीय खिलाड़ी पुरुष और महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल में उतरेंगे। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग की पुरुष डबल्स जोड़ी का मुकाबला चीन की तीसरी वरीयता प्राप्त लियांग वेई केंग और वान चांग से होगा। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का सामना चीन की चौथी वरीयता प्राप्त चिया यी फेन और झांग शू शियान से होगा। वहीं पूर्व विश्व चैंपियन पीवी सिंधु, पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और मिक्स्ड डबल्स जोड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो को अपने अपने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। और एथलेटिक्स में लुसाने डायमंड लीग में आज भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा और श्रीलंका के रमेश पथिरागे एक बार फिर आमने सामने होंगे। इस प्रतियोगिता के द्वारा नीरज चोपड़ा डायमंड लीग फाइनल में अपनी जगह बनाने की कोशिश करेंगे। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में श्रीलंका के पथिरागे ने नीरज चोपड़ा को मजबूत चुनौती देते हुए स्वर्ण पदक जीता था, जबकि नीरज चोपड़ा दूसरे स्थान पर रहकर रजत पदक के साथ वापस आए थे।
0: धन्यवाद शक्ति इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक तेज हवाएं चलने की संभावना है। उधर केरलम के कई तटीय क्षेत्रों में आज समुद्र में ऊंची लहरों से समुद्र का जल स्तर बढ़ने की आशंका है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आज हल्की बारिश हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
6: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित मुख्य समाचार पत्रों ने आज दिल्ली मास्टर प्लान 2047 को अपने मुख्य पृष्ठ पर जगह दी है। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, नई होगी दिल्ली। दैनिक जागरण लिखता है, 40 लाख नए घर, 695 किलोमीटर के मेट्रो नेटवर्क से बदलेगी राजधानी। दैनिक भास्कर ने छापा है, लुटियन छोड़ बाकी दिल्ली में होंगी गगनचुंबी इमारतें, डेटा सेंटर बनेंगे, वैश्विक शहर के रूप में विकसित होगी देश की राजधानी। झारखंड में झटका शीर्षक से राजस्थान पत्रिका ने छापा है, सरकार ने छात्र आंदोलन के बाद दिया था आदेश, झारखंड में परीक्षाएं रद्द करने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर की जम्मू कश्मीर के संदर्भ में हालिया टिप्पणी पर जनसत्ता ने कूटनीतिक संदेश शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, पिछले कुछ सालों के दौरान जम्मू कश्मीर में आमतौर पर शांति और स्थिरता देखी जा रही है, इसलिए संभव है कि पाकिस्तान की ओर से तमाम नकारात्मक कवायदों के बावजूद वहां के बारे में वैश्विक स्तर पर अलग राय बनी है। इसलिए गोर के बयान को भारत के प्रति अमरीकी नीति में बदलाव के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। अमर उजाला ने रचनात्मकता से जुड़ी खबर प्रकाशित की है। चीन में कल से रोबोट ओलंपिक बीजिंग में पहुंची 16 देशों की 666 टीमें, मैदान में उतरेंगे 2056 ह्यूमनॉइड। पत्र की उपलब्धि शीर्षक से विश्व आर्थिक मंच की 2026 की रिपोर्ट भी ध्यान आकर्षित करती है। कैंसर के टीके से एआई तक, दुनिया बदलने वाली 10 नई तकनीकें, आने वाले सालों में ऊर्जा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, साइबर सुरक्षा और एआई के क्षेत्र में पड़ सकता है इन तकनीकों का बड़ा असर। आज विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस पर वृद्धजनों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए लोकसत्य ने बॉक्स में खबर प्रकाशित करते हुए लिखा है, ज्ञान अनुभव का उत्सव है वरिष्ठ नागरिक दिवस।
0: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। देश के भविष्य के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय बाधाओं का समाधान करने का किया आह्वान। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के मात्र दो छंद गाने के फैसले की आलोचना की, पूरा वंदे मातरम गाने पर बल दिया। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। जयपुर में होगी ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कहा, उत्तरों को चुनौती देने की प्रणाली निष्पक्ष है, इसके महंगी होने की चिंताओं को खारिज किया। और हॉकी विश्व कप में आज एम्स्टलवीन में भारतीय महिला टीम का सामना नीदरलैंड से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम वीसी प्रमोद, द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi chairs third high-level meeting with secretaries to Government of India, urges to break silos and adopt long-term vision for country's future. Union Home Minister Amit Shah criticizes Congress Working Committee's decision to sing only two stanzas of Vande Mataram instead of full rendition. India to host 12th BRICS Communications Ministers meeting in Pune today, BRICS Tourism Ministers to meet in Jaipur. National Testing Agency says Answer Key Challenge system is designed to be fair to all students, rejects concerns of being expensive. US imposes fresh sanctions on Hezbollah, citing its ties to Iranian government. And in hockey, Indian women's team to take on Netherlands in the first match of second pool phase at FIH World Cup in Amstelveen today. Prime Minister Narendra Modi chaired the third high-level meeting with secretaries to the Government of India at his residence yesterday and discussed the future action agenda of ministries and departments dealing with infrastructure and connectivity, security, external affairs and governance. During the meeting, the Prime Minister urged secretaries to think with a long-term perspective on how the country's future should be shaped. More from our correspondent.
8: Calling for greater interoperability and effective use of data, Mr. Modi noted that data is a national asset and a resource for the future. The Prime Minister added that silos are not merely an organizational problem, but also a problem of mindset. He further urged officials to work with a spirit of belongingness, highlighting the importance of informal interaction and building team spirit among officers. Mr. Modi called for greater engagement between government departments, universities, and young people to bring fresh perspectives in policy making. He also emphasized the need to further strengthen the country's defense industry and make it more competitive at global level, citing examples of experiences of the COVID-19 pandemic and the West Asia crisis. He said that such coordination mechanisms should become a natural part of the government's work culture. Mr. Modi also called for effective use of artificial intelligence while ensuring human intervention and for exploring innovative ways of combining the capabilities of AI with human expertise. Prime Minister concluded by reiterating the need for a whole of government approach, greater coordination, innovative thinking and collective ownership to address complex challenges and shape India's future with a long-term perspective. With Priya, Saklayan Akhtar, Akashwani News, Delhi.
7: Union Home Minister Amit Shah has criticized the Congress Working Committee's decision to sing only two stanzas of Vande Mataram instead of the full rendition. Talking to media, Mr.

0: लेकर आया।
1: इस राज्य के बच्चों को नौकरियां छीन कर दूसरे राज्य के लोगों को देने का काम भारतीय जनता पार्टी शुरू दिन से यह मांग करते आई है। किस प्रकार के जो नौकरियां जो बेची गई हैं झारखंड राज्य में, जो घपले किए गए हैं नौकरी के नाम पे, उसकी सीबीआई जांच हो। आखिर सरकार क्यों डरती है?
0: इस बीच झामुमो सांसद महुआ मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री को पहले ही कोर्ट के ऐसे फैसले का अंदेशा था, इसलिए निर्णय में विलंब हो रहा था। उन्होंने विपक्ष पर इस संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति करने का भी आरोप लगाया।
2: लोग राजनीति कर रहे थे इसको लेकर, मुझे लगता है कि शायद इसी का अंदेशा होगा जिसकी वजह से उस समय विलंब हो रहा था डिसीजन लेने में, और अब डिसीजन हुआ। तो ये भी बात सही है कि जिनकी नौकरी लग गई, कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पहले से कुछ नौकरियां वो सरकारी कर रहे थे, सिर्फ अपने स्टेट में वापस आने के ये में उन्होंने यहाँ की नौकरी ज्वाइन कर ली थी, तो उनके साथ अन्याय हो रहा था, इसलिए माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया।
0: रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में अब किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए स्टेडियम परिसर में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। आदेश के बाद अब वहां किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से रांची स्थित लोक भवन में उद्योग संबंधित संसदीय समिति की उप समिति के सदस्यों ने शिष्टाचार भेंट की। राज्यसभा सांसद तिरुचि शिवा के नेतृत्व में आई ये समिति एचईसी रांची के पुनरुद्धार और वर्तमान स्थिति का अध्ययन करने के लिए राज्य के दौरे पर है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNewsRanchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल एआईआर न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। जामताड़ा के नाला प्रखंड में झामुमो कार्यकर्ताओं ने एमएमडीआर संशोधन विधेयक के विरोध में बैठक की। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने इस विधेयक को दुर्भाग्यपूर्ण बताया।
3: जो माइंस मिनरल वेस्ट स्टेट है उनको केंद्र से इस माइंस के एवज में जो भी मिलता था वो बंद हो जाएगा, और इस पैसा से राज्य सरकार अपने राज्य के अंदर में कल्याणकारी योजनाओं में इस पैसा को लगा जो नहीं लग पाएगा, और लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा चिंता और वित्तीय संकट उत्पन्न करने की जो संभावना है, इस विषय लोगों ने बहुत चिंतित है। हमारे संगठन के द्वारा इस कानून के विरोध में आंदोलन करने का निर्णय लिया है।
0: इधर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने खनिज संशोधन अधिनियम पर झामुमो के विरोध को राजनीतिक ड्रामा बताया है। उन्होंने कहा कि एमएमडीआर कानून का उद्देश्य राज्यों के अधिकार छीनना नहीं बल्कि खनिज क्षेत्रों में पारदर्शिता और निवेश बढ़ाना है। रांची जिले के सभी मतदान केंद्रों पर 22 और 23 अगस्त को मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए अंतिम विशेष शिविर लगाया जाएगा। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलने वाले इस शिविर में नए नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6 और परिवार का नाम एक ही केंद्र पर लगाने के लिए फॉर्म 8 भरे जाएंगे। जमशेदपुर पुलिस की एसआईटी ने एमजीएम अस्पताल के पास घेराबंदी कर 5 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से चोरी के 33 मोबाइल फोन, 2 स्कूटी और सोने चांदी के आभूषण बरामद किए हैं। एसएसपी एहतेशाम वकारिब ने बताया कि पूछताछ में आरोपियों ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में छिनतई की कई वारदातों को अंजाम देने की बात को स्वीकार की है।
3: जो माइंस मिनरल वेस्ट स्टेट है उनको केंद्र से इस माइंस के एवज में जो भी मिलता था वो बंद हो जाएगा, और इस पैसा से राज्य सरकार अपने राज्य के अंदर में कल्याणकारी योजना।
0: मौसम विभाग ने राज्य में कहीं कहीं गरज चमक के साथ वज्रपात की चेतावनी जारी की है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। पुणे में चल रही 16वीं राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में झारखंड ने प्रवेश कर लिया है। एक बेहद रोमांचक क्वार्टर फाइनल मुकाबले में झारखंड ने ओडिशा को पेनाल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। झारखंड की संगीता कुमारी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने जेपीएससी नियुक्तियों को रद्द करने के सरकारी आदेश पर झारखंड हाईकोर्ट की रोक की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। दैनिक भास्कर ने लिखा है जेपीएससी 11वीं से 13वीं और एफएसओ की नियुक्ति रद्द करने के सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक।

प्रभात खबर के शब्द हैं, 2022 में सीआईडी के पास थी अरुण की पूरी कुंडली, चार साल बाद हुई गिरफ्तारी। हिंदुस्तान लिखता है, राज्य के 100 अरब के रोड प्रोजेक्ट अस्वीकृत। दैनिक जागरण ने राज्यसभा सदस्य तिरुचि शिवा के हवाले से लिखा है, एचईसी नहीं होगा बंद, ये देश के लिए बहुत जरूरी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, जेपीएससी नियुक्तियों को रद्द करने के सरकारी आदेश पर झारखंड हाईकोर्ट की रोक के बाद राज्य में छात्र राजनीति गरमाई। आज राज्य के सभी 24 जिलों में सरकार के खिलाफ पुतला दहन करेंगे आक्रोशित छात्र। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने परीक्षा रद्द करने को बताया सोची समझी साजिश। झामुमो सांसद महुआ मांझी ने विपक्ष पर लगाया राजनीति करने का आरोप। केंद्रीय संसदीय उपसमिति के सदस्यों ने रांची लोकभवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से की मुलाकात। एचईसी के पुनर्द्वार पर हुई चर्चा। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने किया खनिज संशोधन विधेयक का विरोध। भाजपा ने विरोध को बताया राजनीतिक ड्रामा। और पुणे में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचा झारखंड, ओडिशा को पेनाल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

दोस्तों, तारीखों के पन्नों पर कुछ दिन ऐसे होते हैं जो हमें उत्सव नहीं बल्कि ठहर कर याद करने का मौका देते हैं। आज 21 अगस्त है, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म, आतंकवाद के पीड़ितों को याद और उन्हें श्रद्धांजलि देने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस।

0: आज के दिन हम उन सभी निर्दोष जिंदगियों को नमन करते हैं जिन्होंने नफरत की भारी कीमत चुकाई और नफरत का जवाब एकजुटता से दे, क्योंकि जब तक हम साथ खड़े होते हैं तो इंसानियत कभी हारती नहीं। दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ।
1: हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.1 MHz पर। पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी।

कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी सुनने वाले आप तमाम श्रोताओं का आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। स्वीकार करें श्वेता का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कार्यक्रम का आगाज आइए करते हैं फिल्म जीवन मृत्यु के इस खूबसूरत से गीत के साथ, जिसे गाया है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने।

0: कार्यक्रम के शेष गीत सुनने से पहले आइए सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: जरूरी संदेशों के बाद आपका एक बार फिर से कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी में स्वागत है। लीजिए पेश है कार्यक्रम का अगला गाना। फिल्म का नाम मिलन, आवाजें लता मंगेशकर और मुकेश की।

और कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार को, फिल्म है आराधना।

किशोर कुमार की आवाज में गाए फिल्म आराधना के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रमों को, जिन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। तो कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं, पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
1: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है। इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
3: वादा।
0: कार्यक्रम जारी रहेगा संतराल के बाद।

0: फिल्म का नाम था गैंग्स ऑफ वासेपुर, पीयूष मिश्रा की आवाज थी।
1: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
2: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
1: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
3: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं।
2: किसने कहा है किशोरदन, एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: वाह,

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

लीजिए पेश है प्रोग्राम आज के फनकार। आप सभी को राजेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में जिक्र है जानी मानी अभिनेत्री अरुणा ईरानी का।

अभिनेत्री अरुणा ईरानी की फिल्मों में शुरुआत 1961 की फिल्म गंगा जमुना से हुई थी, जिसमें उन्होंने अभिनेत्री आजरा के बचपन की भूमिका अदा की थी। गंगा जमुना फिल्म यदि दोस्तों आपने देखी हो तो आपको याद होगा ये गीत भी, जिसमें अरुणा ईरानी स्कूल के गुरुजी और बच्चों के समूह में पर्दे पर गीत गाती दिखाई देती हैं।

मुंबई में जन्मी अरुणा ईरानी के पिता फरीदुन ईरानी नाटक मंडली चलाते थे और उनकी माँ सगुना अभिनेत्री थीं। परिवार के हालात ठीक नहीं थे, इसलिए अरुणा जी को बचपन में पढ़ाई छोड़ देनी पड़ी। जिम्मेदारी का एहसास उन्हें हो चुका था क्योंकि 8 भाई बहनों में वो सबसे बड़ी थीं। इसलिए बचपन से ही फिल्मों में काम करना उनका आर्थिक सहारा बन चुका था।

0: साठ के दशक में कुछ फिल्मों में बतौर बाल कलाकार काम करने के बाद 1967 में फिल्म फर्ज में उन्हें अच्छा मौका मिला जंपिंग जैक जितेंद्र के साथ।
1: मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

दोस्तों, अरुणा ईरानी को बतौर चरित्र अभिनेत्री पहचाना जाता है, लेकिन उन्होंने कई फिल्मों में बेहतरीन सहायक भूमिकाओं में भी काम किया है और कमाल का काम किया है। कई बार तो उन्होंने खलनायिका बनकर भी पर्दे पर एक नया ही मंजर पैदा किया है। अभिनय के अलावा पर्दे पर उन्हें बेहतरीन डांसर भी माना जाता रहा है। उनके हिस्से में कई मशहूर गाने आए हैं जो सुनते ही हमारी जुबान पर चढ़ जाते हैं। 1971 की फिल्म कारवा में अरुणा जी का काम बेहद सराहा गया और चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी गीत के अलावा ये गीत भी अरुणा जी के डांस की वजह से काफी लोकप्रिय हुआ था।

जहां आ रहा आया सावन झूम के, और उपकार कुछ ऐसी फिल्में हैं जिसमें अरुणा जी ने अलग अलग चरित्रों को पर्दे पर उभारा और लोगों के दिलों में जगह बनाई। 1972 में अरुणा ईरानी के फिल्मी जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आया। अभिनेता महमूद ने उन्हें तत्कालीन संघर्षशील कलाकार अमिताभ बच्चन के साथ बतौर हीरोइन मौका दिया और वो फिल्म थी बॉम्बे टू गोवा।

हालांकि ये भी सच है कि कई फिल्मों में सहायक भूमिका निभाते हुए भी वो हीरोइन पर भारी पड़ जाती थीं और लोग अरुणा ईरानी को पसंद भी करते थे। 1973 में राज कपूर साहब की फिल्म बॉबी में छोटी लेकिन एक दिलचस्प भूमिका में उन्होंने अपनी खास छाप छोड़ी थी।

शुरुआत में अरुणा ईरानी को लेकर फिल्मकारों की सोच ये रही कि उनके रोल में कुछ नकारात्मकता का पुट बरकरार रहे, यानी उन्हें वैंप बना दिया जाए। लेकिन रफ्ता रफ्ता ये सोच बदली और अरुणा जी ने हिंदी फिल्मों में लगातार भूमिकाएं करके एक सशक्त चरित्र और सहायक भूमिकाएं निभाने वाली बेहतरीन अभिनेत्री का दर्जा हासिल किया। अभिनेता महमूद के साथ तो उनकी कई फिल्में आईं। फिल्म औलाद का ये गीत हम कैसे भुला सकते हैं।

अपनी अदाकारी के साथ साथ अरुणा ईरानी के साथ खूबी ये रही दोस्तों कि उन पर कई हिट सुपरहिट गाने फिल्माए गए हैं जो हरदम हमें बहलाते हैं, फुसलाते हैं। द ट्रेन फिल्म का

कुमार गौरव की फिल्म आई थी लव स्टोरी, और फिल्म में एक सीन के दौरान उन्हें लुभाती पर्दे पर अरुणा ईरानी ये गीत भी गा चुकी हैं।

इन गीतों और फिल्मों के अलावा हम जोली, देवी, नया जमाना, गरम मसाला, दो फूल, मिली, लैला मजनू, शालीमार, कुर्बानी, दयावान, अंगूर, फकीरा, सरगम, रेड रोज, रॉकी और बेटा जैसी फिल्मों में अरुणा ईरानी ने बेहतरीन अभिनय की छाप छोड़ी है। दोस्तों, अरुणा जी को फिल्म फेयर के अवार्ड्स के लिए कई बार नॉमिनेट किया गया, लेकिन 1984 की फिल्म आई थी पेट प्यार और पाप और इसके बाद 1992 की फिल्म बेटा के लिए भी अरुणा ईरानी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार

1980 के उत्तरार्ध से लेकर 90 के दशक तक तमाम फिल्मों में अरुणा ईरानी ने माँ की भूमिका को अपनाकर अपनी अदाकारी को एक नया आयाम दिया। इसी दौरान

दोस्तों, 300 से भी ज्यादा फिल्मों में काम करने के बाद अरुणा ईरानी ने अपनी एक्टिंग के साथ बहुत ही गहरा संबंध बना लिया। इमोशनल और परिपक्व हो चुका था उनका अभिनय के साथ ये ताल्लुक। कुछ मराठी फिल्मों में भी उन्होंने काम किया है। सन 2000 से उन्होंने टीवी धारावाहिकों में भी एक्टिंग की शुरुआत की है, जो लगातार जारी है। कई सीरियल्स को उन्होंने प्रोड्यूस भी किया है और बड़े और छोटे दोनों ही पर्दों पर अरुणा जी वर्तमान में भी सक्रिय हैं। फिल्म निर्देशक इंद्र कुमार उनके भाई हैं और अरुणा जी के पति हैं फिल्मकार कुकू कोहली। हालांकि सन 2012 में अरुणा जी को 57वें फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा जा चुका है, लेकिन दोस्तों, अरुणा ईरानी को आज भी फिल्मों से और फिल्म देखने वालों से बेहद प्यार है, बहुत ही बेशुमार मोहब्बत है। हम उनके स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं और उन्हें शुभकामनाएं देते हैं कि वो हमेशा ही सक्रिय बनी रहें।

0: तो दोस्तों ये था आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था जानी मानी अभिनेत्री अरुणा ईरानी पर, और कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। प्रस्तुत है दैनिक कार्यक्रम हेलो हजारीबाग।
1: 10 9 8 7 6

0: प्रत्येक दिन के इतिहास, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जन्मदिन, मृत्यु और महत्वपूर्ण दिवस का संपूर्ण ब्यौरा मिलेगा डे टू डे। हेलो हजारीबाग, मिलेगी मौसम की जानकारी, साथ ही हजारीबाग के अस्पताल के ओपीडी अपडेट्स मिलेंगे, हजारीबाग के ट्रैफिक अपडेट्स, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल इवेंट्स के कर्टन रेजर रोजाना, लोकल इवेंट्स के ग्राउंड रिपोर्ट्स का खजाना, सिटी के इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज में हजारीबाग के यूनिवर्सिटी की गतिविधियों और स्पोर्ट्स के ताजे हाल का हेलो हजारीबाग, और अंत में आज के विचार को सुनकर कर देंगे दिन की पॉजिटिव शुरुआत। गीतों संगीत से सजा सवरा जीवन की प्रत्येक आवश्यक गतिविधियों के संग हेलो हजारीबाग।
1: कार्यक्रम हेलो हजारीबाग सुनने वाले आप तमाम श्रोताओं का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। स्वीकार करें श्वेता का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से गीत के साथ।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: गीत और जरूरी संदेश के बाद आपका एक बार फिर से कार्यक्रम हेलो हजारीबाग में स्वागत है।

अब आइए जानते हैं आज के इतिहास के बारे में। श्रोताओं, आज ही की तारीख को अलग अलग ईस्वियों में इतिहास के पन्नों में ऐसी कई सारी घटनाएं दर्ज हुई जिन्हें याद करना हमें आगे अपने उन गलतियों को ना दोहराने की सीख भी मिलती है और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी ये महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो आइए जानते हैं आज के इतिहास के बारे में। श्रोताओं, 1915 ईस्वी में आज की तारीख को पहले विश्व युद्ध के दौरान इटली ने तुर्की के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। 1959 में हवाई अमेरिका का 50वां प्रांत बना यूरोपीय देश रोमानिया में संविधान को अंगीकार किया गया। आज की तारीख को सन 1965 ईस्वी में 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम संसद में पारित हुआ। पूर्वी चीन में चक्रवाती तूफान विन्नी में 140 लोगों की मौत हुई और 3000 लोग घायल हो गए थे। वर्ष था 1997। 1988 में आज की तारीख को भारत नेपाल सीमा पर आए तीव्र भूकंप से 1000 लोगों की मौत हो गई थी। 1991 में आज की तारीख को सोवियत संघ में राष्ट्रपति गोर्बाचोव अपदस्थ मास्को में कर्फ्यू क्रांति विफल और गोर्बाचोव पुनः सत्ता में स्थापित हुए थे। राष्ट्रपति बोरिस एल्तसिन ने रूसी संसद को भंग किया था। आज की तारीख को सन 1993 में 2003 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव कोफी अन्नान ने इराक में संयुक्त शांति सेना भेजने का प्रस्ताव खारिज किया। सन 2005 में बांग्लादेश और भारत की सीमा सुरक्षा बल के जवानों के बीच संघर्ष विराम का समझौता संपन्न किया गया था। आज की तारीख को सन 2006 ईस्वी में इराक के अपदस्थ राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने नरसंहार ट्रायल में भाग लेने से इनकार किया। अमेरिकी देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में इबोला वायरस के संक्रमण से 20 लोगों की जानें चली गई थीं। आज की तारीख को सन 2012 ईस्वी में सन 2013 में मलेशिया में चीन स्वी मंदिर के समीप बस हादसे में 37 लोग मारे गए थे और 16 लोग घायल हो गए थे। 2014 में आज की तारीख को राफा में इजरायली हवाई हमले में हमास के 3 शीर्ष कमांडर मारे गए थे। और अब आइए जानते हैं आज की तारीख को अलग अलग ईस्वियों में किन महान हस्तियों ने जन्म लिया। अहमद पटेल, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, इनका जन्म हुआ 1949 ईस्वी में आज की तारीख को। भारत के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और समाज सेवक गोपाल कृष्ण देवधर का भी जन्म हुआ 1871 ईस्वी में आज की तारीख को। वर्ष 1910 में प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार नारायण श्रीधर बेंद्रे का जन्म हुआ और बी सत्य नारायण रेड्डी, जो एक स्वतंत्रता सेनानी समाजवादी नेता और उत्तर प्रदेश ओडिशा और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल रहे, इनका भी जन्म हुआ 1927 ईस्वी में। 1934 ईस्वी में आज की तारीख को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ रहे सुधाकर राव नाइक का भी जन्म हुआ। पेमा खांडू, जो भारत के सबसे युवा और अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, इनका जन्म हुआ आज की तारीख को सन 1979 ईस्वी में। 1915 ईस्वी में इस्मत चुगताई, जो भारतीय साहित्य में एक चर्चित और सशक्त कहानीकार के रूप में विख्यात रहे, इनका भी जन्म हुआ। 1910 ईस्वी में आज की तारीख को प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार रहे नारायण श्रीधर का भी जन्म हुआ। और अब आइए जानते हैं उन हस्तियों को जिन्होंने अपने कार्यों से लोगों को प्रेरित किया और उनकी अपने इतिहास के पन्नों में कई महत्वपूर्ण कार्य दर्ज हैं और अलग अलग ईस्वियों में इन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। 2009 में आज की तारीख को मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे बाबूलाल गौड़ का निधन हुआ। आज की तारीख को सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जो खगोल भौतिक शास्त्री रहे, इनका निधन हो गया था।
भारत के प्रसिद्ध गांधीवादी, स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद और पत्रकार और लेखक रहे काका कालेलकर का भी निधन हो गया था 1981 ईस्वी में। 1978 ईस्वी में भारत के महान क्रिकेट खिलाड़ियों में से एक थे वीनू मांकड़। इनका नाम विश्व के श्रेष्ठ ऑलराउंडरों में गिना जाता है। वर्ष 1948 में वामन राव बलिराम लाखे, जो भारत के आजादी के लिए संघर्ष करने वाले छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे, इनका भी निधन हो गया। वर्ष 1931 में विष्णु दिगंबर पलुस्कर, जो भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक रहे, इनका भी निधन हो गया। तो ये थे इतिहास के पन्नों में कुछ दर्ज घटनाएं और कुछ महान हस्तियों की जयंती और कुछ महान हस्तियों की पुण्यतिथि। बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे, सुनवाते हैं आपको एक प्यारा सा गीत।

आपने ट्यून किया 102.1 मेगाहर्ट्ज़ और इस वक्त आप सुन रहे हैं दैनिक कार्यक्रम हेलो हजारीबाग। अब आइए जानते हैं मच्छर जनित बीमारियों से बचाव के बारे में। श्रोताओं, 20 अगस्त को मच्छर दिवस था और इस मच्छर दिवस विश्व मच्छर दिवस के अवसर पर गुरुवार को जिला वीबीडी कार्यालय और स्वास्थ्य विभाग की ओर से जागरूकता प्रभात फेरी निकाली गई। अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी जिला वीबीडी पदाधिकारी और एएनएम स्कूल की प्राचार्या ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया और प्रभात फेरी जिला वीबीडी कार्यालय परिसर से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए झंडा चौक, इंद्रपुरी चौक और शहर के अन्य जगहों पर ये प्रभात फेरी निकाली गई ताकि मच्छरों से जो होने वाली बीमारियां हैं उससे जागरूक किया जा सके लोगों को। तो मच्छर विश्व मच्छर दिवस कल यानी 20 अगस्त को था। तो आइए जानते हैं कुछ छोटी सी जानकारी इस बारे में कि मच्छर जनित बीमारियां कौन कौन सी होती हैं और इससे बचे रहने के लिए हमें किन सावधानियों की जरूरत होनी चाहिए। श्रोताओं, मच्छर जनित बीमारियां वे हैं जो बैक्टीरिया, वायरस या परजीवियों के कारण होते हैं और मच्छरों द्वारा फैलते हैं। दुनिया भर में लगभग 700 मिलियन लोग हर साल मच्छर जनित बीमारियों से संक्रमित हो जाते हैं, जिसकी वजह से 10 लाख से अधिक मौतें भी हो जाती हैं। मच्छरों द्वारा फैलने वाली बीमारियों में मलेरिया, डेंगू, वेस्ट नाइल वायरस, चिकनगुनिया, पीला बुखार, फाइलेरिया, टुलारेमिया, जापानी इंसेफ्लाइटिस, बर्माह फॉरेस्ट फीवर और जीका बुखार जैसे और भी अन्य बीमारियां शामिल हैं। मच्छर जनित बीमारियां वे संक्रमण हैं जो संक्रमित मच्छरों के काटने से इंसानों में फैलती हैं। मच्छरों के काटने से पैदा हुई इन बीमारियों में अक्सर बुखार, बदन दर्द और जोड़ों के दर्द जैसी गंभीर समस्याएं दिखाई देती हैं लोगों में। और मच्छरों के काटने से बचाव के लिए आप छोटी मोटी आवश्यक बातों पर जरूर ध्यान रखें। सुबह शाम मच्छर ज्यादा सक्रिय रहते हैं, इसीलिए घर की खिड़की, दरवाजे और अन्य खुले जगहों में जाने से बचें। खिड़की दरवाजे हमेशा बंद रखें और अगर खिड़की दरवाजे खुले भी रखने हों तो आप उनमें जो जाली आते हैं या नेट आती है उसे आप जरूर लगवा के रखें ताकि घर के अंदर मच्छर जो है वो प्रवेश ना कर सकें। मच्छर के अलावा श्रोताओं, बरसात का जो मौसम है वो बहुत सारे जीव जंतुओं के प्रजनन काल का भी समय होता है, तो ऐसे में बहुत सारे जीव जंतु भी जो हैं

वो सक्रिय हो जाते हैं और कहीं भी घुस करके और किसी चीज में चिपक करके, कभी कभी कपड़ों में भी चिपक करके अंडे दे देते हैं, जिसमें लार्वा पनपने लग जाता है और वो धीरे धीरे फिर कीड़े बन जाते हैं। तो आप इन सब बातों का भी ध्यान रखें। जब बाहर में आप कपड़े फैलाएं सूखने के लिए, तो देख करके कपड़ों को उठा करके समेट करके रखें कि कहीं कोई कीड़ा उसमें अपने अंडे तो नहीं दे गया है। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों का आप जरूर ध्यान रखें, क्योंकि कई ऐसे कीड़े होते हैं, जहरीले कीड़े, जो आपके शरीर में या त्वचा में सटते ही बहुत गंभीर घाव कर सकते हैं और त्वचा में जलन हो जाती है और कई बार त्वचा जल भी जाती है, काले काले धब्बे निशान पड़ जाते हैं, जख्म हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का आप जरूर ध्यान रखें, ऐसे कीड़ों को आप पनपने न दें और जो कपड़े हैं आपके उन्हें भी आप झाड़ करके ही, साफ करके ही रखें। इसके अलावा घर के अंदर जो मच्छर प्रवेश करते हैं उनसे आप सावधानी जरूर रखें। फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, मच्छर भगाने के लिए जो भी घरेलू तरीके होते हैं, जैसे कि नीम करंज के जो तेल होते हैं उनका दीपक आप जरूर घर में जलाएं। इनके कड़वे पन जो वातावरण में फैलते हैं तो इससे मच्छर नहीं आ पाते हैं और दूसरे जो बरसाती कीड़े मकोड़े हैं ये भी दूर रहते हैं घरों से। तो ये जरूर आप अपनाएं। और मार्केट में मिलने वाले जो हर्बल क्रीम हैं आते, जो मच्छरों से हमारा बचाव करते हैं, उनका आप उपयोग कर सकते हैं। स्प्रे भी आता है बाजार में जो सुरक्षित होता है, तो खास करके जो हर्बल होते हैं उनका उपयोग आप ज़्यादा करें, क्योंकि जो बड़ी कंपनियों के भी जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें बहुत मात्रा में केमिकल होते हैं, हानिकारक केमिकल, जो आपकी त्वचा या श्वास लेने से फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इनसे आप जरूर बच करके रहें। साथ ही इन बातों का भी जरूर ध्यान रखें कि बरसात के मौसम में घर में या घर के जो पानी है, घर में रखे हुए पानी है, उन्हें भी ज़्यादा दिन तक ना रहने दें और उसे जरूर बदलते रहें। कई बार जो इंडोर प्लांट होते हैं, घरों के अंदर रहने वाले प्लांट, उनमें भी पानी डाला जाता है, तो उस बर्तनों के जो पानी होते हैं उसको भी आप जरूर समय समय पर बदलते रहें, रोज बदलें। और साथ ही जो आसपास गड्ढे बन जाते हैं घरों के आसपास, उन गड्ढों में पानी जमा रहता है, नालियों के पानी कई बार जमे रह जाते हैं घर के बाहर, तो इन सब जो सावधानियां हैं इन सब में आप जरूर बरतें। ये पानी जमा ना रहने दें, उनके निकासी का उचित प्रबंधन करें। साथ ही घर के छत पे गमले होते हैं, टायर पुराने पड़े होते हैं, छोटे मोटे डब्बे पड़े होते हैं, उनमें भी बरसात का पानी जम जाता है और काफ़ी लंबे समय तक पानी जमा रहे तो उनमें भी मच्छरों के लार्वा पनपने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इन सब चीज़ों पर आप ध्यान रखें। टायर और पुराने डब्बों में, गमलों में जो पानी जमा हो गया है उन्हें आप जरूर निकाल दिया करें और आसपास साफ सफाई जरूर रखें। साफ सफाई रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गंदगी में भी मच्छर पनपने लगते हैं। नालियों की सफाई, गटर की सफाई आप समय समय पर जरूर करते रहें, जिससे हमेशा साफ सफाई का वातावरण बना रहे और मच्छरों के लार्वा वहां पनप नहीं पाएं, जिससे वयस्क मच्छरों की संख्या कम होती जाएगी और मच्छरों से होने वाली जो बीमारियां हैं उनकी संभावना भी कम रहेगी। मच्छर गंदे और ठहरे हुए पानी में अंडे देते हैं और घर और आसपास की सफाई का ध्यान रखें इसीलिए, ताकि मच्छर जो हैं वो अंडे ना दे पाएं और इन्हें फैलने से रोका जा सकता है आप अगर सावधानी बरतें। साथ ही गमलों के साथ साथ कूलर जो हमारे घर पे होते हैं उनमें भी पानी जमा रहता है, उनकी भी सफाई आप समय समय पर करते रहें। पानी की जो टंकी है छत के ऊपर, उसका भी हमेशा मुंह ढक करके रखें ताकि कीड़े या मच्छर उसमें ना पनप सकें। और मच्छरदानी का जरूर उपयोग करें रात को सोते समय। और जो बाज़ार में हानिकारक कॉइल आते हैं, मॉस्किटो कॉइल, उन्हें आप घर में इस्तेमाल करने से बचें। अगरबत्ती का जो मॉस्किटो कॉइल वाले अगरबत्ती हैं उन्हें भी आप ना जलाएं, वो भी केमिकल वाले धुएं छोड़ते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक हैं। तो इन सब बातों का आप ज़रूर ध्यान रखें और इस बरसात के मौसम में खुद को स्वस्थ रखें, सुरक्षित रखें। इन्हीं कामनाओं के साथ कार्यक्रम में एक और गीत का वक्त है।

अपनी टीम के 102.1 MHz और इस वक्त आप सुन रहे हैं दैनिक कार्यक्रम हेलो हजारीबाग। अब आइए जानते हैं आकाशीय बिजली और वज्रपात से सावधानियां और उनसे कैसे बचा जा सकता है। श्रोताओं, बरसात का मौसम है या बारिश या मानसून का जो मौसम होता है, बिजली कड़कना या गिरना इसमें आम बात होती है। ऐसे मौसम में इससे बचने के लिए स्वयं की सावधानी बहुत जरूरी है। समय समय पर

जागरूक करने के लिए प्रत्येक वर्ष प्रचार प्रसार भी करती रहती है। सामान्यतः बिजली के दौरान लोग पेड़ों के नीचे छिपने बचने चले जाते हैं। बिजली और मोबाइल टावर के नजदीक होने और पानी के करीब होने के कारण वे आकाशीय बिजली की चपेट में आ जाते हैं, जिससे कई बार लोगों की जान तक चली जाती है। बारिश के समय या आकाशीय बिजली के कड़कने के समय घरों के अंदर ही रहना चाहिए, और अगर बहुत जरूरी हो घर से बाहर निकलना तो आप अपनी सुरक्षा का ख्याल जरूर रखें। पेड़ के पास या खुले में रहने से अच्छा है किसी मकान के पास खड़े हो जाएं। पक्के मकान में आप जाकर के अपनी सुरक्षित स्थान को ढूंढें, क्योंकि बिजली अधिकतर ऊंचे स्थानों या लंबे ऊंचे पेड़ों और खंभों पर ही गिरती है, पानी वाले जगहों पर ही गिरती है। इसलिए घनघोर बारिश और आकाशीय बिजली कड़कने के समय आप सुरक्षित स्थान का चयन जरूर करें, सावधानी के साथ रहें। और घनघोर बारिश और आकाशीय बिजली कड़कने के समय घर के अंदर भी कई सारी छोटी छोटी चीजों पर सावधानी रखना जरूरी होता है, जैसे कि टीवी, कंप्यूटर और अन्य बिजली के उपकरण जो हैं आपके घर पर मौजूद, उनके प्लग निकाल दिया करें। इससे भी बिजली कड़कने के साथ ही उनका नुकसान हो जाता है और कई बार भारी नुकसान उठाना पड़ता है हमें। और बिजली कड़कने से जो नुकसान होते हैं वो भी हमें होने की, घर के अंदर भी होने की संभावना बन जाती है। तो खिड़कियों और दरवाजों और धातु के पाइप या नलों से भी दूरी बना करके रखें। और गरज के समय नहाना, कपड़े धोना या नल के पानी का उपयोग करना ये सब ना करें, इनसे बचें, क्योंकि पानी से बिजली प्रवाहित होती है और घर से और जो बिजली कड़कने की जो कड़कने का जो समय होता है, तो ऐसे में अगर आप पानी का उपयोग कर रहे होंगे तो आपको भी बिजली के करंट के झटके लग सकते हैं और आप भी थोड़े घायल हो सकते हैं या परेशान हो सकते हैं। इसलिए पानी के जितने भी उपयोग वाले काम है वो उस समय पर ना करें। साथ ही घर से बाहर रहने पर सावधानी ये रखें कि हमेशा बचने के लिए किसी पेड़ या खंभे के बजाय पक्के मकान में जरूर जाएं, और कार या बस से अगर आप से सफर कर रहे हैं तो उनकी खिड़कियों को अवश्य बंद रखें। यदि आसपास कोई पक्का मकान ना मिले तो आप जमीन पर दोनों पैरों को जोड़ते हुए एड़ियों को सटा करके और उकड़ू होकर के बैठ जाएं, जैसे कई बार आप ग्रामीण इलाकों में बैठ करके लोग खाना भी उस पोज में खाते हैं। तो वैसे स्थिति में आप उकड़ू होकर के बैठ जाएं और दोनों कानों को बंद कर लें, आंखों को बंद कर लें। इससे क्या होगा कि आप जो वज्रपात है उससे आप बच सकते हैं। साथ ही नदी, तालाब जैसी जगहों पर जाने से बचें। बिजली गिरने के दौरान मजबूत छत बहुत ज्यादा सुरक्षित साधन हो सकता है बचाव का। घरों की छतों पर तड़ित चालक आप जरूर लगवाएं और यदि जंगल में है तो बौने और घने पेड़ों के नीचे आप बच सकते हैं। ऊंचे पेड़ों के नीचे बचने ना जाएं आप। और गीले खेतों में हल चलाने या धान रोपने के समय भी किसानों को कई बार वज्रपात का सामना करना पड़ता है, वैसे में उनकी जान भी चली जाती है, कई बार घायल भी हो जाते हैं वे। तो ऐसे समय में आप क्या करें कि खेतों में उस समय हल चलाने से बचें, धान रोपने से बचें। आप कोशिश करें कि सूखे स्थान पर या फिर जो झुरमुट जैसे पेड़ पौधे होते हैं उनके नीचे आप जाकर के बचें, लंबे पेड़ों के नीचे ना बचें। तो ये आवश्यक बातें हैं जो आकाशीय बिजली और वज्रपात से हमारा बचाव कर सकते हैं। तो इन सब बातों का आप जरूर ध्यान रखें और इस बरसात के मौसम में आप जरूर बच करके रहें। साथ ही जो बहुत जहरीले सांप बिच्छू होते हैं वे भी इस मौसम में बहुत सक्रिय होते हैं, तो सांप भी कई बार लोगों को काट लेते हैं। खेतों में काम करने के दौरान बिच्छू भी डस लेता है, तो ऐसे सिचुएशन में आप जो प्राथमिक उपचार थोड़ा बहुत कर सकते हैं तो करें और जितनी जल्दी हो सके उन्हें अस्पतालों में जरूर लेकर के आए, क्योंकि अस्पताल में आने से उनकी जान भी बच सकती है और सबसे बड़ी बात कि अस्पताल में आने से ऐसे मरीजों को

मुफ्त में सरकार की तरफ से इलाज करवाया जाता है, अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध होती है। तो इन सब बातों का आप जरूर ध्यान रखें और इस बरसात के मौसम में सुरक्षित रहें।

जी आप हमारे जो घर के बुजुर्ग होते हैं, अभी का जो दौर है वो कहीं ना कहीं बुजुर्गों से हम कटने लग गए हैं, और बुजुर्गों की जो बातें हैं, उनके जो अनुभव हैं, उन्हें हम अपने जीवन में शामिल नहीं करना चाहते हैं। हमारी जो विचारधाराएं हैं वो उनसे बिल्कुल विपरीत हो गई हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हम अपने बुजुर्गों का वो सम्मान, उनकी जो और उनका जो महत्व है हमारे जीवन में, उसे हम नजरअंदाज करते चले जा रहे हैं, और वंचित होकर के उनसे हम अपने जीवन में बहुत कुछ खोते भी चले जा रहे हैं। तो इन्हें संजो करके रखना हमारा कर्तव्य है। दोस्तों, गांव की चौपाल पर अखबार पढ़ते बुजुर्ग, मंदिर की ओर जाते वरिष्ठ नागरिक, खेतों में अनुभव बांटते दादा दादी, और बच्चों को लोक कथाएं सुनाती नानियां, ये जीवंत तस्वीर पेश करती हैं हमारे समृद्ध समाज की। बुजुर्ग सिर्फ उम्र का एक पड़ाव नहीं है, बल्कि परिवार और समाज की मजबूत कड़ी है। गांव की चौपाल पर अखबार पढ़ते बुजुर्ग हमें देखने से ही इतने सुकून दे जाते हैं, और उनकी जो बातें हैं, उनके जीवन के जो अनुभव हैं, कड़वे मीठे अनुभव, उन्हें सुनकर के कई बार हम हर्षित पुलकित भी होते हैं, और कई बार बहुत सारी सीख भी हमें मिलती है उनके जीवन के अनुभवों से। बुजुर्ग केवल एक आयु वर्ग नहीं है, बल्कि अनुभव, परंपराओं और संस्कारों की जीवित विरासत है। अधिकांश लोग शहरों की भागदौड़ छोड़ गांव की ओर अपनी जड़ों से फिर जुड़ने लगे हैं, लौटने लगे हैं। अब आधुनिक जीवन शैली है, रोजगार की तलाश में युवाओं का पलायन और छोटे परिवारों की बढ़ती प्रवृत्ति ने इस तस्वीर को काफी हद तक बदल दिया है। गांवों में आज बुजुर्ग माता पिता अकेले रह रहे हैं, बच्चे पढ़ाई और नौकरी के लिए शहरों और दूसरे राज्यों में जा बसे हैं। मोबाइल और वीडियो कॉल ने दूरियां कम जरूर की हैं, लेकिन साथ बैठकर बातें करने और अपनापन महसूस करने का विकल्प कोई तकनीक नहीं दे पाएगा। आर्थिक और सांख्यिकी विभाग के सर्वेक्षण के अनुसार जन्म के समय औसत जीवन प्रत्याशा 73.5 वर्ष है। यह स्वास्थ्य सुविधाओं और जीवन स्तर में सुधार का संकेत है, लेकिन लंबी उम्र अपने साथ नई चुनौतियां भी लेकर आती हैं। बढ़ती आयु के साथ स्वास्थ्य देखभाल, नियमित स्वास्थ्य जांच, मानसिक स्वास्थ्य, अकेलापन और आर्थिक सुरक्षा जैसे मुद्दे अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पहले जहां बुजुर्ग की सबसे बड़ी चिंता आजीविका की होती थी, वहीं अब उनके लिए सम्मानजनक और स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना बड़ी आवश्यकता बन गई है। हम अपने बुजुर्गों से प्यार करें, उन्हें स्नेह दें, सम्मान दें, और उनके जीवन के अनुभवों से काफी कुछ सीख करके हम भी अपने जीवन को संवारें। इसी में हमारी भी भलाई है और हमारे बुजुर्गों का भी सम्मान है। यह दिन बुजुर्गों के समाज में योगदान, उनके लंबे अनुभवों और ज्ञान का सम्मान करने के लिए समर्पित है। इसके अलावा यह वृद्धजनों के सेहत और सुरक्षा और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता भी बढ़ाता है। बुजुर्गों के अमूल्य अनुभवों और परिवार समाज के प्रति उनके समर्पण को सराहना चाहिए इस खास दिवस पर। इस खास दिवस पर क्या कहें, तो हम बुजुर्गों का सम्मान प्रतिदिन करना हमारा कर्तव्य होना चाहिए, और उनका सम्मान करते हैं, उनके अनुभवों के साथ हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो ही हम अपने जीवन को खुशहाल पाते हैं और सुलझा हुआ पाते हैं। नागरिक दिवस जो है, ये मनाने का की शुरुआत जो है इसकी हुई अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड रीगन द्वारा। 19 अगस्त 1988 को इसकी घोषणा की गई थी और 21 अगस्त को यह दिवस घोषित हुआ। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने भी इसे मान्यता दी और तब से ये विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाने लगा। लेकिन आज इसकी आवश्यकता इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि समाज में हम देख रहे हैं कि

हम अपनी जो एक नई पीढ़ी के गैप को हम मेंटेन करने लगे हैं, ऐसे हमारे जो बुजुर्ग हैं वो काफी दुखी रह रहे हैं, आहत रह रहे हैं, अपने जीवन के अमूल्य पड़ाव पर वो पहुंच करके भी निसहाय और बेसहारा महसूस कर रहे हैं पूरे घर परिवार के रहने के बावजूद भी। तो उनके दुविधा को, उनकी इस परिस्थिति को कैसे हम ऊपर उन्हें ला सकते हैं, उन्हें कैसे उबार सकते हैं, उनका साथ दे करके, उनका प्यार उनको दे करके और उसे सम्मान, उनके सम्मान, उन्हें सम्मान से हम कैसे रख सकते हैं, इनकी आवश्यकता है। तो आप अपने बुजुर्गों के साथ रहें, उन्हें प्यार दें, सम्मान दें। इन्हीं दुआओं के साथ एक कार्यक्रम में गीत हम आपको सुना रहे हैं।

0: अगर अब कार्यक्रम में थोड़ा समय और बच रहा है तो हम आपको अखबार की सुर्खियों से करवा रहे हैं रूबरू। श्रोताओं, विनोबा भावे विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में तुलसीदास जयंती मनाई गई। विद्वानों ने सुंदरकांड का स्वस्वर पाठ किया, मंत्रमुग्ध हो गए श्रोता। विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के हिंदी विभाग में गोस्वामी तुलसीदास जयंती के अवसर पर विद्वत वक्तव्य और रामचरितमानस गान के सुंदरकांड का स्वस्वर पाठ किया गया। कार्यक्रम में तुलसीदास के साहित्य, उनके कृतित्व और भारतीय सांस्कृतिक चेतना और रामचरितमानस के महत्व पर विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए। इसके साथ ही जापानी पर्यटकों को भाई हजारीबाग की सुहराई कला खरीदी कई पेंटिंग। जापान से आए 5 पर्यटकों ने गुरुवार को हजारीबाग में संचालित सुहराई कला महिला विकास समिति की लघु उत्पादन इकाई का भ्रमण किया। मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्यम विकास बोर्ड द्वारा संचालित इकाई में विदेशी मेहमानों ने झारखंड के प्रसिद्ध सुहराई और कोहवर कला को करीब से जाना। स्थानीय महिला कलाकारों की कलाकृतियों को सराहना करते हुए उन्होंने सुहराई पेंटिंग की खरीदारी भी की और भ्रमण के दौरान कलाकारों की पारंपरिक सुहराई गीत गाकर अतिथियों का स्वागत भी महिलाओं ने किया। इसके साथ ही आपको बताएं, देवघर में अंतिम सोमवारी पर होगा भव्य ड्रोन शो। राजकीय श्रावणी मेला 2026 की भव्यता और दिव्यता को एक नए शिखर पर ले जाने के लिए झारखंड सरकार का पर्यटन विभाग इस वर्ष एक अभूतपूर्व पहल कर रहा है। श्रावणी मेले के दौरान देवघर आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के आध्यात्मिक अनुभव को अलौकिक बनाने के उद्देश्य से स्थानीय शिवलोक परिसर में लगातार दूसरी बार 24 अगस्त 2026 को भव्य एवं अत्याधुनिक ड्रोन शो का आयोजन किया जा रहा है। वहीं आपको बताएं, डिजिटल कैंपस के रूप में विकसित होगा कोल्हान विश्वविद्यालय। अगली खबर से आपको रूबरू करवाएं तो 29 से 31 अगस्त तक कर्जन स्टेडियम हजारीबाग में होगा प्रमंडल स्तरीय खेल महोत्सव। प्रमंडल स्तरीय हजारीबाग खेल महोत्सव की तैयारियों को लेकर जिला खेल पदाधिकारी की अध्यक्षता में शारीरिक शिक्षा शिक्षकों की बैठक हुई। खेल महोत्सव का आयोजन 29 से 31 अगस्त तक कर्जन स्टेडियम में किया जाएगा। आयोजन जिला प्रशासन एवं हजारीबाग ओलंपिक एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में किया जाएगा। वहीं अगली खबर से आपको रूबरू करवाएं तो खेल जगत से ही अगली खबर है। बोकारो झारखंड की अंकिता भक्त ने 6-0 से जीता नेशनल रैंकिंग आर्चरी टूर्नामेंट और महिला हॉकी अजय रहकर दूसरे दौर में पहुंची टीम इंडिया। त्रिशा गायत्री अपने दूसरे मेडल से एक कदम दूर। वर्ल्ड बैडमिंटन में सिबलिंग कोर्ट पर एक जैसा फिट प्लेइंग स्टाइल। एशियाड से पहले भारत बना महिला कबड्डी का सेंटर। हरियाणा में ट्रेनिंग कर रहे ईरान और नेपाल के खिलाड़ी। और अब खबरें कुछ देश विदेश की। तो भारत जापान ने समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए समझौता किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत यात्रा पर आए जापान के रक्षा मंत्री से द्विपक्षीय वार्ता की है। ईरान के मददगार भी खामियाजा भुगतेंगे, ऐसा ट्रंप ने कहा है और देशों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है। पाकिस्तानी उच्चायोग के बाहर अवैध निर्माण ध्वस्त किया गया और भारत में 24 घंटे सौर पवन बिजली की शुरुआत जल्द ही की जाएगी। मिर्जा आलमगीर बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति बने हैं। और केन्या में हेलीकॉप्टर क्रैश, 7 लोगों की जाने चली गई। इसराइल में भारतीय की मौत, संदिग्ध गिरफ्तार। भारत अमेरिका की द्विपक्षीय साझेदारी पर चर्चा होनी है। रूस के मिसाइल हमले से 14 की मौत हो गई है। और अब इन अखबारों की सुर्खियों के बाद हम आपको बताएं आज के मौसम का हाल। तो आज अधिकतम रहने वाला है 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहेगा आज का तापमान 23.0 डिग्री सेल्सियस। कल के तापमान की बात करें तो कल 31.0 डिग्री सेल्सियस अधिकतम रहेगा हजारीबाग का तापमान और न्यूनतम रहेगा 23.0 डिग्री सेल्सियस। और शहर में गतिविधियों की बातें करें तो झील परिसर में सुबह 6 बजे जनता दरबार योग शिविर का आयोजन किया गया, जनता दरबार समाहरणालय परिसर में लगना है। समय होगा पूर्वाहन 11 बजे और सहकारिता संबंधी समीक्षा बैठक की जानी है सहकारिता कार्यालय में। समय होगा 11:30 पर और आज के सूर्यास्त का समय होगा शाम 6:28 पर। सूर्योदय का समय कल होगा सुबह 5:25 पर। आर्द्रता की बात करें तो 83% अधिकतम आर्द्रता होगी और न्यूनतम होगी 71%। और अब इसी के साथ कार्यक्रम हेलो हजारीबाग से श्वेता को दीजिए इजाजत। नमस्कार। कार्यक्रम में चलते चलते आज का सुविचार, खुशी तैयार नहीं मिलती, यह हमारे काम से आती है। आप सुन रहे थे दैनिक कार्यक्रम हेलो हजारीबाग। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। अब आइए हम आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र, जहां से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रमों को। तो कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: रंग तरंग की पहली पेशकश ये।

0: आईना ये था एल्बम का नाम। जगजीत सिंह की आवाज में गजल अभी आप सुन रहे थे। इब्राहिम अश्क ने इसे लिखा और संगीत जगजीत सिंह का।
1: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
2: मिलो जो तुझे बताए।
1: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
3: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
1: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
2: दिना दिना, हे आला दिना, बदली दुनिया के आया नया।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

जरा अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दो रुसवा।

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी मेरा प्यार है सर्द पानी मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ। हाँ।

मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में ये कवाली अभी आप सुन रहे थे। अमर अकबर एंथनी फिल्म का नाम था। आनंद बख्शी ने इसे लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज़।

0: अलीशा की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे, मेड इन इंडिया एल्बम का नाम था बिडू का संगीत।
1: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
2: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
1: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
3: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

यूनिक, ये था एल्बम का नाम। जगजीत सिंह की आवाज में ये गजल अभी आप सुन रहे थे। कैफ भोपाली ने इसे लिखा और संगीत जगजीत सिंह का।

0: मोहम्मद रफी, आशा भोसले और साथियों की आवाजों में ये पेशकश अभी आप सुन रहे थे। हम किसी से कम नहीं फिल्म का नाम था, मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा, आर डी बर्मन की तर्ज थी।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर, हर रविवार शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

फाल्गुनी पाठक की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे, मेरी चूनर उड़ उड़ जाए एल्बम से। ललित सेन का म्यूजिक था और उन्होंने इसे लिखा।

अनामिका की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे, कैट वॉक एल्बम का नाम था। इसके साथ ही आज का ये रंग तरंग प्रोग्राम यहीं समाप्त होता है। रंग

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक चल रही है। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार और लचीले डिजिटल बुनियादी ढांचा में सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श कर रहे हैं। बैठक का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन। सरकार ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के लाभ छोटे और सीमांत किसानों सहित सभी किसानों तक पहुंचाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें एक पहल प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि पिछले कई वर्षों में इस योजना के तहत बजट आवंटन में काफी वृद्धि हुई है। योजना के अंतर्गत 2024-25 में वास्तविक खर्च लगभग 5,400 करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2026-27 में बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। भारतीय रेलवे जम्मू और श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत रेलगाड़ी शुरू करेगा। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पत्र के साथ एक पोस्ट साझा की। पत्र में श्री वैष्णव ने बताया कि शहीद कैप्टन तुषार महाजन उधमपुर के रास्ते जम्मू तवी और श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस को मंजूरी दे दी गई है। इससे संपर्क सुविधा बेहतर होगी और रेल यात्रा अधिक सुविधाजनक बनेगी। दिल्ली पुलिस के साइबर सेल ने अंतर्राज्यीय डिजिटल अरेस्ट साइबर धोखाधड़ी गिरोह का भंडाफोड़ कर पंजाब और राजस्थान से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारियां भारतीय सेना के एक सेवानिवृत्त कर्नल से 15 लाख रुपए से अधिक की कथित ठगी के मामले में की गई है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 4 स्मार्टफोन और 6 सिम कार्ड भी बरामद किए हैं। मुंबई के कुर्ला पूर्व इलाके में आज तड़के एक क्रेन के घरों पर गिर जाने से 8 लोग घायल हो गए। बृहन मुंबई महानगर पालिका ने बताया है कि घटना के बाद घायलों को अस्पताल ले जाया गया। सभी घायलों की हालत स्थिर बताई जा रही है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आज सुबह इस्लामाबाद के एक निजी अस्पताल में चिकित्सकीय जांच के बाद रावलपिंडी की अदियाला जेल वापस भेज दिया गया। उन्हें आधी रात के बाद शिफा इंटरनेशनल अस्पताल ले जाया गया था। 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 2 दिन के भीतर अस्पताल ले जाने का निर्देश दिया था। इमरान खान को भ्रष्टाचार समेत कई मामलों में 5 अगस्त 2023 को गिरफ्तार किया गया था। तब से वे रावलपिंडी की अदियाला जेल में हैं। ट्रंप प्रशासन ने हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमरीकी प्रशासन ने इस गुट को ईरान के प्रतिनिधि के तौर पर फिर से वर्गीकृत किया है। अमरीका के वित्त विभाग ने 10 ऐसे लोगों पर प्रतिबंधों की घोषणा की है जिन पर हिजबुल्ला को धन अंतरित करने के लिए जिम्मेदार नेटवर्क का हिस्सा होने का आरोप है। सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने 4 दिन में 2 जहाजों का अपहरण कर लिया है। खबरों के मुताबिक लुतुफ में तुर्की के हथियार और उपकरण थे जिन्हें मोगादिशु में एक सेना प्रशिक्षण केंद्र ले जाया जा रहा था। लुतुफ के 10 लोगों के चालक दल में 6 भारतीय, 1 तुर्की नागरिक, 1 जॉर्जियाई और 2 सर्बियाई सुरक्षा गार्ड शामिल थे। जम्मू कश्मीर में स्कूल शिक्षा विभाग ने अपने कर्मचारियों के लिए व्यापक स्थानांतरण नीति अधिसूचित की है। इसका उद्देश्य तबादलों और नियुक्तियों में अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता लाना है। सरकार ने कहा है कि इस नीति का समग्र उद्देश्य विशेष रूप से दूरस्थ और कम सुविधा प्राप्त क्षेत्रों में मानव संसाधनों का संतुलित उपयोग, कर्मचारियों का समान वितरण, कुशल प्रशासन और निर्बाध शैक्षणिक कार्य संचालन सुनिश्चित करना है। घरेलू शेयर बाजार में आज मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 77 अंक बढ़कर 77,615, जबकि निफ्टी 21 अंक की वृद्धि के साथ 24,253 पर कारोबार कर रहा था। एफआईएच हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार एम्स्टर्डम में रात 9:30 बजे शुरू होगा। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत आज जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक होगी। 2 दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। बैठक में पर्यटन क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं। बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती हैं।
1: यादें फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे, सुनिधि चौहान और महालक्ष्मी की आवाजों में। प्रोग्राम में वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।

0: अमिताभ बच्चन और अलका याग्निक की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे बागवान फिल्म से। समीर ने इसे लिखा, आदेश श्रीवास्तव का संगीत। आज यादों की महफिल में वो गीत जहां इंतजार है, तड़प है, ऐसे गीत हम आपको आज इस प्रोग्राम में सुनवा रहे हैं।
1: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
2: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
1: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
3: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
1: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

0: लता मंगेशकर की आवाज में गीत बॉबी फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी ने इसे लिखा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज।
1: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
2: मिलो जो तुम्हें बताए।
1: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
3: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
1: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
2: दिना दिना, हे अल्लाह दिना, बदली दुनिया के आया नया।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

कयामत से कयामत तक, ये था फिल्म का नाम। अलका याग्निक, उदित नारायण की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और आनंद मिलन का संगीत। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम यादों की महफिल यहीं संपन्न हुआ।

नमस्कार श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत आप सबका इस प्रोग्राम में जिसका नाम है सुरीला सफर। मैं हूं अनुराधा उपाध्याय, आज आपके साथ इस सफर में। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम एक इबारत या टेक्स्ट हमारे फेसबुक पेज पर पोस्ट करते हैं, जिसमें छुपे होते हैं कुछ शब्द जो आपको पहचानने हैं और बताना है कि उन शब्दों से कौन कौन से गीत आज इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। आपकी गीतों की लिस्ट मैं देख चुकी हूँ कमेंट बॉक्स में जाकर, और भी आपके कमेंट्स आ रहे हैं ये भी मैं देख रही हूँ, और देखते हैं कि आपके ये गीतों की लिस्ट या शब्द हमारे गीतों से कितने मिलते जुलते हैं। और अगर ना भी मिले तो भी आप अपने गीतों को, पसंदीदा गीतों को कमेंट्स में लिख सकते हैं, हो सकता है हम इस प्रोग्राम में उन्हें शामिल कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस प्रोग्राम की, और जिन श्रोताओं ने वो टेक्स्ट या इबारत नहीं पढ़ी है अब तक, हम उन्हें एक बार फिर से पढ़कर सुना देते हैं। इबारत इस प्रकार है, शाम का मौसम कुछ बदला बदला था, कई सालों बाद शहर में सावन इतनी खूबसूरती से आया था। खिड़की के पास बैठी एक लड़की बारिश को देख रही थी और जाने क्यों आज फिर उसे वही आवाज सुनाई दे रही थी। सुनिए, कुछ कहिए ना। सालों पहले इसी मौसम में एक अजनबी उससे मिलने हसीन वादियों में आया था। दोनों घंटों बारिश में भीगे थे, चांद को देखते और छोटी छोटी बातों पर हंसते। उसने कहा, तुम्हें पता है ये मौसम तुम्हारे आने से अच्छा लगता है। फिर एक दिन उस परदेसी को दूर, बहुत दूर जाना पड़ा। अब बस इंतजार उसका साथी बना। हर सावन में वही राहें, वही बरसात और वही शाम, वो ही उसके साथी थे, उसे उसकी याद दिलाते। आज भी बारिश की बूंदें खिड़की पर दस्तक दे रही थी, लेकिन अब के सावन में जी डरे बेचारा दिल क्या करे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई, दरवाजा खोला तो सामने उसे देखा, बस ये कहा, अब के तो रास्ता भूल गए लेकिन अब कहीं ना जाना। बहुत प्यार से उसने कहा, मैं चांद चुरा कर तो नहीं ला पाया लेकिन तुम्हारा इंतजार जरूर अपने साथ लेकर लौट आया हूं। तो साथियों, ये थी इबारत। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से शब्द आपने चुने हैं और कौन कौन से गीत आज इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ।

0: ये गीत अभी आप सुन रहे थे बातों बातों में फिल्म से किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में, अमित खन्ना ने इसे लिखा और राजेश रोशन का संगीत। साथ ही आपके खूबसूरत प्यारे प्यारे कमेंट्स हम तक पहुंच चुके हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज इबारत उस इंतजार, उसी मोहब्बत और उस विश्वास की कहानी है जहां बरसों की दूरी भी दिलों के रिश्तों को कम नहीं कर पाती है। हालांकि संदेश बहुत लंबा है, लेकिन मैं चाहती हूं कि सभी के संदेश शामिल हो, इसीलिए कुछ पंक्तियां ले रही हूं। हमारे दूसरे श्रोता कहते हैं कि विरह प्रेम की वो निशब्द ऋतु है जिसमें स्मृतियां ही सहचर बन जाती है।
1: समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं तृप्ति कुमारी। पहले मुख्य समाचार। झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, जीएसएससी सीजीएल और सीडीपीओ नियुक्ति रद्द करने के सरकारी आदेश पर लगाई रोक। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा विवाद में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने की सीबीआई जांच की मांग। कहा, सत्ता प्रायोजित भ्रष्टाचार का सच केवल केंद्रीय एजेंसी ही ला सकती है सामने। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने मिशन शक्ति, वात्सल्य और पोषण 2.0 के प्रभावी क्रियान्वयन का संकल्प दोहराया। योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का दिया निर्देश। एसआईआर के तहत राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर 22 और 23 अगस्त को लगेगा अंतिम विशेष शिविर। नए मतदाताओं के लिए फॉर्म 6 और परिवार का नाम जोड़ने के लिए भरा जाएगा फॉर्म 8। और नक्सल विरोधी अभियान में हजारीबाग पुलिस को बड़ी सफलता। वर्षों से फरार प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीपीसी एरिया कमांडर समेत 2 उग्रवादी गिरफ्तार। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड हाईकोर्ट ने जीएसएससी सीजीएल और सीडीपीओ परीक्षाओं की नियुक्ति रद्द करने के सरकारी आदेश पर रोक लगा दी है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने राज्य सरकार और जेपीएससी को 7 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है, जबकि मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। इससे पहले कल जेपीएससी नियुक्तियों को रद्द करने के सरकारी आदेश पर हाईकोर्ट ने अंतिम रोक लगाई थी। रक्षा राज्य मंत्री और रांची सांसद संजय सेठ ने जेपीएससी तथा जेएसएससी परीक्षाओं में हुई कथित गड़बड़ियों की सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि सीआईडी के पास भ्रष्टाचारियों की पूरी कुंडली होने के बावजूद 4 वर्षों से मामले को दबाया गया, जिसका सच सिर्फ सीबीआई जांच से ही सामने आ सकता है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था में विवादित अधिकारियों की तैनाती को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर तीखे सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि डीजीपी का पद अब संवैधानिक जिम्मेदारी के बजाय राजनीतिक कृपा का पद बन गया है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य और पोषण 2.0 योजनाओं को लेकर सरकार का संकल्प दोहराया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के विजन के तहत केवल बजट खर्च करना लक्ष्य नहीं है, अब हमारा पूरा ध्यान रिव्यू को सीधे एक्शन और एक्शन को धरातल पर सकारात्मक परिणामों में बदलने पर केंद्रित है।
1: रिव्यू को एक्शन में और एक्शन को आउटकम में बदलने की अब हमारी बारी है, क्योंकि रिव्यू का उद्देश्य केवल यह जानना नहीं कि अब कितना काम हुआ या कितने पैसे खर्च हुए, हमें ये जानना है कि कैसे इसका बेहतर हमको आउटकम्स मिल सके। जो प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है, उस उद्देश्य के साथ हम कैसे उसको बेहतर बना सके।
0: मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के तहत राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर फॉर्म 6 और फॉर्म 8 भरने के लिए कल से 2 दिवसीय विशेष शिविर लगाए जाएंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि जिन पात्र नागरिकों की आयु 1 अक्टूबर 2026 या उससे पहले 18 वर्ष पूरी हो रही है, वे मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य दर्ज कराएं।
2: इनका उम्र 1 अक्टूबर 2026 में 18 हो रहा है, नहीं मतलब हो चुका है, अपने फॉर्म 6 भरवा के अपने नाम का निबंधन कर लें। सभी को मैं एक फिर अनुरोध करता हूँ, एसएआर का रोल में नाम रहना अति महत्वपूर्ण है, इसलिए आप थोड़ा समय निकाल के एसएआर के रोल में अपने नाम का निबंधन कर लें।
0: बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति की टीम ने रांची सदर अस्पताल का भ्रमण कर यहां की चिकित्सा व्यवस्था का जायजा लिया। देश के शीर्ष 10 अस्पतालों में शामिल इस केंद्र की आयुष्मान योजना और सुपर स्पेशलिटी सेवाओं की टीम ने सराहना की। इस दौरे का उद्देश्य अंतर्राज्यीय स्तर पर स्वास्थ्य क्षेत्र की सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को साझा करना है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्सेंडल @airnewsalerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्सेंडल @airnews_ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल @airnewsranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झामुमो ने केंद्र के एमएमडीआर संशोधन विधेयक 2026 के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन की रणनीति तैयार की है। इसके तहत राज्यव्यापी जनजागरण, आर्थिक नाकेबंदी और दिल्ली कूच शामिल है। महासचिव विनोद पांडे ने स्पष्ट किया कि पार्टी इसे काला कानून मानती है और इसके खिलाफ सड़क से लेकर कानूनी स्तर पर संघर्ष करेगी।
3: तो इस राज्य में आर्थिक नाकेबंदी भी होगी, जरूरत पड़ी तो हम देश के प्रधानमंत्री और देश के राष्ट्रपति महोदय के पास भी जाएंगे। अगर बाबूलाल मरांडी जी इस राज्य का हित चाहते हैं, इस राज्य के लोगों का हित चाहते हैं, तो फिर इस विधेयक को वापस कराने में अपना सहयोग करें, अन्य राज्यों का तुलना झारखंड से नहीं करें।
0: इधर भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने खनिज संशोधन अधिनियम पर झामुमो की विरोध को राजनीतिक ड्रामा बताया है। उन्होंने कहा कि MMDR कानून का उद्देश्य राज्यों के अधिकार छीनना नहीं बल्कि खनिज क्षेत्र में पारदर्शिता और निवेश बढ़ाना है।
4: तब पार्टी के कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतर कर इस कानून को जनता के पास लेकर जाने वाले, कानून में क्या प्रावधान किया गया है और शेष के नाम पर किस प्रकार से यहाँ पर लूट हो रही, वो जनता को हमारे कार्यकर्ता बताने वाले। झारखंड में बहुत सारे उद्योग चल रहे हैं, वो झारखंड से लोग कोयला नहीं ले रहे हैं, वो उड़ीसा से मंगा रहे हैं, इसीलिए आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है झारखंड का, आप अंदाजा लगा सकते।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी NTA ने उत्तर कुंजी को चुनौती देने की प्रणाली को सभी परीक्षार्थियों के लिए पूरी तरह निष्पक्ष बताया है। एजेंसी ने इसके महंगे होने की चिंताओं को खारिज किया है। एक रिपोर्ट।
5: NTA ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अगर कोई भी उम्मीदवार किसी प्रश्न को चुनौती देता है और विषय विशेषज्ञ उस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं तो संशोधित उत्तर परीक्षा देने वाले सभी उम्मीदवार पर लागू होता है। NTA ने कहा कि उत्तर को चुनौती देने पर फीस इसलिए ली जाती है ताकि अकारण की चुनौती से बचा जा सके और अगर चुनौती सही साबित होती है तो फीस वापस कर दी जाती है। NTA ने बताया कि जिस उम्मीदवार की चुनौती सही मानी जाती है उसे प्रति प्रश्न 200 रुपए वापस किए जाते हैं। NTA ने कहा कि फीस का उद्देश्य अकारण की चुनौती को रोकना है, न कि सही चुनौती से लाभ लेना। किसी भी उम्मीदवार की सही चुनौती लाखों दूसरे उम्मीदवारों के रिकॉर्ड को सही कर सकती है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: हजारीबाग पुलिस ने कटकम सांडी थाना क्षेत्र से प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन TPC के एरिया कमांडर बलवंत जी उर्फ छोटू कुमार समेत 2 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। वर्षों से फरार चल रहे इन आरोपियों को SP के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पलामू जिले के सतबरवा में पुल निर्माण स्थल पर आरोपियों ने गोलीबारी कर 2 मजदूरों को घायल कर दिया है। गंभीर स्थिति को देखते हुए दोनों को रांची रिम्स रेफर किया गया है। पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी ने घटनास्थल का जायजा लिया। प्राथमिक जांच में मामला लेवी और रंगदारी से जुड़ा बताया जा रहा है। घरेलू शेयर बाजार सूचकांकों में आज मामूली बढ़त दर्ज की गई है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 77 अंक बढ़कर 77,615 जबकि निफ्टी 21 अंक की वृद्धि के साथ 24,253 पर कारोबार कर रहा था। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,49,200 रुपये प्रति 10 ग्राम है जबकि चांदी की कीमत 2,52,000 रुपये प्रति किलो है। राज्य में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय है और आज राज्य के कई हिस्सों में बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने गरज चमक वज्रपात और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार आगामी 23 अगस्त को राज्य के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, GSSC, CGL और CDPO नियुक्ति रद्द करने के सरकारी आदेश पर लगाई रोक। JPSC, JSSC परीक्षा विवाद में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने की CBI जांच की मांग। कहा, सत्ता प्रायोजित भ्रष्टाचार का सच केवल केंद्रीय एजेंसी ही ला सकती है सामने। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने मिशन शक्ति, वात्सल्य और पोषण 2.0 के प्रभावी क्रियान्वयन का संकल्प दोहराया। योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का दिया निर्देश। SIR के तहत राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर 22 और 23 अगस्त को लगेगा अंतिम विशेष शिविर। नए मतदाताओं के लिए फॉर्म 6 और परिवार का नाम जोड़ने के लिए भरा जाएगा फॉर्म 8। और नक्सल विरोधी अभियान में हजारीबाग पुलिस को बड़ी सफलता, वर्षों से फरार प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन TPC एरिया कमांडर समेत 2 उग्रवादी गिरफ्तार। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
6: दुनिया के शोर से काट कर खुद से रूबरू कराती है। ये वो जादुई वक्त है जब अंधेरा भारी नहीं लगता बल्कि बारिश की चादर में लिपट कर हर रूह कुछ देर के लिए थमना चाहती है और सिर्फ सुनना चाहती है बाहर गिरती बूंदों की धुन और भीतर गूंजती अपनी ही खामोशी। बहुत ही खूबसूरती से आपने ये संदेश लिखा है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि ये मेरा पहला पोस्ट है, मैं आपका विविध भारती पूरा दिन सुनता हूँ और सुबह से चालू हो जाता है हमारा रेडियो सेट। प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं, जो भी गाने आते हैं सब इन्हें बहुत पसंद है और पूरा दिन इनका बहुत अच्छे से गुजर जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन प्यार भरे संदेशों के लिए, हमें भी आपके ये संदेश पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है। संदेशों में हमने एक बात कही थी अति की, तो कहते हैं ना कि इंतजार मोहब्बत का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा होता है। बहुत प्यारा लगता है वो वक्त जो किसी के इंतजार में, किसी के आने के इंतजार में गुजरता है और फिर उससे मिलने की चाह होती है। लेकिन ये कुछ मिनटों का या कुछ देर का होता है तो इंतजार अच्छा लगता है, अगर यही इंतजार बहुत घंटों का हो जाए, दिनों का हो जाए, बहुत ज्यादा वक्त का हो जाए तो अच्छा नहीं लगता, कहीं ना कहीं झुंझलाहट आ जाती है। तो क्यों ना इस बारे में बात की जाए, इंतजार क्या आपने भी किसी को करवाया है लंबा इंतजार, और क्या किसी ने आपका लंबा इंतजार किया है, उस बारे में कुछ अनुभव साझा कीजिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा आपके संदेश पढ़ने में। तो इंतजार करना या करवाना दोनों ही अजीब सी उलझन भी है और कष्टदायी भी है। तो आपने किसी को इंतजार करवाया हो या आपका किसी ने इंतजार किया हो बहुत लंबे समय तक, तो जरूर लिख भेजें, मैं इंतजार कर रही हूँ कमेंट बॉक्स पढ़ने का। तब तक दिल ये क्या करे,

बेचारा दिल क्या करे, खुशबू फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में। गुलजार ने इसे लिखा और आरडी बर्मन की तर्ज थी। जब तक ये गाना प्ले हो रहा था तब तक हम आपके कमेंट्स पढ़ रहे थे, आपके संदेश पढ़ रहे थे, यही दिल करे, और आपके संदेश हम तक पहुंच चुके हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमारे नागपुर में बारिश बरसने के बाद रुक गई थी, लेकिन आज बारिश का मौसम बना हुआ है, आकाश में काले काले बादलों का जमघट है, बहुत खूब। तो आप इस मौसम के साथ इन गीतों का आनंद उठाइए। हमारे एक और श्रोता लिखती हैं कि उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा है कि वो क्या लिखें, क्योंकि विविध भारती पर आते तो हैं लेकिन उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, बीपी और सरदर्द की शिकायत है, तो कुछ सूझ नहीं रहा है कि क्या लिखना है। लेकिन नमस्कार उन्होंने लिखा है, और हमारा भी आपको नमस्कार, और हम चाहते हैं कि आपकी तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए और प्यारे प्यारे गीतों का साथ बना रहे, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। एक और श्रोता लिखते हैं कि बचपन की याद लिखते हैं वो, कि हम खेलते थे और माँ के डांट खाने के बाद घर पर आते थे और फिर भगवान के सामने बैठ जाते थे, प्रार्थना करते थे, दादी की नज़र हम पर कड़ी हुआ करती थी, बहुत डर लगता था और भगवान से प्रार्थना करते थे कि हमें ज़्यादा डांट ना पड़े। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि इंतज़ार की जब बात कही गई है तो इंतज़ार केवल किसी व्यक्ति का नहीं होता है, ये वक्त के बदलने का होता है, कामयाबी का होता है या किसी अच्छे दिन के आने का भी होता है। ये जीवन को एक मकसद देता है कि आगे कुछ बेहतर होने वाला है। जी हाँ बिल्कुल, इंतज़ार किसी का भी हो सकता है, क्योंकि ज़िंदगी के हर एक पड़ाव में हमारी जो प्रायोरिटीज़ होती हैं वो बदलती हैं, तो कब किस समय किसका इंतज़ार है ये ज़रूर अलग अलग होता है। तो आप हमारे साथ अपने अनुभव साझा कर सकते हैं और कुछ बेहतरीन, कुछ दिलचस्प किस्से भी छोटे छोटे यानी कि कम शब्दों में हमें भेज सकते हैं, जिसे हम यहाँ पर पढ़कर सुना सकें। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि बेचारा दिल ज़रूर आएगा, ऐसा उन्हें लगा था कि ये गाना ज़रूर प्ले किया जाएगा। चलिए हम भी खुश हैं कि आपकी ये पसंद हमसे मेल खाती है। फिलहाल चलते हैं हम अगले गीत की तरफ।

0: बड़े दिल वाला ये था फिल्म का नाम। लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। आर डी बर्मन की तर्ज और मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा।
1: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
2: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
1: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
3: तिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: सुरीला सफर आप सुन रहे हैं मेरे यानी आरजे अनुराधा के साथ इस वक्त, और हम बात कर रहे हैं इंतजार की। आपके संदेश मुझ तक पहुंच चुके हैं इंतजार वाले। तो हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि जब कभी हम घूमने जाते हैं तो मैं और मेरा मित्र या तो मुझे काम आ जाता है तो वो इंतजार करता है, उसे बहुत काम आ जाता है तो मुझे बहुत लंबा इंतजार करना पड़ता है। थोड़ा चिढ़ जरूर जाता हूँ, पर हम दोनों एक दूसरे पर चिढ़ जाते हैं, पर फिर प्यार भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इंतजार से। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि करीबन 5 साल पहले उन्हें एक काम हुआ था, एक काम के सिलसिले में उन्हें कहीं जाना पड़ा था दफ्तर में, और किसी बड़े अधिकारी ने उन्हें 5 घंटे का इंतजार करवाया, लेकिन इंतजार किया लेकिन आखिरकार वो काम करके ही लौटे। जी हाँ, एक और श्रोता लिखते हैं कि जितना हंसा था उससे ज्यादा उदास हूँ, आंखों को इंतजार ने सावन बना दिया है। ये हमारे गीत सुनकर इन्होंने ये पंक्तियां लिखी है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। हमारे एक और श्रोता लिखती हैं कि जब कभी पहले बारिश होती थी जब वो छोटी थी, और बाबा काफी लेट आया करते थे, उस समय मोबाइल का जमाना नहीं था, फोन भी कुछ ही घर में हुआ करते थे, तो माँ काफी चिंतित हो जाती थी और भगवान के सामने बैठ जाती थी, प्रार्थना करती थी। बाबा आते थे काफी लेट भीग कर, और लेकिन उनके आने के बाद से टॉवल से पहुँच कर उन्हें और ये चाय वगैरह की सेवा में लग जाती थी, तो उस तरह की एक याद है उन्हें बारिश से रिलेटेड। जी हाँ, हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि इंतजार एक बहुत ही बोझिल प्रक्रिया है, जिंदगी के रंग बिरंगे लिबास में इंतजार का सुराग नहीं होना चाहिए, परंतु ऐसा होता कहाँ है, यहाँ तो हर पल दूसरे का इंतजार है, रातों को नींद का इंतजार है, सुबह को सुकून का, बारिश को मौसम का इंतजार है, मौसम को महीनों का, मुस्कुराहट को खुशी का इंतजार है, खुशी को सफलता का। जी हाँ, बहुत ही सुंदर संदेश इन्होंने लिखा है कि हर किसी को हर किसी का इंतजार है, हालांकि इंतजार किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी हमें इंतजार तो करना पड़ता है सही वक्त का। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं, किसी शादी का किस्सा लिखते हैं कि दुल्हन विदा हो ही नहीं रही थी और बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया, बहुत महीनों और सालों के बाद गौना हुआ और उसके बाद उनकी विदा की गई, और ये जो इंतज़ार है, लंबा इंतज़ार, उन्हें अभी तक याद है और ये रिवाज के चलते ऐसा हुआ था। जी हाँ, रीति रिवाज तो हमें फॉलो करने ही होते हैं। हमारे एक श्रोता है जो फिलीपीन से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, और वो लिखते हैं कि बहुत दिनों की बारिश के बाद सूर्य देवता निकले हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। जी हाँ, हम इंतजार की बात कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेशों का। और तो हम क्यों इंतजार करवाएं आपको अगले गीत का, सुनवाते हैं झट से अगला गीत।

देवता फिल्म से ये गीत अभी हमने आपको सुनवाया किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाजों में, गुलजार ने इसे लिखा आरडी बर्मन की तर्ज। आप सुन रहे हैं इस वक्त सुरीला सफर। सुरीला सफर में आपके संदेशों का इंतजार है। जैसे कि मैंने कहा कि इंतजार शब्द जब आता है तो ये मोहब्बत का बहुत ही खूबसूरत हिस्सा माना जाता है। बहुत ही प्यारा लगता है जब वो वक्त, वो लम्हे, किसी के आने की इंतजार हम करते हैं। लेकिन अगर ये लम्हे और ज्यादा लंबे हो जाते हैं, घंटों महीनों के हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं कष्टदायी होते हैं, तकलीफ देते हैं। तो क्या आपने भी कभी किसी को इंतजार करवाया है या किसी ने आपका इंतजार किया है? ये अनुभव हमारे साथ साझा कीजिए। आपके संदेश हम तक पहुंच चुके हैं और कुछ संदेश बहुत ही दिलचस्प है कि किसी को इंतजार करना करवाना कितना अलग है। जब इंतजार लंबा होता है तो यकीनन अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अति हर चीज की बुरी होती है। आपके मैसेजेस हम तक पहुंच चुके हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि वो सीनियर सिटीजन है, लेकिन अपने बचपन की याद की अगर बात करें तो समर वेकेशन यानी कि गर्मियों की छुट्टियों का इंतजार उन्हें हमेशा रहता था, और ये इंतजार बहुत ही सुख देने वाला होता था, बहुत ही आनंदित करने वाला होता था। जी हाँ, एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि कोलकाता में इस वक्त हैं वो, और वहाँ पर पंडाल की तैयारी हो चुकी है, लेकिन जब तक बारिश होती चली जाती है तो ये जो इंतजार है कि बारिश हो रही है कि नहीं हो रही, ये कहीं ना कहीं उलझन भरा है। तो इंतजार हर एक परिस्थिति में बहुत अलग होता है, कभी अच्छा होता है और कभी बुरा होता है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि हमें इंतजार रहता है कि आप हमारे गीत कब हमारे इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तो लीजिए, आपका जो कमेंट है, आपके जो संदेश है, इस प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं। चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में आनंद बख्शी ने इसे लिखा, एस वी वर्मा की तर्ज थी। ये गीत का संगीत दिया था एस डी बर्मन ने। चुपके चुपके फिल्म का नाम एक बार फिर से आपको बता दें। आपके संदेशों से भर चुका है कमेंट बॉक्स और मैं देख रही हूँ कि किसका संदेश पढ़ा जाए, क्योंकि एक साथ ही खूब सारे संदेश आ चुके हैं। यहाँ पर हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि उनका पसंदीदा गीत बज चुका है तो अब वो प्रोग्राम सुनेंगे या नहीं, लेकिन वो इस प्रोग्राम का इंतजार कर रहे थे। नहीं, हम चाहेंगे आप जरूर ये प्रोग्राम सुने और अंत तक सुने, बने रहे विविध भारती के संग। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज इस प्रोग्राम में इस इबारत ने तो सावन की झड़ी ही लगा दी है और खूबसूरत से गीत सुनने को मिल रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखते हैं कि हमारे यहाँ बारिश नहीं है, देवभूमि द्वारका जामनगर और पोरबंदर जैसे तहसील में बारिश नहीं है, इंतजार हो रहा है। बिल्कुल इंतजार कीजिए और इंतजार फल देता है, बिल्कुल फल देता है। और हम अब आपको ज्यादा इंतजार नहीं करवाएंगे, अगले गीत की तरफ चलेंगे। तो कुछ बताइए कौन सा गीत है, कमेंट में इंतजार रहेगा।

सुलक्षणा पंडित और बप्पी लहरी की आवाज में गीत चलते चलते फिल्म से अभी आपने सुना। अमित खन्ना ने इसे लिखा, बप्पी लहरी का संगीत। हमारे श्रोता लिखते हैं कि इस समय बनारस में धूप खिली हुई है और हम लोग आ ही गए हैं अपनी सुरीली धड़कन के साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। दूसरे श्रोता लिखते हैं कि प्यार में किसी का इंतजार करना इससे बड़ी परीक्षा और क्या हो सकती है। इस अनुभव से रूबरू हो चुका हूं मैं। 7 साल तक उसका इंतजार करना पड़ा, लेकिन मिलने के बाद जो सुकून का अनुभव हुआ उसको बयान नहीं किया जा सकता। एक और श्रोता लिखते हैं कि भाई हम तो कैब वाले का इंतजार करते हैं, बुक करो कैंसिल कर देता है, और बहुत जरूरी कहीं पहुंचना पड़ता है वो इंतजार जरूर करना पड़ता है, तो हार के बस पकड़ी है। इसका भी अलग ही मजा है ना। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि हमें सुरीला सफर का इंतजार रहता है, उसके बाद हेलो सहेली का भी इंतजार रहता है, तो विविध भारती के जितने प्रोग्राम है एक के बाद एक दूसरे का इंतजार हमें जरूर रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। इंतजार करना सबके वश की बात नहीं होती। कोयल पूरा साल सिर्फ बसंत ऋतु का इंतजार करती है ताकि अपने सुहाने सुरीले बोलों से वादियों में अपनी आवाज घोल सके। जी हाँ, एक और श्रोता ने लिखा है, जाना कहाँ है इस गीत के बारे में। बप्पी दा ने इस गाने में बिल्कुल अलग अंदाज में ऊंचे और रफ नोट्स का इस्तेमाल किया है जो कि बेहद आकर्षक है, और उनकी जो आवाज़ है गाने की बीट्स के साथ पूरा न्याय कर पाती है। साथ ही सुलक्षणा जी की आवाज़ भी अत्यंत मधुर लगती है, और इस गाने का जो आलाप है वो हिस्सा बहुत ही अलग ही जादू बिखेर देता है। जी हाँ, बिल्कुल हम भी इस चीज़ से बिल्कुल इत्तफाक रखते हैं, और अब बढ़ते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

0: लता मंगेशकर की आवाज में गीत स्वीकार किया मैंने फिल्म से, और बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यारे भरे संदेशों का। हम मिलेंगे जल्द ही, और सुरीला सफर से अनुराधा को दीजिए इजाजत।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए इस श्रृंखला की 42वीं कड़ी।

1896 के कलकत्ता अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार कांग्रेस के मंच पर वंदे मातरम का गायन किया था।

0: सन 1900 से आगे हर अधिवेशन की शुरुआत वंदे मातरम से ही करने की परंपरा बन गई। उस वर्ष दक्षिणा रंजन सेन ने वंदे मातरम की संगीत रचना की थी। आगे थोड़े ही समय में शास्त्रीय संगीत जगत के पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर और उनके शिष्य ओंकारनाथ ठाकुर, पंडित विनायक बुआ पटवर्धन और पंडित रामकृष्ण बुआ वजे जैसे गायक अपने गायन के माध्यम से राष्ट्र सेवा की भावना से अधिवेशन में अपनी वंदे मातरम की गायन सेवा देने लगे। इसी काल में लोकमान्य तिलक के निधन के बाद स्वतंत्रता आंदोलन की बागडोर गांधी जी के हाथों में आ गई। धीरे धीरे कांग्रेस की नीतियां बदलती गईं। कांग्रेस के हिंदू नेता धर्म निरपेक्षता का आग्रह कर रहे थे तो कुछ मुस्लिम नेता धर्म प्रेम को प्राथमिकता दे रहे थे। इसका परिणाम कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रसंग के रूप में सामने आया।
1: उन्नीस में आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में राष्ट्रीय सभा का अधिवेशन हुआ था। अली बंधुओं में से मौलाना मोहम्मद अली इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। पहले ही दिन मंच पर कांग्रेस के सभी नेता अध्यक्ष सहित उपस्थित थे। अधिवेशन शुरू होने की घोषणा हुई। दर्शकों में से एक ऋषि तुल्य व्यक्ति मंच पर आ रहे थे। दृष्टि कमजोर हो जाने के कारण उन्हें किसी का सहारा लेना पड़ रहा था। वो व्यक्ति थे भारतीय शास्त्रीय संगीत के भीष्माचार्य पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर। मंच पर बैठे सभी लोग उठकर खड़े हो गए। सीने तक लटकती हुई दाढ़ी, सिर पर ऋषियों की तरह बंधे हुए केश, ऐसे शुभ्र वस्त्रधारी पंडित जी प्रसन्न चित्त से वंदे मातरम गाना शुरू करने ही वाले थे। तभी अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अली ने अप्रत्याशित रूप से उन्हें रोकते हुए कहा, वंदे मातरम मत गाइए, मेरे धर्म में संगीत निषिद्ध माना गया है।
0: अचानक घटी इस घटना से मंच पर मौजूद कांग्रेस के प्रमुख नेता हक्के बक्के रह गए। अध्यक्ष का ऐसा कहना पंडित जी जैसे भारत के सर्वश्रेष्ठ गायक का अपमान तो था ही, साथ ही खुदीराम बोस से लेकर अनेक क्रांतिकारियों ने अपने बलिदान से सिद्ध किए हुए तथा बंगाल के विभाजन को रद्द करवाने वाले इस राष्ट्र मंत्र का भी अपमान था। सामने खड़ा जनसमुदाय स्तब्ध था। पंडित जी ने अपने ऋषि तुल्य स्वभाव के अनुसार जरा भी विचलित हुए बिना शांत फिर भी स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया,
2: माननीय अध्यक्ष महाराज, ये कांग्रेस का मंच है, किसी भी धार्मिक समुदाय का मंच नहीं है। मैं हमेशा की परंपरा के अनुसार वंदे मातरम गाऊंगा ही।
0: अध्यक्ष सभा स्थल छोड़कर चले गए। पंडित जी ने शांतिपूर्वक वंदे मातरम का गायन शुरू किया। गायन समाप्त होते ही पूरे जनसमुदाय के वंदे मातरम के नारों से परिसर गूंज उठा। उसके अगले अधिवेशन में पंडित जी वंदे मातरम गाने के लिए नहीं आए। वंदे मातरम का मुस्लिम समाज द्वारा पहला सार्वजनिक विरोध इसी प्रसंग में हुआ था।
1: एक अत्यंत महान कलाकार द्वारा अपनी अस्मिता को बनाए रखते हुए अपनी कला के माध्यम से लोगों को अपनी राष्ट्रभक्ति के दर्शन कराना, ये बिल्कुल नई बात थी। जिस काल में कलाकार राजनीति के ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ते थे या बाहरी दुनिया से अधिक अपनी कला की दुनिया में ही रमते थे, उस काल में पंडित पलुस्कर ने जो धैर्य दिखाया वो अतुलनीय कहा जाना चाहिए। 1902 में भारत में संगीत

की पहली ध्वनि मुद्रिका यानी ग्रामोफोन रिकॉर्ड प्रकाशित हुई। ध्वनि मुद्रण के इस पहले दौर में पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर की तरह ही भारत के अनेक श्रेष्ठ गायकों ने रिकॉर्ड के लिए गायन नहीं किया था। इसके कई कारण थे, परंतु उन कारणों से उनके समय में रिकॉर्डिंग तकनीक का आविष्कार हो जाने पर भी उन्होंने रिकॉर्ड के लिए गायन न करने के कारण आज के शोधार्थियों के लिए, अभ्यार्थियों के लिए, अध्येताओं के लिए और संगीत प्रेमियों के लिए उनके गायन के बारे में लिखे गए संगीत संबंधी लेखों से, स्मृतियों से ही उनकी गायकी का उन्हें दर्शन मिलता है। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर द्वारा किया गया वंदे मातरम का राग काफी में नोटेशन आगे उनके संगीत अध्यापन की विरासत को समर्थ रूप से आगे बढ़ाने वाले उनके शिष्य पंडित विनायक बुआ पटवर्धन ने प्रकाशित किया। पंडित विनायक बुआ की आवाज में यह दुर्लभ ध्वनि मुद्रण घोष महर्षि बापूराव दाते ने स्वयं किया था।

हाल के समय में यही संगीत रचना विदुषी वीणा सहस्त्रबुद्धे द्वारा एक संगीत समारोह में प्रस्तुत की गई। उस समारोह का तथा आज की पीढ़ी के गायक पंडित शौनक अभिषेकी और साथियों के स्वर में ध्वनि मुद्रण प्रकाशित हुआ है। पहले सुनते हैं विदुषी वीणा सहस्त्रबुद्धे के स्वर में वंदे मातरम की झलक।

0: पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने जब वंदे मातरम को स्वरबद्ध किया था, उन्हीं दिनों में अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन को एक नई दिशा मिल रही थी।
1: जुलाई 1937 में चुनाव हुए, प्रांतीय मंत्रिमंडलों की स्थापना हुई, 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की प्रांतीय सरकारें आईं। उनमें से मद्रास विधानसभा के शपथ ग्रहण कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम के गायन से ही हुई थी। मद्रास विधानसभा के अध्यक्ष सांबुमूर्ति ने दैनिक सभा कार्य की शुरुआत वंदे मातरम से ही हो, ऐसा निर्णय अंग्रेजों के विरोध को दरकिनार करके लिया था।
0: इन सभी मंत्रिमंडलों की मुख्य बागडोर अंग्रेजों ने अपने हाथ में रखी हुई थी, फिर भी थोड़े बहुत अधिकार कांग्रेस को भी थे ही। मुस्लिम लीग के कुछ उम्मीदवार चुनकर आए, परंतु उन्हें बहुत कम सीटें मिली, इसलिए

0: बैरिस्टर जिन्ना ने कांग्रेस पर आलोचना शुरू कर दी और उसमें वंदे मातरम को भी मुख्य निशाना बनाया।
1: आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भ्रम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।
2: आप सुन रहे थे वंदे मातरम एक जय घोष, इस लघु रूपक श्रृंखला की 42वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, अनुवाद संकलन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रीकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रीकर और मंदाकिनी जोशी, तकनीकी सहयोग किरण बंग, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।
3: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
4: मिलो जो तुम्हें बताए।
3: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
5: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
3: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल के मुख्यालय में 189 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। भारत और ब्राजील ने पुणे में ब्रिक्स आईसीटी बैठक से अलग डिजिटल नवाचार और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए 3 वर्ष की वकालत अवधि को घटाकर 1 वर्ष किया। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर के साथ आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। सिंगापुर के व्यापार और उद्योग मंत्री के साथ बैठक की। अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। ईरान ने कहा इसका उद्देश्य अमेरिका की घरेलू आर्थिक समस्याओं से ध्यान हटाना है। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी महिला डबल्स सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी मुख्यालय में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। जवानों को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि इससे पहले एसएसबी के कार्यक्रमों में पूर्व मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्होंने इनमें शामिल होना उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा कि शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद सीमा सुरक्षा के लिए पूरा सहयोग दिया जा रहा है।
1: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि बीएसए

0: और एसएसबी के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता है। और घुसपैठ रोकने की पूर्व शर्त है कि सीमा को पूरा बना, सीमा पर बाड़ को पूरा लगा दिया जाए।
1: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल से जुड़े मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि घुसपैठ रोकने के लिए ममता बनर्जी से बार बार अनुरोध किए जाने के बावजूद जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई। उन्होंने बंगाल के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर करीब 189 करोड़ रुपए की लागत से एसएसपी के कई शिविरों के निर्माण कार्यों की आधारशिला रखी गई। गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से सीमा सुरक्षा में तैनात जवानों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। भारत और ब्राजील ने दूरसंचार तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दूरसंचार विभाग ने बताया है कि यह समझौता ब्रिक्स आईसीटी बैठक से अलग हुआ। दूरसंचार विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह समझौता डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देगा, डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएगा। एक रिपोर्ट।
2: पुणे में आयोजित 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक से इतर केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और ब्राजील के संचार मंत्री फेडरिको डी सिक्वेरा फिल्हो के बीच हुआ। ये समझौता ज्ञापन दूरसंचार, डिजिटल बुनियादी ढांचे और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में व्यवस्थित सहयोग के लिए एक रूपरेखा भी प्रदान करता है। इस साझेदारी का उद्देश्य दोनों देशों में समावेशी, सुरक्षित और मजबूत डिजिटल व्यवस्था को बढ़ावा देना है। भारत की वर्ष 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के संदर्भ में ये समझौता बेहद महत्वपूर्ण है। भारत ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार मानकों के क्षेत्र में अधिक सहयोग की वकालत करता रहा है। भारत ब्राजील समझौता दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी का भी एक हिस्सा है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक जारी है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार और लचीली डिजिटल अवसंरचना में सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श कर रहे हैं। बैठक का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन। उद्घाटन भाषण में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिजिटल इंडिया की प्रतिबद्धता से प्रेरित लचीले, विश्वसनीय, नवोन्मेषी, सशक्त और समावेशी भविष्य के लिए भारत के दृष्टिकोण की रूपरेखा प्रस्तुत की।
3: पिछले एक दशक में ब्रिक्स उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग के एक प्रमुख मंच के रूप में उभरा है, जो लगभग आधी मानवता और प्रतिभा तथा नवाचार के अपार भंडार का प्रतिनिधित्व करता है। अब हमारा ध्यान संस्थाओं के निर्माण से आगे बढ़कर सहयोगात्मक पहलों को लागू करने की ओर विकसित होना चाहिए।
4: इम्प्लीमेंटिंग कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव्स।
1: ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक जयपुर में हो रही है। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों का स्वागत किया। श्री शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राजस्थान भारत की सदियों पुरानी विरासत, जीवंत संस्कृति और अद्वितीय आतिथ्य सत्कार का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अतिथि अपने प्रवास के दौरान राज्य की परंपराओं की गर्मजोशी और समृद्ध का अनुभव करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाएं देने के संबंध में विधि स्नातकों के लिए अनिवार्य 3 वर्ष की वकालत की अवधि घटाकर 1 वर्ष कर दी है। न्यायालय ने इस बारे में पिछले वर्ष के अपने ही फैसले में संशोधन किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एजी मसे और के विनोद चंद्रन की पीठ ने पुनः समीक्षा को खारिज करते हुए 2-1 से यह फैसला दिया। एक रिपोर्ट।
5: पीठ ने कहा कि 25 मई 2025 से 31 मार्च 2027 के बीच अधिसूचित न्यायिक सेवा परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवार पूर्व अनुभव के बिना भी पात्र होंगे। हालांकि इन परीक्षाओं में चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति शुरू में प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारियों के रूप में होगी।

0: उन्हें न्यायिक अकादमी में एक वर्ष का प्रशिक्षण लेना होगा और उसके बाद एक वर्ष के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण लेना होगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 20 मई को नए विधि स्नातकों को प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षा देने से रोक दिया था और इसके लिए कम से कम 3 वर्ष की कानूनी वकालत अनिवार्य की थी। समाचार कक्ष से दीपेंद्र कुमार।
1: झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा जेएसएससी सीजीएल और सीडीपीओ परीक्षाओं की नियुक्तियां रद्द करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है।
2: झारखंड हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार द्वारा जेएसएससी सीजीएल और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी यानी सीडीपीओ परीक्षाओं की नियुक्तियां रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने इस संबंध में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और जेपीएससी को आगामी 7 सितम्बर तक विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। प्रार्थियों की ओर से अदालत को बताया गया कि विज्ञापन और नियुक्तियों को अचानक रद्द करने का सरकारी फैसला नियमों के अनुकूल नहीं है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर तय की है। इससे पहले कल जेपीएससी नियुक्तियों को रद्द करने के सरकारी आदेश पर हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई थी। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर और पूरे एशिया के साथ आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने तथा कारोबारियों के बीच सहयोग बढ़ाने की भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया है। सिंगापुर में भारत सिंगापुर कारोबारी मंच को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने भारत की मजबूत आर्थिक विकास यात्रा, निवेश के अवसरों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कारोबार सुगम बनाने के लिए सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया। श्री गोयल ने सिंगापुर के विदेश मामलों और व्यापार तथा उद्योग राज्य मंत्री गन सियो ह्वांग तथा अन्य गणमान्य लोगों से भी मुलाकात की। भारतीय रेलवे जम्मू और श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत रेलगाड़ी शुरू करेगा। नई सेवा से लोगों को यात्रा का एक और विकल्प मिलेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस के उधमपुर स्टेशन पर रुकने की सुविधा का स्थानीय लोगों ने स्वागत किया है। इसे क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। नई वंदे भारत उन यात्रियों के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है जिन्हें नौकरी, कारोबार, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी कामों के सिलसिले में जम्मू श्रीनगर आना जाना पड़ता है। अब उन्हें इस सेवा का लाभ लेने के लिए पहले जम्मू या किसी अन्य स्टेशन तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उधमपुर से ही जम्मू से श्रीनगर तक की यात्रा की जा सकेगी। रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ईरान को विश्व में इतिहास के सबसे बड़े समन्वित आर्थिक अलगाव का सामना करना पड़ेगा। एक साक्षात्कार में श्री बेसेंट ने ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों और कंपनियों पर द्वितीय प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान के आर्थिक उपायों को ध्वस्त करने की धमकी दी थी। इसके बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इन आर्थिक धमकियों को खारिज कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में अराक्ची ने कहा कि ये धमकी अमरीकी जनता का अपनी घरेलू वित्तीय समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए दी जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान से जुड़े महत्वपूर्ण जलमार्गों को मुख्य रूप से नियंत्रित कर रहा है और जल्द ही उन पर पूरा कब्जा कर लेगा। एक रिपोर्ट।
4: एक निजी रेडियो चैनल के साथ साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अमरीकी सैन्य कार्रवाई का समर्थन किया और कहा कि अमरीका के लोगों को इस संघर्ष के कारण पेट्रोल और ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने नहीं दिए जाएंगे और दावा किया कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन बनाने की क्षमता काफी हद तक कम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि ईरान में बढ़ती महंगाई, कमजोर मुद्रा और सैन्य कर्मियों को वेतन नहीं मिलना उस पर बढ़ते दबाव के संकेत हैं। श्री ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार होते तो वह इसराइल और पश्चिम एशिया के अन्य देशों पर हमले कर सकता था। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान की मिसाइलों ने सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन को निशाना बनाया है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: अमेरिका ने क्यूबा के निर्माण, खनन और धातु क्षेत्रों से जुड़ी 9 सरकारी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। साथ ही क्यूबा की सरकारी कंपनियों के साथ कारोबार करने वाले अमरीकी नागरिकों पर भी पाबंदियां कड़ी कर दी गई हैं। क्यूबा में फिदेल कास्ट्रो की 100वीं जयंती से जुड़े समारोहों से वापस आने वाले नागरिकों को अमरीका

0: म्यामी हवाई अड्डे पर कुछ देर के लिए हिरासत में लिया गया। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है और कई नदियां उफान पर हैं।
1: मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में सक्रिय मौसम प्रणाली के कारण कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है और बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग ने आज निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर समेत 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में अगले 24 घंटे के दौरान 4 से 8 इंच तक बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 से 3 दिन में बारिश का असर धीरे धीरे मध्य और पश्चिमी मध्य प्रदेश की ओर बढ़ने की संभावना है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: भारत के त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। भारतीय जोड़ी ने असाधारण दृढ़ता और शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए पहले सेट में पिछड़ने के बाद वापसी की और चौथी वरीयता प्राप्त चीन की जिया यीफेन और झांगशु शियान को हराया। इस जीत के साथ त्रिशा और गायत्री ने प्रतिष्ठित चैंपियनशिप में भारत के लिए एक पदक सुनिश्चित कर लिया है। ये 15 वर्ष में विश्व चैंपियनशिप में महिला डबल्स में भारत का पहला पदक होगा। भारतीय महिला टीम आज अम्स्टरडेम में FIH हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में मेजबान नीदरलैंड से खेलेगी। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 77,544 जबकि निफ्टी 24,236 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल के मुख्यालय में 189 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। भारत और ब्राजील ने पुणे में ब्रिक्स ICT बैठक से अलग डिजिटल नवाचार और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए 3 वर्ष की वकालत अवधि को घटाकर 1 वर्ष किया। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर के साथ आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। सिंगापुर के व्यापार और उद्योग मंत्री के साथ बैठक की। अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। ईरान ने कहा इसका उद्देश्य अमेरिका की घरेलू आर्थिक समस्याओं से ध्यान हटाना है। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी महिला डबल्स सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये है विविध भारती, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: लता मंगेशकर की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे जंगली फिल्म से, हसरत जयपुरी ने से लिखा।
1: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
2: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
1: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
3: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
1: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

चलती का नाम गाड़ी, ये था फिल्म का नाम। किशोर कुमार, आशा भोसले की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। एस डी बर्मन की तर्ज और मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा।

0: लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में गीत मधुमति फिल्म से अभी आपने सुनी। सलिल चौधरी का संगीत था, शैलेंद्र ने इसे लिखा।
1: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
2: मिलो जो तुम्हें बताए।
1: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
3: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
1: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत बंदिनी फिल्म से अभी आपने सुना, गुलजार ने इसे लिखा एसडी बर्मन की तर्ज। इस गीत के साथ ही आज का ये प्रोग्राम सदाबहार नगमे संपन्न होता है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: कार्यक्रम हेलो सहेली में आप सभी सखियों का स्वागत है। सखियों, सावन के महीने में वो कौन सी हमारी सहेली होगी जिसे अपने मायके की या पीहर की याद नहीं आती? दोस्तों के साथ वो यूं बेहिसाब घूमना, बारिश में भीगना, फिर भुट्टे खाना और कई कई आयोजनों में नृत्य करना, मेले में जाना और बेहिसाब हंसी मजाक शरारतें। तो इन्हीं यादों को याद करते हुए और रक्षाबंधन पर भाई का इंतजार करते हुए या मायके जाते हुए हम सब सखियां जुड़ चुकी हैं एक साथ, कहां विविध भारती के स्टूडियो में, और मैं मौजूद हूं आपकी दोस्त सहेली दीपा महेश्वरी। आज आपकी इस सखी से बातें होंगी। तो पहले कॉल की आशा लिए हम बैठे हैं और ये हुआ हमारा इंतजार खत्म, बज उठी फोन की घंटी। तो देखते हैं किस सखी का है ये पहला कॉल। हेलो सहेली।
1: नमस्ते मैडम। नमस्ते।
0: नमस्ते जी, बताइए किससे बात हो रही है हमारी और कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: नागपुर से दीपा बोल रहे हैं हम।
0: नागपुर से दीपा, वाह क्या बात है दीपा जी। क्या चल रहा है इन दिनों?
1: हाँ, रक्षाबंधन आ रहा ना मैडम।
0: जी जी, तो हम ये जानना चाहते हैं दीपा जी आपसे कि रक्षाबंधन पे इस वर्ष आप क्या करने वाली हैं? आप जाने वाली हैं मायके या भाई आने वाले हैं, क्या होने वाला है?
1: भाई कोई बुलाया इस साल।
0: अच्छा, क्या बात है। तो उन सबकी तैयारियां होंगी घर में?
1: हाँ, ननद भी रहती है इधर ही, वो भी आएगी। अच्छा, और भाई भी आएगा।
0: अच्छा, तो ननद भी आपकी यहीं रहती है नागपुर में?
1: हाँ,
0: और आपके भाई
1: भी रहती है। भैया भी आएंगे
0: जी। तो ये बताइए कि रक्षाबंधन त्योहार से आपको क्या याद आता है? पुरानी कोई बात आपकी बचपन की, क्या चीज जो आपके चेहरे पे हंसी ले आती है?
1: पुरानी यादें तो बहुत है मैडम। अब जैसे शादी हो गई सभी बहनों की, तो हम मैं छोटी थी, सबसे अकेली सबको भाइयों को राखी बांधती। पांच भाई थे।
0: अच्छा,
1: भाई के लड़के फिर भतीजे, सबको राखी मैं अकेली बांधती थी। फिर बहुत याद आती है रक्षाबंधन पे मैडम।
0: ये बात तो सही है। तो आप अकेली ही बहन है पांच भाइयों के बीच?
1: नहीं नहीं नहीं नहीं, चार बहन है सबकी। सब बड़ी बड़ी शादी हो गई है सबकी, सिर्फ छोटी थी मैं सबसे।
0: अच्छा, और उसके अलावा दीपा जी क्या करती हैं आप?
1: हाउस वाइफ है मैडम। हम
0: हाउस वाइफ है,
1: घर में ही रहते हैं। हाँ, बच्चे है, बहू है, लड़के, दुकान है अपनी मैडम।
0: अच्छा जी, किस चीज की?
1: पान शॉप की है मैडम।
0: अच्छा अच्छा, तो इसमें भी सारा दिन इसकी भी बड़ी तैयारी करनी होती होगी घर में, है ना?
1: दुकान में ही करते हैं सब, हम घर में नहीं करते कुछ।
0: अच्छा, तो आप घर का सारा काम संभालती हैं। आज ये बताइए कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: तिरंगा पिक्चर का मैडम सुना लीजिए, इसे समझो नरेशम का तार भैया।
0: तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी आज?
1: वैशाली भाटी से।
0: वैशाली भाटी, तो वैशाली जी बताइए, कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: हम इंदौर से।
0: इंदौर से, अरे वाह। अपने बारे में कुछ बताइए, क्या करती हैं, कैसा चलता है आपका दिन? और इन दिनों तो त्योहारों का मौसम है ना, इंदौर में तो त्योहार सारे खूब अच्छे से मनाए जाते हैं।
1: हाँ, बहुत बढ़िया है।
0: जी, अपने बारे में कुछ बताइए।
1: हमारा तो ऐसा कहीं नहीं, अभी हमारी नई नई शादी हुई है।
0: अच्छा, अरे वाह, तो ये तो बहुत सारी बातें बताने की हो गई हैं। तो कैसा लग रहा है नए परिवार में आके, इस नए परिवेश में आके?
1: बढ़िया लग रहा है।
0: अच्छा लग रहा है। तो इंदौर से पहले आपका मायका कहाँ था फिर, कहाँ से शादी हुई?
1: अपन महाराष्ट्र से, जलगांव।
0: जलगांव से आप इंदौर आ गई हैं, तो ये इंदौर नया शहर है आपके लिए, कैसा लग रहा है यहाँ पर? अब कुछ रोड्स और गलियों के बारे में कुछ अता पता चला होगा, है ना?
1: हाँ, बहुत सारा बढ़िया लगता है।
0: और ससुराल में कौन कौन है आपके साथ यहाँ पर?
1: मेरे साथ मेरे सास ससुर और मेरे पति और मैं।
0: अच्छा, पहली राखी आई है शादी के बाद या ये दूसरी वाली आई आपकी?
1: पहली आएगी, पहली आएगी।
0: पहली आएगी। तो रक्षाबंधन के बारे में बताइए, क्या आप इस बार जाने वाली हैं जलगांव या यहीं रहेंगी, कैसा क्या होने वाला है?
1: नहीं, अपने यहाँ कान्हा जी आने वाले हैं ना।
0: अच्छा,
1: हाँ, इसलिए अभी जाना बंद है।
0: तो जाना बंद है तो।
1: अभी छोटा सा बेबी आएगा ना।
0: ओ, अरे वाह, बहुत बहुत बधाई आपको। कौन सा गीत सुनना चाहेंगी आप?
1: एक हमारे कान्हा जी बाबू आ रहा है, उसके लिए कोई गाना सुना दो। अच्छा,
0: तो चलिए सुनते हैं।
1: मेरा

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: माया जाधव।
0: माया जी कहाँ से बात कर रही हैं?
1: नासिक।
0: नासिक से बोल रहे हैं आप?
1: मैं बचपन से कार्यक्रम सुनती हूँ, विविध भारती से मैं बहुत ही बड़े फैन हूँ।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया, और हम भी आप सभी सहेलियों के फैन हैं, क्योंकि आपकी कॉल का हम लोग हमेशा हर मंगलवार को इंतजार करते हैं, है ना? तो कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आप बताइए?
1: पारस मनी फिल्म का गाना सुनना चाहती हूँ, आस्था हो रानी चेहरा।
0: तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर आ गए हैं कॉल का इंतजार करते हुए। कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: नीता महाजन, भवानी सागर, देवास से।
0: जी, देवास से बात कर रही हैं आप, भवानी सागर से। तो अपने बारे में कुछ बताइए नीता जी। राखी का त्योहार आने वाला है, रक्षाबंधन का, तो क्या क्या तैयारियां चल रही हैं घर पर?
1: रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है तो थोड़ी बहुत घर में साफ सफाई करेंगे, मिठाई वगैरह बनाएंगे।
0: अरे वाह, तो क्या मिठाई बनाने वाली हैं आप?
1: चक्की बना सकती हूँ मैं, बेसन की।
0: हाँ, वो तो बहुत प्रसिद्ध है उस तरफ की और बड़ी स्वादिष्ट ये मिठाई होती है ना?
1: हाँ।
0: जी, तो घर में और कौन कौन है अपने बारे में भी कुछ बताइए।
1: तो मेरी 3 बेटियां हैं, तो 2 की शादी कर चुकी हूँ मैं और 1 पढ़ाई कर रही है अभी।
0: जी, तो 2 बेटियों की शादी हो गई है, तो वो आने वाली है मायके?
1: हाँ, मायके आएगी ना, दोनों बेटियां आएगी।
0: जी, और छोटी बेटी किस चीज की पढ़ाई कर रही हैं?
1: वो बीकॉम कर रही है।
0: अच्छा, तो बहुत बढ़िया बात है। तो अब तो आपको इंतजार होगा अपनी दोनों बेटियों के आने का?
1: हाँ, वही इंतजार चल रहा है ना।
0: तो मन खुश रहता होगा इन दिनों?
1: हाँ, मन खुश रहता है ना।
0: और आज आप ये बताइए कि कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: नदिया के पार का, कौन दिशा में चला रहे।
0: तो चलिए सुनते हैं नदिया के पार फिल्म का ये गीत, कौन दिशा में लेके चला रहे बटुए।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, मैं रेखा वर्मा बोल रही हूँ। मैं उज्जैन से।
0: उज्जैन से रेखा वर्मा, क्या चल रहा है इन दिनों? रक्षाबंधन का त्योहार बिल्कुल नजदीक आने वाला है, घर में बहुत सारी
1: बिल्कुल,
0: तैयारियां होती हैं।
1: रक्षाबंधन की तैयारी चल रही है मैम। आगे हम राखी वगैरह लेके आ गए हैं मार्केट से, क्योंकि फिर उज्जैन में काफी भीड़ है यहाँ पर।
0: इस बार तो कई तरह तरह की राखियां हैं बाजार में,
1: हाँ,
0: हमने भी
1: बहुत सुंदर
0: देखी।
1: सुंदर राखियां हैं मैम, और हम फर्स्ट में ही जाके ले आए ताकि और अच्छी मिल जाए हमको।
0: अच्छा, तो आप थोड़ा पहले ही ले आई ताकि बाद में ना
1: जी,
0: भीड़ मिले और
1: खूब
0: राखियों का चुनाव भी खूब अच्छे से आप कर
1: अच्छे
0: सके।
1: से कर सकते हैं अपन।
0: हाँ, ये बात तो सही है। जीवन में क्या चल रहा है, क्या करती हैं आप, अपने बारे में बताइए।
1: मैडम, मैं हाउसवाइफ हूँ
0: अच्छा,
1: बस, मतलब बढ़िया है, ऐसा कुछ नहीं। और पार्लर चलाती हूँ, घर में ही चलाती हूँ बस।
0: बहुत सुंदर बात है ये तो। और रक्षाबंधन से आपके कोई यादें जुड़ी हों, बचपन की कोई बात, या इस दफा आप क्या करने वाली हैं, जाने वाली हैं मायके या भाई आएंगे, क्या है
1: नहीं
0: वो
1: नहीं
0: बताइए।
1: मैम, जाऊंगी मैं। क्या है कि एक ही बहन हूँ 6 भाइयों के बीच में,
0: अरे वाह, तो घर में तो
1: तो
0: सब
1: इसलिए।
0: आपको बहुत भाग्यशाली कहते होंगे, है ना?
1: जी मैम,
0: ऐसा हो जाता है जहाँ पे भाई हो अधिक और बहन एक हो, उनका महत्व बहुत बढ़ जाता है।
1: जी मैम,
0: तो कहाँ है आपका मायका?
1: मेरा मायका मैम ब्यावरा बचोर
0: अच्छा,
1: राजगढ़ जिले में है।
0: तो आप मिठाई मेवे सब कुछ लेकर जाएंगी?
1: बिल्कुल मैम,
0: जी।
1: बहुत इंतजार रहता है, भतीजी उनको भी, भतीजे उनको भी, मेरा वो आने वाली है मैम। कितनी भी उम्र हो जाए, मायके में जाने के बाद व्यक्ति वापस वैसा के वैसा, ऐसा लगता है जैसे अपन बचपन में आ गए वापस।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: मेरी मम्मी नहीं है, भाभियां हैं, लेकिन मेरी भाभियां ऐसी हैं मैम कि अभी तक राखी करने वो नहीं जाती है, क्योंकि मैं जाती हूँ ना यहाँ से।
0: यानी कि भाभी ने माँ का रूप ले
1: जी
0: लिया है
1: मैम,
0: ना?
1: वो
0: तो
1: इंतजार करती है दीदी आ जाएंगी, उसके बाद में फिर बाद में चले जाएंगे, क्योंकि कोई की एक बहन है, कोई दो बहने हैं, 3 बहने हैं, तो वो इंतजार करती है कि हमारी तो एक ही है।
0: ये बात तो कितनी अच्छी बात है ना, घर में की सारी भाभियां आपका इंतजार करती
1: मेरा
0: हैं
1: इंतजार करती है मैम, एक भी नहीं जाती है।
0: कि कब रेखा दीदी आएंगी और इस घर में फिर से वही ऊर्जा और हंसी मजाक और एक प्रसन्नता का माहौल बन जाएगा, है ना?
1: तो सबसे बड़ी बात तो ये है मैम कि आज वो माँ की जगह मतलब बैठी है मेरे लिए, इंतजार
0: जी,
1: करती है, तो मुझे उसकी खुशी और बहुत ज्यादा होती है।
0: तो हम तो चाहते हैं कि ये प्रेम आपका हमेशा इसी तरह बना रहे और हर घर में ये भाभी और नंद का प्रेम इसी तरह बने जैसा रेखा वर्मा के घर में। तो रेखा जी,
1: जी,
0: बताइए आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आप?
1: मजबूर पिक्चर का सुनना है। देख सकता हूँ मैं तुझे, कुछ भी होते हुए नहीं देख सकता तुझे रोते हुए।
0: तो चलिए आपकी पसंद का ये गीत सुनते हैं।

0: अंतराल के बाद हम फिर इंतजार कर रहे हैं कॉल्स का। कार्यक्रम चल रहा है। हेलो सहेली। हेलो सहेली।
1: जी दीदी नमस्ते।
0: नमस्ते, किससे बात हो रही है हमारी?
1: जी दीदी, मैं रंजीता जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: क्या बात है, बेमेतरा छत्तीसगढ़ से रंजीता जी बोल रहे हैं। कैसी हैं आप?
1: जी दीदी मैं ठीक हूँ।
0: और क्या चल रहा है इन दिनों? रक्षाबंधन बस बिल्कुल नजदीक ही आने वाला है ना?
1: मार्केट में शोर है, रक्षाबंधन है, राखी का त्योहार आने वाला है। सभी लोग मतलब अपने भाई को राखी बहन पहनाने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं और त्योहार का मतलब बड़े ही मतलब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
0: बिल्कुल सही कहा, अभी तो बाजारों में हर दुकानों पे रक्षाबंधन की राखियां ही आपको दिखाई देंगी, है ना?
1: जी।
0: तो आप खरीद लाएं या आप जाने वाली हैं अपने मायके या भाई आने वाले हैं, क्या होने वाला है इस बार?
1: नहीं दीदी, मैं जाती हूँ अपने मायके अपने भाई को राखी पहनाने के लिए।
0: अच्छा, तो वो तो इंतजार कर रहे होंगे आपका कि कब आएंगी।
1: जी जी जी जी।
0: और कई बार ऐसा भी हो जाता ना कि आप कहेंगी कि नहीं समय कम है, मैं सिर्फ 2 दिन के लिए या 1 दिन के लिए आऊंगी, और फिर मायके से सब लोग जिद करते नहीं तुम अब के आओ तो 3-4 दिन ज्यादा रुकना।
1: जी जी ऐसे होता ही है, लेकिन क्या है हम सभी लोग एक रिश्ते की डोर से बंधे हैं, तो जैसे कि मैं अपने भाई को राखी पहनाने जाती हूँ वैसी मेरी भी भाभी है, वो भी अपने भाई को राखी पहनाने के लिए जाते हैं, तो सभी का सोच के जाना पड़ता है दीदी। तो मैं हमेशा 1 दिन पहले राखी पहनाने जाती हूँ, फिर उसी दिन हम लोग रक्षाबंधन के दिन राखी पहना के हम लोग वापस होते हैं। तो मेरे मिस्टर हैं उनको भी उनकी बहनें राखी पहनाने आती है और मेरी भाभी भी अपने भाई को राखी पहनाने जाती है।
0: तो ये तो कितनी अच्छी बात है ना, आप हर तरह का देखिए रिश्तों में कितना सुंदर संतुलन बना के रखती हैं कि
1: जी।
0: आपके घर में भी हो जाए, आपके मायके में भी आप अपने भाइयों को राखी बांध देती हैं, और
1: जी।
0: फिर यहाँ पर भी ध्यान रखती हैं कि आपके पति
1: जी।
0: को उनकी भी तो बहनें
1: जी।
0: हैं ना, वो लोग आए राखी
1: जी।
0: बांधने के लिए।
1: जी।
0: तो बताइए रंजीता जी, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: फिल्म का नाम है जीवन मृत्यु और गाने की बोल है झिलमिल सितारों का आंगन होगा।
0: तो रंजीता जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी? अपना नाम बताइए।
1: जी, आपकी बात इशिका वर्मा से हो रही है।
0: कहाँ से बात कर रही हैं इशिका आप?
1: जी, उज्जैन से।
0: क्या बात है, ये बताइए, आपकी आवाज से ऐसा लग रहा है छोटी सी नन्ही सी गुड़िया हैं आप।
1: यस मैम, मेरी एज ज्यादा नहीं है, 24 ही है। हाँ
0: अच्छा, क्या बात है। तो
1: जी
0: ये हमें जानकर बहुत अच्छा लगा कि जो युवा वर्ग है हमारे देश का, विविध भारती सुनती है
1: यस
0: ना।
1: मैम। मैम यहाँ पर सभी सुनते हैं, मतलब हमारे जो पापा मेरे फादर इन लोग वो मतलब ऑलमोस्ट ही रेडियो में मतलब कॉल्स करना और हम सबको भी रेडियो सुनाना उन्हीं ने सिखाया है।
0: क्या बात है। तो आपने बोला फादर इन लॉ, तो आप विवाहित हैं?
1: यस मैम, इसी ईयर मेरी शादी हुई है।
0: इसी साल?
1: यस मैम,
0: अच्छा, अरे वाह,
1: फैमिली अच्छी है मैम, बिल्कुल।
0: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। तो
1: जी
0: आपकी इस नए विवाहित जीवन के लिए हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं इशिका। और
1: थैंक
0: बताइए,
1: यू मैम।
0: आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैम आज मैं अंधा कानून का मेरी बहना दीवानी है सॉन्ग।
0: जी, तो चलिए सुनते हैं आपके लिए, आपकी ही पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: जी मैम नमस्ते। पहले तो आपको
0: नमस्ते।
1: हाँ जी, मैं प्रमिला महेश बोल रही हूँ मैम, गुजरात के साबरमती से।
0: साबरमती से प्रमिला महेश
1: जी
0: जी, तो बताइए प्रमिला जी, कैसी हैं आप?
1: बिल्कुल अच्छे हैं मैम, आप सुनाइए।
0: जी यहाँ पर भी सब लोग अच्छे हैं और स्वस्थ
1: हाँ
0: हैं
1: जी,
0: जी। तो अपने बारे में कुछ बताइए।
1: यही है मैम, बस घर के ही काम करते हैं, घर में ही रहते हैं, और फ्री टाइम में तोरण वगैरह जो दरवाजों पे लगे होते हैं वो बनाते हैं मैम।
0: जी ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गुजरात
1: हाँ
0: की ये
1: जी
0: कला बहुत प्रसिद्ध है और बड़ा बारीक
1: जी
0: काम है।
1: हाँ जी मैम जी मैम, ये घर के पास ही एक कारखाना है, तो वो गृह उद्योग वगैरह महिलाओं के लिए, तो वो अपने को घर पे लाने के लिए देते हैं वो ऐसा काम।
0: अच्छा, तो
1: हाँ
0: मतलब
1: जी
0: आप अपने समय का पूरा सदुपयोग करती हैं।
1: जी मैम बिल्कुल, मतलब खाना वाना खा के जब हम फ्री होते हैं 3 बजे, तो सखी सहेली जैसे ही चालू होता है हमारा काम भी चालू हो जाता है
0: क्या बात है, तो सखी
1: जी।
0: सहेली और आपका तोरण बनाने का साथ,
1: जी
0: ये
1: मैम
0: हमेशा
1: बिल्कुल
0: साथ रहे।
1: बिल्कुल, एक दिन भी मिस नहीं होता है आपका सखी सहेली है, हेलो फरमाई से।
0: प्रमिला जी
1: जी
0: तो यही तो आप जैसे जो श्रोतागण हैं, वही ये
1: हाँ जी
0: सुंदर हमारे सितारे हैं विविध भारती के, है ना? और ये बताइए, रक्षाबंधन आने वाला है,
1: हाँ जी मैम,
0: तो क्या तैयारियां चल रही हैं उसकी?
1: तो तैयारी तो ये है मैम कि मायका तो दूर है, अभी हमारा इंदौर में है, तो देखेंगे अभी जाना होगा तो जाएंगे, वैसे ऐसे कुछ सोचा नहीं है। दो भाई थे मेरे, दोनों ऑफ हो गए, एक बड़े भैया हैं अभी, वही हैं फैमिली में, भैया भाभी उनके बच्चे हैं, तो जाते हैं कभी
0: तो
1: ऐसे। एक
0: दोनों
1: दीदी मेरी पास में ही है इंदौर में, तो वो अटेंड कर लेती है प्रोग्राम को।
0: जी
1: जब मेरे भैया दोनों गुजरे थे, हम दोनों की ही मट्टी में, मतलब मैं दूर होने की वजह से नहीं मिल पाई मैं उनसे,
0: जी
1: यही दुख
0: जी
1: लगता है ज्यादा जी।
0: जी कष्ट जीवन में आते हैं प्रमिला जी, फिर ईश्वर हमें उसका साथ,
1: हाँ
0: उसका
1: जी
0: सामना
1: मैम,
0: करने के लिए शक्ति भी देते हैं, है ना
1: शक्ति मिलती है मैम, अभी
0: जी?
1: थोड़ा क्या करें, हिम्मत तो रखनी पड़ती है ना, अब ऐसा हो गया है तो।
0: हाँ
1: एक
0: हम
1: भैया है उनसे भी हम
0: जी
1: अच्छे
0: हम
1: रहते हैं, खुश रहते
0: जी
1: हैं, माँ बाप का प्यार उनसे ही मिल जाता है मैम हमको।
0: बिल्कुल, आपकी आवाज़ सुन के हम भी भाव विभोर यहाँ हो रहे हैं, आपके दुख को और आपकी पीड़ा को समझ सकते हैं। लेकिन जो बड़े भाई हैं वो ही
1: जी
0: अब आपका ध्यान भी रखते होंगे, आपसे बात भी
1: जी
0: करते
1: मैम
0: होंगे,
1: बिल्कुल
0: है
1: बिल्कुल,
0: ना
1: ध्यान रखते हैं,
0: जी?
1: बुलाते हैं हमेशा, कॉल करते हैं, फिर त्योहार पे कोई प्रोग्राम होता है या घर में कोई फंक्शन होता है तो फोन करके, बकायदा हमको न्योता मिलता है आने
0: ये बात तो
1: का
0: है।
1: और जाना
0: तो
1: भी पड़ता है मैम
0: और
1: फिर।
0: आजकल तो क्या डिजिटल वर्ल्ड भी हो गया, तो वीडियो कॉल से भी
1: हाँ जी
0: बात कर सकते हैं, वहां से एक छोटी सी ही सही लेकिन मुलाकात तो हो जाती
1: जी
0: है ना?
1: मैम मिलती है, नहीं जैसे कभी जाना होता है तो 10 दिन 15 दिन तो मेरा तो फिक्स है, मतलब दूर से जाती हूँ तो मतलब वो फिर मुझे आने भी नहीं देते हैं
0: सही
1: ऐसा है।
0: बात है जी, हाँ,
1: हाँ जी
0: क्योंकि बार बार वहां जाना संभव नहीं
1: हाँ
0: हो
1: जी
0: पाता जी। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा प्रमिला जी। आज बताइए कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आप?
1: जी मैम, मेरे को काजल मूवी का सुनना है, देखो छम छम घुंघरू बोले।
0: जी तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का यही गीत।

0: भी करती हैं, और
1: हाँ
0: मन
1: जी
0: सिर्फ मनोरंजन नहीं है, विविध भारती पे तो सारी देश विदेश की जानकारियां मिलती हैं हमें, है ना?
1: हाँ जी जी
0: तो घर परिवार में कौन कौन है बताइए।
1: घर परिवार में मेरी एक बेटी है नयन,
0: जी
1: और एक बेटा है प्रियन मारू, हस्बैंड है, बेटी की शादी हो चुकी है,
0: क्या बात
1: उसकी
0: है।
1: बेटी है, हाँ जी उसकी बेटी है अलिष्का 8 साल की।
0: आज हम बात कर रहे हैं मीना जी, अब रक्षाबंधन, तो आपकी
1: बिल्कुल
0: क्या यादें हैं रक्षाबंधन को लेके, आप इसके बारे में कुछ बताइए।
1: रक्षाबंधन की यादें मेरी तो बहुत अच्छी यादें रही हैं। मेरे दो भाई हैं, मतलब एक भाई 4 साल पहले शांत हो चुका है, वो बड़ा दुखदायी याद है मेरे लिए। और रक्षाबंधन का त्योहार मेरे लिए बहुत बड़ा त्योहार हुआ करता था।
0: जी
1: मैं अपने बच्चों के साथ में मायके जाती थी, पूरा परिवार साथ में हम लोग रक्षाबंधन का त्योहार मनाते थे,
0: जी
1: और मुझे मिठाइयों का भी बहुत शौक है, तो मैं रक्षाबंधन पे हमेशा घर से ही मिठाई बना के ले जाती थी।
0: क्या बात है, तो आप सारी मिठाइयाँ आप
1: हाँ जी
0: बनाती हैं?
1: हाँ जी हाँ जी, मैं घेवर स्पेशली, मेरे घेवर बहुत फेमस है मेरे मायके में,
0: अरे
1: सबको मेरे
0: वाह।
1: हाथ के घेवर बहुत पसंद आते हैं। करीब 30-35 साल से बनाती आ रही हूँ मैं। तो
0: जी
1: हमारा त्योहार राखी का त्योहार तो बहुत अच्छे से मनता था, पर बस कुछ 4-1 साल से मेरा बड़ा ब्रदर मनोज डांगी करके था, उसकी सडनली डेथ हो चुकी है, तो वो त्योहार
0: ओहो
1: अभी आज के लिए मेरे लिए बहुत दुखदायी रहता है। असल में अभी भी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरा गला रुंध गया है,
0: जी, वो महसूस
1: मुझे
0: कर
1: अपने
0: पा
1: भाई की
0: रहे हैं
1: बहुत
0: हम।
1: याद आती है। हाँ
0: जी
1: जी
0: लेकिन मीना जी, यही
1: वैसे
0: है,
1: भी
0: जो हमारे प्रिय हैं वो अगर हमसे दूर चले भी जाते हैं ना, तो उनका
1: हाँ
0: प्यार
1: जी
0: एक शक्ति बन के हमारे साथ रहता
1: बिल्कुल
0: है ना?
1: बिल्कुल,
0: तो
1: आप
0: अच्छी
1: बात सही
0: यादों
1: कर,
0: को
1: बिल्कुल
0: आप
1: सही।
0: संजो के रखिए, उनके साथ
1: हाँ
0: बिताए, जो
1: जी
0: हंसी मजाक वाले, जो अच्छे पल हैं उनको अपने मन में बसाए रखिए, क्योंकि राखी वाले दिन किसी न किसी तरीके से वो भाई आप तक अपना प्रेम तो
1: बिल्कुल
0: पहुंचा ही देंगे,
1: हाँ हाँ
0: है
1: होता
0: ना?
1: है बिल्कुल
0: जी जी बिल्कुल।
1: बिल्कुल।
0: तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: बेईमान फिल्म का गाना है, लता जी और मुकेश की आवाज में। गाने के बोल है, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, जैसे
0: आहा
1: चंदा और किरण का, जैसे बदली और पवन का, जैसे धरती और गगन का, ये राखी बंधन है ऐसा। ये वाला गाना मुझे बहुत पसंद है।
0: बिल्कुल, जिस तरह से सुरीले तरीके से आपने ये गाने को सुनाया है, तो चलिए सुनते हैं उसी गीत को।
2: ये राखी।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: मैं निगाह जान बोल रही, इंडिया जम्मू कश्मीर से।
0: क्या बात है, कश्मीर, जम्मू कश्मीर से कॉल आई है निगाह जान की। जी,
1: हाँ
0: तो कैसी हैं आप और कैसा है कश्मीर?
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कश्मीर भी बहुत अच्छा है और यहाँ भी थोड़ा सा गर्मी तेजी हो रही है। अभी गर्मी चल रही है क्योंकि सितंबर जो महीना है वो उसमें भी गर्मी होगी थोड़ी, फिर अक्टूबर से यहाँ सर्दी का मौसम शुरू होने वाला होता है।
0: जी, और उसके बाद तो फिर सुंदर बर्फ से ढके पहाड़ हो जाते हैं, है ना?
1: तो हाँ, वो तो ज्यादातर यहाँ बर्फ जो गिरती है वो दिसंबर में महीने में गिरती है।
0: जी
1: खास
0: जी
1: करके मैं श्रीनगर में रहती हूँ।
0: जी
1: टूरिस्टों का तो आना यहाँ बहुत रश होता है क्योंकि यार डल लेक है, वहाँ भी नाव शिकारी का सवारी करते
0: जी
1: टूरिस्ट यहाँ बहुत आते हैं।
0: जी कुछ बीच में बच्चों की छुट्टियां भी लग जाती है ना, तब भी कश्मीर सबसे पहले सभी, मुझे लगता है अधिकतर लोगों की लिस्ट में यही रहता होगा कि कश्मीर घूमने तो जरूर जाएंगे, है ना?
1: हाँ, क्योंकि कश्मीर का दूसरा नाम है जन्नत।
0: जी बिल्कुल, और आप खुशकिस्मत हैं कि आप उस जन्नत में रहती हैं, है ना?
1: बिल्कुल
0: जी
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी अपने बारे में कुछ बताइए निगहत जान
1: जी,
0: आप।
1: मैं गर्मी होती हूँ, मैं घर संभालती हूँ। आप तो मेरे शादी है, 12 दिन रह गए मेरी शादी को,
0: कब?
1: 1 सितंबर और 2 सितंबर को मेरी शादी है।
0: अरे वाह, आपका ब्याह होने वाला है तो उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: मेरी बहन भी इसके नाम में को सुनना चाहती है, उसका नाम है कुमसर जान।
0: जी, उन्हें भी हमारा नमस्कार कहिए।
1: हाँ, चलते चलते मैंने सोचा अब मुझे किसी और के घर जाना है, तो सोचा सहलो सहल में एक बार फिर से कॉल करूं। तो खुशकिस्मती है मेरी कि मेरा कॉल लग गया आज, और मैं बहुत खुश हूँ। जब भी मैं कोशिश करती हूँ तो मेरा कॉल लग ही जाता।
0: तो ये जानकर
1: हाँ
0: हमें बहुत अच्छा लगा, और एक बार फिर आपको आपकी शादी के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: फिल्म का नाम है सावन। गाने के बोला है, तुझे याद किया मेरे दिल में, कब आओगे साजन मुझसे मिलने।
0: वो
1: अब
0: तो
1: तो
0: बस
1: साजन का ही
0: आ ही
1: इंतजार
0: रहे हैं, सितंबर में बस आने ही वाले हैं, है ना? तो
1: है।
0: अब ये
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: इंतजार का जो वक्त है
1: खत्म हो गया।
0: बिल्कुल खत्म होने को ही है, तो चलिए सुनते हैं इस गीत को।

कार्यक्रम हेलो सहेली में आज बातों का सिलसिला बस इतना ही। हम सहेलियों से अनुरोध करते हैं कि जिनके कॉल्स आज लग पाए हैं वे अगले 2 महीनों के बाद हमें संपर्क कीजिए ताकि बाकी सखियों को भी बातचीत का अवसर मिल सके। जिनके कॉल्स नहीं लग पाए हैं

0: वे सहेलियां निराश ना हो, आप अगले मंगलवार अवश्य कोशिश कीजिएगा। सखियों, आपसे अब मुलाकात होगी हेलो सहेली के अगले अंक में। साथ ही सभी सुनने वालों को ये बता दें कि हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार के दिन सुबह 11 बजे से। हमारे टेलीफोन नंबर है हिंदी में 400-24662, एक और नंबर है 28670288, मुंबई का एसटीडी कोड है 022, अंग्रेजी में नंबर है 4002462, एक और नंबर है 28670288, मुंबई का एसटीडी कोड 022। आज की हेलो सहेली कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर हैं किरण बंग और संपादन में हमें सहयोग मिला नम्रता टिकोड़े का। विविध भारती की ओर से हेलो सहेली कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम से मैं आपकी दोस्त दीपा माहेश्वरी लेती हूँ इजाजत। आप सभी को हेल्दी नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। झारखंड उच्च न्यायालय ने आज जेएसएससी सीजीएल और सीडीपीओ परीक्षाओं की नियुक्ति रद्द करने के सरकारी आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश दीपक रोशन की अदालत ने मामले पर राज्य सरकार और जेपीएससी को 7 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। इससे पहले कल जेपीएससी की 11वीं से 13वीं और एक अन्य नियुक्ति को रद्द करने के सरकारी आदेश पर हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई थी। न्यायालय के फैसले के बाद सीजीएल उत्तीर्ण और सीडीपीओ के पद पर नियुक्त अभ्यर्थी खुशी जाहिर कर रहे हैं। प्रोजेक्ट भवन के बाहर 4 दिनों से प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने राष्ट्रगान गाकर अपनी खुशी और कृतज्ञता व्यक्त की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज रांची स्थित आवासीय कार्यालय में हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड एचएसी के पुनरुद्धार के लिए गठित 6 सदस्यीय केंद्रीय संसदीय उप समिति के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस दौरान पुनरुद्धार से संबंधित भविष्य की कार्य योजनाओं से संबंधित विस्तृत चर्चा हुई। राजधानी रांची समेत राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर 22 और 23 अगस्त को मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए अंतिम विशेष शिविर लगाया जाएगा। शिविर का आयोजन सवेरे 10 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। इस शिविर में नए नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6 और परिवार का नाम एक ही केंद्र पर लाने के लिए फॉर्म 8 भरे जाएंगे। और मौसम विज्ञान केंद्र रांची परिसर में आज अत्याधुनिक वर्षा मापक उपकरण डिस्ट्रोमीटर की स्थापना की गई। उच्च रेजोल्यूशन वर्षा मापन की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण पहल है। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: उसने अनुमान लगाया कि यदि सब ठीक ठाक रहा तो रात तक पहुंच ही जाऊंगी। चाची का मैसेज था, टैक्सी से ही आ जाओ। नहीं नहीं, मैं गाड़ी से आ रही हूँ। गाड़ी और ड्राइवर पहचान वालों की है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। मीनाक्षी ने चाची को तसल्ली दी। चाची की घबराहट से वो भी चिंतित

गाड़ी में बैठते ही मीनाक्षी सोचने लगी, हे ईश्वर सब ठीक रखना। सड़क के दोनों ओर काफी भीड़ थी। फल सब्जी बेचने वालों के ठेले लाइन से लगे थे। कुछ बूढ़ी महिलाएं सड़क के किनारे डलिया में अमरूद लेकर बैठी थी। अमरूद का ये सीजन मीनाक्षी को यूं भी पसंद था, क्योंकि हरे पीले और अंदर से हल्के से लाल गुलाबी अमरूदों को देखकर उसकी तबीयत खुश हो जाया करती थी। उसे याद आया गांव के पास ही अमरूद का बगीचा था। चाचा उन अमरूद को ठेके पर उठा देते थे और एक दो पेड़ परिवार और रिश्तेदारों के लिए बचा लेते थे। अमरूद के पेड़ों पर हजारों तोतों का ठिकाना रहता था। वे जितने अमरूद खाते थे उससे ज्यादा अधखाए अमरूद नीचे गिरा देते थे। उसे याद है एक बार रखवाली करने वाले लड़के ने गुलेल से एक तोते को घायल कर दिया था। तब चाचा ने नाराज और दुखी होकर उसको काम से ही निकाल दिया था। तोते को घर में लाकर उसका इलाज करवाया गया था और चाचा ने उसे अपने पास रख लिया था। चाचा उसे प्यार से बेटू बोलते थे। बेटू भी कितना बोलता था, लड़ता था, प्यार जताता था। बाद में वो बगीचा चाचा ने बेच दिया था, क्योंकि वे उतना समय नहीं दे पाते थे, पर जिसको बेचा था वो भी अमरूद की पेटियां भिजवाता रहता था। चाचा के दो ही शौक थे, जमीन खरीदना, वो भी बंजर जमीन, शहर से दूर, फिर उसको उपजाऊ बनाने के लिए सैकड़ों उपाय निकालना। उनके सुबह के 4 घंटे इन्हीं कामों में निकलते थे। फिर बाद में उसने सुना कि चाचा ने अपने खेतों में 500 सीताफल के पेड़ लगवाए थे, पर वे नहीं लगे क्योंकि जमीन उनके अनुरूप नहीं थी। चाचा ने जहां से पेड़ मंगवाए थे वे स्वयं वहां गए। वहां से पूरे 8 विशेषज्ञों को लेकर आए थे और उनकी जिद कि दोबारा फिर से वही पेड़ लगवाएं। परिवार वाले परेशान, कितना पैसा बर्बाद करते हैं, बेचो जमीन और खेत, आराम से रहो पर नहीं। चाचा का मन तो वही रमता। बीमारी के 1 माह बाद जब वे उन खेतों पर गए तो देखा वहां तो मजदूरों ने पूरी गृहस्थी बसा रखी है और कुत्तों का परिवार बाकायदा पला हुआ है। चाचा, चाचा, मीनाक्षी के कंठ से प्रार्थना के स्वर निकले, हे प्रभु, हे प्रभु, चाचा को स्वस्थ रखना।

कहाँ तक पहुँची? कोई दिक्कत तो नहीं है? चाची और बहन के कई मैसेज पड़े थे। अरे कोई दिक्कत नहीं है मुझे, आराम से आ रही हूँ, उसने मैसेज लिखा। शहर से बाहर निकलकर ठंडी हवा में सांस लेना मीनाक्षी को अच्छा लग रहा था। हरे भरे खेतों के बीच नए बनते मकानों को देखकर उसे कुछ नहीं अच्छा लगा। हाँ, पेड़ों की नई नई कतार को देखकर उसका मन अलबत्ता खुश हो उठा। वाह, मौसम तो अच्छा है जी। ड्राइवर ने रेडियो की आवाज कम की। क्या तुम अक्सर ही बाहर जाते हो? जी मैडम, जब जैसी राइड मिल जाए चला जाता हूँ, ड्राइवर बोला। तुम्हें क्या फर्क दिखता है? बस मैडम, जहाँ रोड ठीक है वहाँ तो आराम से गाड़ी चली जाती है, लेकिन जहाँ रोड कट गए हैं या नया निर्माण हो रहा है वहाँ तो बहुत परेशानी होती है। कहाँ के रहने वाले हो? यही गांव में रहता हूँ। एक दो गाय भैंसे हैं, एक एकड़ का खेत है, उसमें कुछ न कुछ उगाते रहते हैं, घर का अनाज और सब्जियां हो जाती हैं, बाहर तो काम कभी कभार ही मिलता है, माता पिता को भी चिंता लगी रहती है। तुम्हें क्या लगता है, अपने काम में ज्यादा पैसा मिल जाता है? हाँ वो तो है मैडम, पर कई बार कुदरत की मार पड़ जाती है, बाढ़ ओला या पाला से खड़ी खड़ी फसल भी मर जाती है, दाने काले पड़ जाते हैं। ओला और बेमौसम बारिश पर भला किसका वश चलता है, ड्राइवर बोला। अब तक बादलों ने सूरज को ढांक लिया था, धूप की जगह धूसर रंग चारों तरफ दिखाई दे रहा था, सड़कों के दोनों तरफ हरे भरे खेत थे। वाह कितना सुंदर मौसम हो गया है, मीनाक्षी ने फिर दोहराया, जैसे उसकी यात्रा का सहयात्री ये मौसम ही हो। मैडम हम लोग तो आज भी कोशिश करते हैं कि शुद्ध हवा में रहें, शुद्ध पानी पिए। हमारे बोर में इतना पानी आता है कि आसपास के लोग तक पानी लेने आते हैं। मेरी माँ भी मौसम की बहुत बात करती हैं, उन्हें अपने गांव का मौसम अक्सर याद आता है आप ही की तरह, ड्राइवर बोला। अच्छा, आप यकीन करेंगे मैडम, हमारे खेत के कुएं का पानी हरे रंग का है। अच्छा कैसे? अरे मैडम, उसके आसपास बहुत सारे पेड़ लगे हैं ना, उनकी पत्तियां उसमें गिरती रहती हैं, तो उसका स्वाद भी अलग है, एकदम शुद्ध हर्बल वाटर की तरह। वाह भाई, तुम्हारी बातें तो बड़ी दिलचस्प हैं। हल्की सी बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। इन दो तीन महीनों में बिना मौसम की बरसात बड़ी नुकसानदायक होती है। देखिए ना, फसल पकने को है, अगर ज्यादा पानी गिर गया तो फसल बर्बाद हो जाएगी। वो सोच में पड़ गई, जीवन भी तो किसी फसल की तरह ही होता है, और चाचा, चाचा तो जीवन में फसलों को ही जीते रहे हैं। चाचा पढ़े लिखे हैं, बाकायदा PhD, कुछ साल नौकरी की, पर नौकरी करते हुए वे ज्यादातर वक्त अपने खेतों पर गुजारते थे। चाचा के साथ शादी से पहले वो भी उनके खेतों पर और गांव जाया करती थी। हाँ, जब उन्होंने शहर में जमीन लेकर फार्म हाउस बनाया था तब चाचा ज्यादातर काम फोन पर ही करवा लिया करते थे। उनके खेत पर होने वाली पार्टी का सबको इंतजार रहता था। चारों तरफ लगे आम के वृक्ष, खेतों में लगी सब्जियां, बीच में बना छोटा सा सरोवर और कतार में लगे बेरों के पेड़। चाचा आने वाले दोस्तों को उपहार में क्या दिया करते थे, 5 किलो मटर, 2 किलो बेर और 1 थैला अमरूद, यानी हरेक के लिए 3-3 थैलियां गिनकर रख दी जाती थी। चाचा के दोस्त हंसते, यार ये बढ़िया है, नींबू पानी पिलाओ, घर की सब्जियां खिलाओ, खेतों में घुमाओ, और गिफ्ट भी अनोखी, वो भी ऑर्गेनिक, क्या बात है। मीनाक्षी के होठों पर मुस्कुराहट थी पर आंखों में आंसू छलक आए। उसने साइड में गाड़ी रोकने को कहा, पानी पिया, फिर थर्मस में से चाय निकाली। बारिश तेज होने के आसार नजर आ रहे थे। थोड़ा रुक जाते हैं, बिजली गिरने का अंदेशा भी तो रहता है, मीनाक्षी ने ड्राइवर से कहा। जी मैडम, बारिश भी अच्छी लग रही है ना, ड्राइवर बोला। मीनाक्षी को लग रहा था कब वो चाचा के पास पहुंचे, ये रास्ते इतने लंबे क्यों लग रहे हैं, समय इतना भारी और ठहरा हुआ क्यों लग रहा है। ढेर सारी बातें उसके जहन में आ जा रही थीं। बचपन जो किसी बेहद खूबसूरत परिंदों के देश जैसा लगता था, जिसमें सैकड़ों परिंदे होते थे, जानवर होते थे, रंग बिरंगे फूल खिले होते थे, छोटे छोटे कुएं, बावड़ी और नहरें होती थीं। आज भी वो किसी को बताती है तो सबको लगता है कि वो किताबी कहानियां सुना रही है,
पर वो उसका असली बचपन था। बाद के वर्षों में पेड़ कम होते गए, फसलें बिगड़ती गईं, बगीचों के पेड़ उजड़ते गए और उसके आसपास मंडराने वाली तितलियां भी स्वप्न की तरह होती गईं।

चले मैडम, ड्राइवर ने कहा तो उसका ध्यान भंग हुआ। बारिश तो मिलेगी पर रोड अच्छा है, आराम से चलते हैं, जहाँ तेज बारिश होगी वहाँ रुक जाएंगे। मीनाक्षी ने किसी को कुछ नहीं बताया, बेकार सबको चिंता हो जाएगी। स्कूल की पढ़ाई, फिर कॉलेज की पढ़ाई के बाद नौकरी, शादी, जिम्मेदारियां, सबने मिलकर बीच के अंतराल को जैसे खामोशियों से भरे बादल में छुपा दिया था। जीवन भी चुपचाप अपनी दिशा तय कर लेता है और हमें लगता है कि हम उसे चला रहे हैं। भीतर की आवाजें लगातार हमें पुकारती रहती हैं और मन बाहर की आवाजों को सुनते हुए भागता रहता था। हम जन्मदिन बड़े उल्लास के साथ मनाते हैं, पर नहीं जानते कि एक वर्ष और चुपके से निकल गया, गिनती में एक साल और कम हो गया। चाचा, चाचा का जीवन कितना गतिशील, कितना खूबसूरत रहा है। आधी उम्र आसमान में उड़ते हुए निकल गई और आधी धरती पर काम करते हुए।

मैडम, आप चाहें तो आराम कर लें, मैं सीट डाउन कर देता हूँ, ड्राइवर बोला। नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, ये आसपास की हरियाली देखने का सुख जो मिल रहा है, क्या करूँ, पेड़ों और पक्षियों में जान बसती है मेरी। बचपन जिस माहौल में बीतता है वही आपके स्वभाव में रच बस जाता है। हाँ ये तो है मैडम, अब कहने को हमारे पास दो कमरे हैं, पर बाहर का एरिया इतना खुला हुआ है कि शहर में कहीं जाने की इच्छा ही नहीं होती। कितनी देर में पहुंच रही हो तुम? बहन का फोन आया था। बस अभी 2 घंटे और लगेंगे, ट्रैफिक अगर न मिले तो, मीनाक्षी बोली। रात का खाना बनवा कर रखे हैं, कुछ खास बनवाएं क्या, बहन ने पूछा। नहीं नहीं कुछ खास नहीं, बस जल्दी ही पहुंच जाए, बस जल्दी ही पहुंच जाए, उसने मन ही मन कहा। शाम की छाया पहले आसमान में, फिर पेड़ों पर, फिर धरती पर उतरती हुई अंधकार का रूप धारण कर चुकी थी। दूर कहीं एकाध लाइट दिख जाती, घना जंगल है और रोड भी सुनसान, एकाध गाड़ी आती जाती दिख जाती थी। हम सही रास्ते पर तो चल रहे हैं ना भैया? जी मैडम, मेरा देखा हुआ रास्ता है, आप चिंता न करें, थोड़ी दूरी पर ही तो एक चाय का ढाबा है। मीनाक्षी के मन में बुरे ख्याल आने लगे, यहाँ तक कि ड्राइवर भी अजनबी लगने लगा। पर नहीं, सब ठीक रहेगा, पेट्रोल है, स्टेपनी सही है, कोई दुर्घटना होगी ही क्यों। हाँ फिल्मी तर्ज पर 4-6 लुटेरे आ जाए, गाड़ी घेर ले, वो बात अलग है, जंगली जानवर तो बेचारे गाड़ियों की लाइट से ही डर जाते हैं। मीनाक्षी ने देखा दूर बिजलियां टिमटिमाती नजर आ रही थी। चाय पियोगे? जी मैडम, आप? हम भी पी लेंगे। मीनाक्षी को लगा वो लंबी अंधेरी सुरंग से बाहर निकल आई है। गांव में आधी रात को ऐसा ही अंधकार पसर जाता था, पर उस रात का मायावी रूप जैसे और निखरने लगता था। आसमान में चमकते नक्षत्रों को देखकर, चांद और उसके आसपास के नक्षत्रों को गिनते हुए मन का सारा भय दूर हो जाता था।

0: घर पहुंची तो रात के 11 बज चुके थे। बाहर कुछ लोग वॉक कर रहे थे। कुत्तों का पूरा समूह पेड़ों के आसपास सो रहा था। गाड़ी की आवाज सुनकर एक दो कुत्तों ने ऊंघते हुए देखा, थोड़ा सा गुर्राए, फिर अपनी जगह पर जाकर हाथ पांव पसार कर सो गए। ड्राइवर के लिए ऊपर का रूम खुलवा दिया है। चाची ने उससे गले मिलते हुए कहा, थक गई होगी ना, हाथ मुंह धो लो, खाना लगा दिया है। बाकी लोग? मीनाक्षी बोली, तुम्हारे लिए कुछ मीठा लेने गए हैं। चाचा सो गए क्या? नहीं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो दौड़कर चाचा के कमरे में गई।
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की आज की कड़ी।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
0: और मैं हूं अजीत। आप सबको नमस्कार, स्वागत बहुत बहुत उमंग कार्यक्रम में। श्रोताओं, धमधा ग्राम सुखरी कला छत्तीसगढ़ से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: रिश्ते अनमोल होते हैं, इन्हें शब्दों से नहीं प्यार, विश्वास और सम्मान से सींचिए, क्योंकि सच्चे रिश्ते ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत होते हैं।
0: इस विचार के लिए आप सबको हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। हमें पहला संदेश मिला है ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, वेदिका, वंश, निकेश, धर्मेंद्र, मेघा, नंदिनी और ममता बाई वर्मा का।
2: नर्मदा नगर मध्य प्रदेश से सूरज वर्मा, ऋषभ, कनक और भावना वर्मा।
0: और ग्राम बंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे जी का।
2: हरदोई जिले के नगर पंचायत कुरसठ गांव के मोहल्ला रामनगर से राजेश कुमार विद्यार्थी और कोमल।
0: और ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा।
2: संजय नगर कॉलोनी नेपानगर से प्रभु दयाल शिवदे, शिवा, खुशी, जानू, मनीषा बसंतीबाई और गणेश शिवदे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। हमारा निवेदन वही है जो हमेशा होता है और वो ये है कि जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से और न सिर्फ सुनिए लेकिन दूसरों को भी सुनाइए।
2: जी
0: तो बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, इसी प्रकार से उमंग कार्यक्रम के साथ बने रहिए। अब प्रस्तुत है आज का प्रेरक प्रसंग।
2: जी
0: तो विमलेश जी, हमने कल चर्चा की थी तितली के संघर्ष की।
2: बिल्कुल।
0: आज किसकी चर्चा होने जा रही है?
2: अजीत जी, आज हमारी चर्चा होने जा रही है बाज की। हम सभी इस पक्षी के बारे में जानते हैं, ये अपनी तीक्ष्ण दृष्टि और शानदार उड़ान के लिए जाना जाता है। आज हम सुनेंगे बाज और मुर्गियों की कहानी।
0: श्रोताओ, इस कहानी का मूल भाव है स्वयं को पहचानिए। कहानी कुछ इस प्रकार से है, शायद आपने पहले भी सुनी हो लेकिन हर बार ये हमें अपने जीवन के बारे में कुछ न कुछ नया सोचने के लिए जरूर प्रेरित करती है।
2: तो करते हैं शुरुआत कहानी की।
0: जी।
2: एक दिन की बात है, एक किसान खेत से लौट रहा था। रास्ते में उसे एक पेड़ के नीचे बाज पक्षी का बच्चा पड़ा हुआ मिला। वो घायल भी था, शायद किसी तूफान में वो घोंसले से गिर गया था।
0: तो उस किसान ने सोचा, यदि मैं इसे छोड़ दूंगा तो शायद ये जीवित नहीं बचेगा। वो उस बाज के बच्चे को घर ले आया और उसे अपनी मुर्गियों और चूजों के साथ रख दिया।
2: जी।
0: वो बाज का बच्चा अब मुर्गियों के बीच ही बड़ा होने लगा।
2: वो वही खाता जो मुर्गियाँ खाती थी। वो जमीन पर दाना चुगता, मुर्गियों की तरह थोड़ा बहुत उछलता और छोटे छोटे पंख फड़फड़ाता, और जब मुर्गियाँ कुट कुट करती तो वो भी वैसा ही करने की कोशिश करता।
0: उसे मालूम ही नहीं था कि वो वास्तव में कौन है। उसे ये पता ही नहीं था कि उसकी क्षमता कितनी है।
2: जी।
0: एक दिन उसने आकाश में एक विशाल बाज को ऊंची उड़ान भरते हुए देखा। वो बादलों के बीच बिना किसी डर के शान से उड़ रहा था।
2: बाज के बच्चे ने आश्चर्य से अपनी मुर्गी माँ से पूछा, माँ वो कितना अद्भुत पक्षी है, वो कौन है? मुर्गी ने उत्तर दिया, वो बाज है, आकाश का राजा। बाज ने पूछा,
0: क्या मैं भी कभी उसके जैसा उड़ सकता हूँ?
2: मुर्गी हंस पड़ी, नहीं बेटा, हम मुर्गियाँ हैं, हम जमीन पर रहने वाले पक्षी हैं, इतनी ऊंची उड़ान हमारे बस की बात नहीं, हम उसकी तरह उड़ नहीं सकते। अजीत जी, फिर क्या हुआ, क्या बाज कभी उड़ पाया?
0: नहीं विमलेश जी, दुखद बात यह है कि बाज के बच्चे ने भी यही बात सच मान ली और उसने कभी उड़ने का प्रयास ही नहीं किया। वो पूरी जिंदगी मुर्गियों की तरह जमीन पर चलता रहा, कुट कुट करता रहा।
2: जी।
0: पता है, उसने उड़ने की जन्मजात क्षमता थी।
2: जी।
0: बस यदि वो थोड़ा और पंख फड़फड़ाता, अपने पंखों को फैलाता, उड़ने का प्रयास करता तो वो उड़ सकता था।
2: जी।
0: लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसने मान लिया था कि उससे हो ही नहीं सकता।
2: और एक दिन इसी भ्रम में उसका जीवन समाप्त हो गया कि वो एक साधारण मुर्गी है। प्रिय श्रोताओं, ये केवल एक पक्षी की कहानी नहीं है, ये हम में से बहुत से लोगों की कहानी है। कई बार परिस्थितियां हमें ये विश्वास दिला देती हैं कि हम जितने हैं उससे अधिक नहीं बन सकते।
0: श्रोताओ, विद्यार्थी सोचते हैं कि वे और अच्छा नहीं कर सकते, कुछ विषय उनसे हो ही नहीं सकते।
2: जी।
0: लोग कहते हैं तुमसे नहीं होगा, तुम साधारण हो।
2: जी।
0: इतना बड़ा सपना मत देखो। और श्रोताओ, होता ये है कि धीरे धीरे हम भी उन बातों पर विश्वास करने लगते हैं, अपनी क्षमता भूल जाते हैं।
2: हम अपने पंख समेट लेते हैं और फिर पूरी जिंदगी उसी सीमा में जीते रहते हैं जो दूसरों ने हमारे लिए तय की है।
0: लेकिन इतिहास गवाह है, हर महान व्यक्ति ने एक दिन यह तय किया कि वह दूसरों की सीमाओं में नहीं लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार जिएगा।
2: आपने महान नर्तकी सुधा चंद्रन के बारे में अवश्य सुना होगा। जिस दिन उन्होंने सोच लिया कि कृत्रिम पैर के साथ वो नृत्य करके दिखाएंगी, एक इतिहास रच दिया गया।
0: और श्रोताओं, आपने पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा के बारे में भी सुना होगा कि एक पैर खोने के बाद भी उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। जी हाँ प्रिय विद्यार्थी श्रोता मित्रों, आपसे कहना चाहते हैं शायद आपके भीतर भी कोई ना कोई सपना है, कोई प्रतिभा है, कोई ऐसा कार्य है जिसे करने से आप डर रहे हैं। हो सकता है लोगों ने आपको बार बार निराश किया हो, लेकिन याद रखिए, दूसरे लोग आपकी पहचान तय नहीं कर सकते।
2: आपका भविष्य आपकी परिस्थितियां नहीं बल्कि आपका विश्वास तय करता है। यदि बाज अपने पंखों पर विश्वास करे तो आकाश उसका है, और यदि मनुष्य अपनी क्षमता पर विश्वास करे तो कोई लक्ष्य असंभव नहीं।
0: तो हम कहना चाहते हैं,
2: अपने पंखों पर विश्वास कीजिए, और हाँ, किसी और से अपनी तुलना मत कीजिए, क्योंकि
0: आप हैं।
2: बिल्कुल।
0: आशा है आपको हमारी प्रस्तुति अवश्य पसंद आई होगी श्रोताओं, यदि आई तो जरूर लिख भेजिए प्रोत्साहन के दो शब्द। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से श्रोताओं, आज का प्रश्न है, नर्तकी सुधा चंद्रन किस नृत्य के लिए जानी जाती हैं, और पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा ने कब एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: नर्तकी सुधा चंद्रन किस नृत्य के लिए जानी जाती हैं, और पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा ने कब एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की।
0: आप हमारे प्रश्न का उत्तर भेज सकते हैं हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर, और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल पर यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और विचार भेज सकते हैं।
2: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। इस वेबसाइट से आप पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं,
0: और इन्हीं पुस्तकों को यदि आप ऑडियो बुक प्रारूप में भी सुनना चाहते हैं तो आपको जाना होगा NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर। इस चैनल पर जाकर आप हमारी पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूप सुन सकते हैं। तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम पानी रे पानी, जल है तो कल है।
2: कार्यक्रम में जल की दुर्लभता को समझाते हुए बताया गया है कि पृथ्वी पर पेयजल की मात्रा बहुत ही कम है, शेष खारा जल है, इसलिए हमें जल बचाने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए।
0: साथियों नमस्कार, पिछली बार आपने सुना था कार्यक्रम पानी रे पानी। इस कार्यक्रम में आपने सुना था एक कविता के माध्यम से जल चक्र की प्रक्रिया के बारे में। आइए अब सुनते हैं इसी कार्यक्रम का दूसरा भाग, पानी रे पानी, जल है तो कल है।

0: प्यारे प्यारे बच्चों और साथियों, मैं हूँ तुम्हारी दोस्त झुमकी
1: और मैं हूँ झुमरू।
0: नमस्कार।

0: तो झुमकी, आज हम बच्चों से क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
1: ये तो बहुत सही सवाल किया है आपने। आज हम चर्चा करेंगे, करेंगे किस पर?
2: जल बचाओ।
0: तो झुमकी क्यों?
1: वो इसलिए क्योंकि इन दिनों पानी की समस्या ही सबसे बड़ी है।
0: हाँ,
1: तो चलो शुरू करें।
0: और हाँ बच्चों, तुम्हें भी तुक मिलाना है, समझे?
2: जी झुमरू जी।
0: चलो झुमकी।
1: ठीक है तो चलो मैं शुरू करती हूँ।
3: रखो तुम नल हर दम, नहीं हो जब उपयोग, जल की एक एक बूंद का सदा करो सदुपयोग।
0: करते हो जब ब्रश तो नल को खुला कभी ना छोड़ो, नित्य प्रतिदिन ऐसा करके बूंद बूंद तुम जोड़ो।
4: झुमरू जी, किताबों में हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है, तो इसका मतलब हुआ पृथ्वी पर बहुत पानी है।
0: हाँ,
5: लेकिन यदि इतना पानी है तो पानी की कमी क्यों है?
3: क्योंकि इसमें से समुद्र का 96% जल खारा है और ये पीने योग्य नहीं है, है ना झुमरू जी?
0: हाँ बच्चों, पृथ्वी का सिर्फ 3.5% पानी ही पीने योग्य है, जिसमें से कुछ हिस्सा ग्लेशियरों में बर्फ के रूप में संरक्षित है।
5: लेकिन जल बचाने के लिए हम बच्चे क्या कर सकते हैं?
1: बहुत अच्छा सवाल किया है ये तो। चलो, बच्चे भी बहुत कुछ कर सकते हैं।
0: जैसे?
1: जैसे हम स्नान करते समय जल का उपयोग कम कर सकते हैं, है ना? और क्या कर सकते हैं?
0: बताओ बताओ।
1: मैं नहीं, अब बच्चे बताएंगे।
0: ठीक,
1: बताओ।
5: यदि हम किसी नल से पानी टपकता हुआ देखें तो हम उसे तुरंत बंद कर सकते हैं।
1: और
5: यदि बनना हो तो हम किसी बड़े को बता सकते हैं।
0: हाँ,
1: बहुत अच्छे।
0: हाँ, ताकि उसकी मरम्मत हो जाए। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया।
5: यानी हम बच्चे भी जल बचाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं।
1: तो अब हो जाए सबके लिए जोरदार
2: तालियां।
0: अच्छा, अब ये बताओ बच्चों, तुम में से किस किस के पास गुल्लक है?
2: मेरे पास बहुत बड़ी पीस है।
0: अरे वाह।
1: तो फिर ये पृथ्वी भी तो एक गुल्लक ही हुई ना, है ना, है ना, है ना, बोलो। जैसे गुल्लक में पैसे बचाते हैं, वैसे ही इस बड़ी सी गुल्लक में हम क्या बचा सकते हैं?
2: जल।
0: तो झुमकी, क्यों ना हो जाए इस पर एक सुंदर सी कविता। लेकिन ऐसी वैसी कविता नहीं, बल्कि तुक मिलाने वाली।
1: आपने तो मेरी मन की बात कह दी।
0: तो,
1: चलिए
0: शुरू हो जाओ।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये लीजिए।
3: ये पृथ्वी मेरी गुल्लक है, हम इसमें जल बचाएंगे। आप भी कहिए।
0: हाँ, बूंद बूंद हम जल बचाकर। बच्चो, अब तुम्हारी बारी है।
2: जीवन सुखद बनाएंगे,
1: जीवन सुखद बनाएंगे। हाँ, जीवन सुखद बनाएंगे।

0: बस फिर क्या था, बच्चों ने थोड़े दिनों के बाद एक समूह बनाया, नाम रखा बाल जल प्रहरी।
1: और फिर बच्चों ने संभाली अपने अपने घरों और कस्बे में जल संरक्षण यानी पानी बचाने की जिम्मेदारी।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम पानी रे पानी, जल है तो कल है।
3: मेरा नाम साक्षी है, मैं एक आईटी कंपनी में काम करती हूँ। एक दिन ऑफिस से घर आते वक्त रात को एक कार सामने चल रही थी, उसने अचानक से ब्रेक मारा। और उसकी टेल लाइट ही नहीं चली, बस एक छोटा सा डिम बल्ब था, वो भी धुंधला सा। मुझे लगा मैं सीधा टकरा जाऊंगी, एक छोटा सा बल्ब ही तो है, पर अगर ना चले तो सब कुछ अंधेरा हो जाता।
4: वाहन चलाते समय टेल लाइट और ब्रेक लाइट का ठीक से काम करना जरूरी है, ताकि पीछे आने वालों को समय पर संकेत मिल सके।
2: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम हसरत मोहानी।
5: ये कार्यक्रम उर्दू के महान साहित्यकार जनाब हसरत मोहानी के जीवन और साहित्यिक उपलब्धियों पर आधारित कार्यक्रम हसरत मोहानी।

0: आशिकी का वो जमाना याद है।
1: सैयद फजलुल हसन नाम और हसरत तखल्लुस 1875 में कस्बा मोहान जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। बास किताबों में उनका सने पैदाइश 1880 और 1881 भी मिलता है। वो एक कामयाब शायर और बेबाक सहाफी होने के साथ साथ एक सरगर्म सियासतदान और मुजाहिदे आजादी भी थे। अरबी फारसी की इब्तदाई तालीम मकतब में हासिल की। 1898 में गवर्नमेंट हाई स्कूल फतेहपुर से मैट्रिक का इम्तिहान पास करने के बाद 1899 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज मौजूदा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। हसरत ने 12 साल की उम्र में शेर कहना शुरू कर दिया था। 1903 का साल हसरत की जिंदगी में बड़ी अहमियत रखता है। उन्होंने बीए का इम्तिहान पास किया। इसी साल वह अपने बागियाना ख्यालात की वजह से कॉलेज से निकाले गए। अब हसरत अलीगढ़ के मोहल्ला रसलगंज में किराए पर मकान लेकर रहने लगे। 1903 ही में हसरत ने एक इल्मियो अदबी रिसाला उर्दुए मौल्ला जारी किया। ये सिलसिला आखिर उम्र तक जारी रहा। उर्दुए मौल्ला में अदबी और सियासी दोनों तरह के मजामीन शाये हुए थे। हसरत मोहानी ने इसके जरिए कौमी इत्तेहाद, सेकुलरिज्म और कामिल आजादी की आवाज बार बार बुलंद की। वो आजादी के मतवाले थे। अंग्रेजी हुकूमत की उन्होंने खुलकर मुखालफत की और वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए। अप्रैल 1908 के उर्दुए मौल्ला में एक मजमून की इशात पर मुकदमा चला। अदालत ने उन्हें 2 साल कैद बामशक्कत की सजा सुनाई और 500 रुपए जुर्माना किया। जेल में हसरत ने किस तरह शबो रोज गुजारे उनके इस शेर से अंदाजा किया जा सकता है।

0: हसरत मोहानी के मिजाज में सादगी बहुत थी। उनके लिबास और रहन सहन को देखकर गुमान भी नहीं हो सकता था कि वो बुलंद पाया शायर, अदीब और सियासतदान हैं। एक मर्तबा कानपुर के एक सौदागर जो हसरत से अकीदत रखते थे, उनसे मिलने आए तो देखा कि वो कुछ लिख रहे हैं।
1: जी आदाब बजा लाता हूँ जनाब, मोहानी की खिदमत में।
2: अरे आप, आदाब अर्ज, आइए आइए, तशरीफ रखिए।
1: जी जी, शुक्रिया शुक्रिया।
2: माफ कीजिएगा, जरा एक मजमून लिख रहा था, बस अभी आपसे मुखातिब होता हूँ।
1: कोई बात नहीं जनाब, कोई बात नहीं, आप आराम से अपना काम करें।
2: जी बस
1: जी।
0: हसरत लिखते जाते और बीच बीच में उन सौदागर से बात भी करते जाते। हसरत की पुश्त पर एक फटा पुराना पर्दा लटक रहा था, वो पर्दे के पीछे से कुछ निकालते और मुंह में रख लेते और डेस्क पर रखी गुड़ की डली से थोड़ा गुड़ खा लेते। सौदागर साहब खामोशी से देखते रहते।
2: जनाब बस जरा सी देर और, बस यूं समझिए खत्म ही हुआ चाहता है।
1: जी जी, आप इत्मीनान से काम करें, बाखुदा मैं मजे में हूं। ये थोड़ा सा अजीब है, लिख भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, कैसे पूछूं।
0: जब जब्त ना हुआ तो अर्ज किया,
1: मोहानी साहब ये पर्दे की ओट से निकालकर आप क्या खा लेते हैं, कुछ खादिम को भी आता हो।
2: चलिए फटी हुई बनियान दिखा ही देते हैं आपको।
1: क्या मतलब?
0: हसरत ने पर्दे के पीछे से मिट्टी की हंडिया निकाली जिसमें सूखी रोटियां पानी में भीगी हुई थी।
2: ये लीजिए, खा लीजिए मियां, फकीरों का खाना तुम रईस ना खा पाओगे।
1: क्या सूखी रोटी पानी में भीगी हुई?
2: आज तीसरा फाका है, शुक्र है सूखी रोटी मयसर हो गई, बड़ी तस्कीन हो गई।
1: या खुदा,
2: नौश फरमाइए मियां,
1: जाइए
2: खाइए।
3: हम मशकूर हैं उन तमाम शोरा और सुखनवर हजरात के जो मुशायरे में शरीक हो रहे हैं।
0: हसरत मुशायरों में भी शरीक हुआ करते थे। मुशायरों के मुंतजमीन शोरा को सफर खर्च और कलाम सुनाने का मुआवजा बंद लिफाफे में पेश करते थे।
2: शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। गजल का आखिरी शेर है, मुलायजा फरमाए। है मश्के सुखन जारी, चक्की की मशक्कत भी।
4: वाह क्या बात है। है मश्के सुखन जारी,
2: चक्की की मशक्कत भी।
4: वाह,
2: एक तुरफा तमाशा है हसरत की तबीयत भी।
4: एक तरफा तमाशा है हसरत की तबीयत। क्या
0: बाद में मुंतजमीन ने उनकी खिदमत में लिफाफा पेश किया।
4: जना क्या खूब गजल कहते हैं आप।
1: मोहानी साहब, मुशायरे की रौनक बढ़ाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
2: जी शुक्रिया तो आप सब जनाब का, आपने इस नाचीज को मौका दिया।
4: आप इतनी दूर से यहाँ आए, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। ये लिफाफा हमारी तरफ से।
2: नहीं नहीं नहीं
1: मोहानी साहब, ये तो महज टिकट का खर्च है जनाब।
2: माफ कीजिए, मुझे सफर का खर्च नहीं चाहिए। नहीं, दरहकीकत बात यह है कि मैंने सफर पर कुछ खर्च ही नहीं किया है।
4: क्या
2: जी? एक गार्ड मुझे अपने साथ डिब्बे में बैठा कर ले आया।

0: नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। झारखंड उच्च न्यायालय ने आज जेएसएससी सीजीएल और सीडीपीओ परीक्षाओं की नियुक्ति रद्द करने के सरकारी आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश दीपक रोशन की अदालत ने मामले पर राज्य सरकार और जेपीएससी को 7 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज रांची स्थित आवासीय कार्यालय में हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड एचएसी के पुनरुद्वार के लिए गठित 6 सदस्यीय केंद्रीय संसदीय उप समिति के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री और केंद्रीय उप संसदीय समिति के सदस्यों के बीच एचएसी की वर्तमान परिस्थिति और इसके पुनरुद्वार से संबंधित भविष्य की कार्य योजनाओं को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। राजधानी रांची समेत राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर 22 और 23 अगस्त को मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए अंतिम विशेष शिविर लगाया जाएगा। शिविर का आयोजन सवेरे 10 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। शिविर में नए नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6 और परिवार का नाम एक ही केंद्र पर लाने के लिए फॉर्म 8 भरे जाएंगे। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली और राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर आज विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस पर जामताड़ा के उदलबनी स्थित वृद्धा आश्रम में मेडिकल जांच और जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। मौके पर शिविर के माध्यम से वृद्ध जनों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया और उनके स्वास्थ्य की जांच की गई। और रांची रेल मंडल के किता सिल्ली रेलखंड पर विकास कार्यों के कारण आज कई ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है कार्यक्रम इवनिंग मेलोडी।

लता मंगेशकर की आवाज में गाए 1942 ए लव स्टोरी फिल्म का ये नगमा संगीत तैयार किया है आरडी बर्मन ने और गीत के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने।

तो अभी आपने सुना दबंग फिल्म का ये नगमा। आवाजें थी राहत फतेह अली खां की और श्रेया घोषाल की। संगीत तैयार किया था साजिद वाजिद ने और गीत के बोल लिखे थे फैज अनवर ने। और प्रोग्राम का अगला नगमा हम आपको सुना रहे हैं फिल्म दंगल से। आवाज है अरिजीत सिंह की और संगीत तैयार किया है प्रीतम ने।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

तो अभी आपने सुना सोनू निगम और तुलसी कुमार को फिल्म दबंग 2 में, और प्रोग्राम का आखिरी नगमा हम आपको सुना रहे हैं अरिजीत सिंह और पलक मुच्छल की आवाजों में आशिकी 2 फिल्म से।

तो अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इवनिंग मेलोडी FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है हमारा अगला कार्यक्रम खेती बाड़ी।

कार्यक्रम खेती बाड़ी सुनने वाले सभी किसान भाई बहन के जोहार प्रणाम और राम राम। और उम्मीद करो ये किसान भाई बहन सब बढ़िया होथिन, स्वस्थ होथिन और मस्त भी होथिन। तो देखा किसान भाई बहन सब, आज बड़े दिन के बाद भेंट मुलाकात तोहनी संगे हो रहा है। हमारा नाम है श्याम सुंदर रजक और तोहनी संगे आज फिर से हम आलिए कार्यक्रम खेती बाड़ी में तरह तरह के जानकारी के साथ बात विचार करे ले। और सबसे पहले हमें जानो ये कि देखा कि अभी के समय में जो है किसान भाई बहन सब सतर्क रहेक है और बढ़िया तरीके से रहेक है। कहे कि अभी देखा कि समय ऐसा है कि इस समय में जो है से तरह तरह के कीड़ा मकोड़ा जो है से निकलो है और सांप बिच्छा जो है से बहुत ज़्यादा इस समय जो है से निकलो है और जगरा काटे से देखा कि बहुत बार बहुत ऐसा भी है कि मौत भी हो जाए। तो हम इनके सतर्क रहेक है और हम इनकी अपन घर द्वार के अगल बगल साफ सफाई करते रहेक है और हमेशा जो है से ध्यान दे के चले है। ये ना कि हम बे टाइम कहीं रात बिरात या तो फिर कहीं अंधेला में जिए तो इस तरह से ना जिए, और जब भी जिए तो खाली पैर कहीं ना जिए। और कोशिश करिए कि जब रात के समय हो है तो उस समय हमें ध्यान से अपन बेड के बढ़िया से झाड़ के और बाद मच्छरदानी लगा के और बाद ही हमें जो है से नींद के आनंद लिए। तो देखा किसान भाई बहन सब, शुरुआत में तो हमें आज बात कर लिए कि अपन पर कैसे ध्यान दिए, फिर और बाद देखा कि आज एगो जानकारी बढ़िया है कि पॉली हाउस में जो है से सब्जी की खेती करके हमें कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सको। ये देखा बहुत ही बढ़िया है और एक पर आज हम जो है से अपन जो है से जानकारी और तोहनी संगे जो है से बात विचार करबे और ये भी हमारे पास जानकारी, हम कोशिश करूँ कि अपन जानकारी अपन किसान भाई बहन तक जरूर पहुँचाइए। तो देखा कि पॉली हाउस की खेती जो है से बहुत ही बढ़िया खेती है और एक में फायदा का है कि कम जमीन में कम लागत में और कम सिंचाई में हमें बढ़िया उपज ले सको। ये तो देखा कि एकरा में ज़्यादा फायदा है का कि साल भर उत्पादन हम पॉली हाउस के जरिए जैसे अपन खेती से ले सको ही है, जैसे मौसम के प्रतिकूल के बावजूद भी जो सब्जी की खेती हम एकरा में कर सको ही है। कहे कि देखा कि पॉली हाउस जो है से ऊपर से प्लास्टिक रो है और किनारे किनारे जो है से ग्रीन कपड़ा से ढकल

हुआ है, ताकि जो है से ज़्यादा धूप के प्रभाव नहीं पड़े, ज़्यादा हवा के प्रभाव नहीं पड़े, ज़्यादा तूफान के प्रभाव नहीं पड़े, ज़्यादा बारिश के प्रभाव नहीं पड़े, और आवश्यकता अनुसार जो है जमीन के फसल ओकर में लगल रहा है ओकरा सब कुछ मिलो है। और फिर देखा क्रम का हुआ है कि अधिक उपज भी हुआ है, तो अधिक उपज के कारण का हुआ है कि नियंत्रित तापमान जैसे बतलिए भी नमी और प्रकाश के एकरम जी देखा कि आवश्यकता अनुसार जैसे हम इनके फसल के मिलो है, जैसे एकरम जे भी फसल लगल रू है। और फिर एकरम देखा का हुआ है कि गुणवत्ता पूर्वक हम इनके जी एकरम में फल है सब्जी है वो बढ़िया तरीके से मिलो है, कहे कि कीट और रोग दोनों एकरम जो है से बहुत ही कम लगो है, और मौसम से भी एकरम में बहुत अच्छा से बचाव हुआ है, काहे कि जब एक घेराव चारू दिन से रो है तो देखा और में कीट रोग जो है से और में घुसे के जो है से बहुत ही कम चांस हो जाए, और जब तनी मनी अगर कीट रोग लग भी जाए तो हमने अगर कीटनाशक दवा का अगर प्रयोग करो है तो देखा कि जब कीड़ा मकोड़ा हट जाए तो फिर ओकरा में दोबारा लगे के बहुत ही कम आशा हो जाए, और फिर मौसम से भी एकरा में बचाव बढ़िया तरीके से हुआ है। और ऑफ सीजन में भी जो है से हमें एकर से जो है से अच्छा आमदनी ले सको ये, जैसे किसान भाई बहन सब बहुत सोचते होते हैं कि अभी देखा कि टमाटर के सीजन ना है तो बाजार में कैसे मिल रहा है, अभी फूलगोभी का सीजन ना है तो बाजार में कैसे मिल रहा है, पत्ता गोभी का सीजन ना है तो बाजार में कैसे मिल रहा है, तो बहुत तरह से किसान भाई बहन सब सोच में डूब जाते हैं। लेकिन देखा कि सोचने में डूबे कोई जरूरत ना है, एकरम का है कि पॉली हाउस ही एक ऐसा खेती है कि ऑफ सीजन में भी हम जो है से एक से हम खेती के लाभ ले सको, जैसे टमाटर हो गलो, खीरा हो गलो, शिमला मिर्च हो गलो, फूलगोभी हो गलो, तो ये सब जो है से हमें लगा करके जो है से ऑफ सीजन में भी अधिक से अधिक आमदनी कमा सको ये निकाल करके। और फिर पॉली हाउस में जैसे बतलिए कि एक और बढ़िया का बात का है कि पानी के बहुत ही अच्छा बचत एकरा में हुआ है, जैसे अभी देखा पानी की जितना किल्लत हमें कि किसान भाई बहन सबके हो जाए गर्मी के दिन में, तो हम इनकी कोशिश करें चाहे कि पानी के भी बचत करिए, तो अगर हम देखा पानी की बचत का हो कि ड्रिप सिंचाई एकरा में बढ़िया से हुआ है और फर्टिगेशन से भी सिंचाई एकरा में बढ़िया हुआ है। तो ड्रिप इरिगेशन का हुआ है कि जड़ के पास जो है से आवश्यकता अनुसार जो है से हम इनके फसल के पानी मिलो है और ज़्यादा पानी ना मिले, और एक से बहुत ही फायदा हुआ है कि फसल के तो मिल जाए और बढ़िया फल भी और हम लग जाए, लेकिन खरपतवार जो अधिक उगे के कारण हो जाए है वो सिंचाई से हो जाए, तो सिंचाई जब जमीन आवश्यकता भरी कर लग रही है तो और हमें खरपतवार निकलते कहाँ से, तो हम इनके कोशिश करें चाहे कि पॉली हाउस की खेती करिए। और फिर एकरा में देखा कि का हुआ है कीट और रोग के भी नियंत्रण बहुत अच्छा तरह से हो जाए, जैसे बतलियों कि चारों दिन से जब एक घेराव रू है तो कीट मकोड़ा एकरा में घुसे के चांस बहुत कम हो जाए, तेरा में तो रोग लगे कि जो है क्षमता जैसे बहुत कम हो जाए, रोग नहीं लगे एकरा बहुत नाम मात्र के रोग एकरा में लगो है। और फिर कम भूमि में भी जो है से अधिक हम इन एकर लाभ ले सको है, अधिक आय एकरा में हम कर सको है, जैसे कि देखा कि इतना बढ़िया एकरा हुआ जैसे कि तू फूलगोभी लगेला, खीरा लगेला, टमाटर लगेला, शिमला मिर्च लगेला, तो कम भूमि में भी अगर तू लगा रहा तो हम देखें कि इतना बढ़िया गुणवत्तापूर्वक सब्जी हुआ है कि तू कम लागत में कम भूमि में अच्छा आमदनी एकरा में कमा सकुआ। फिर एकरा में देखा रोजगार के भी अवसर है, जब तू अच्छा खेती कर लगला तो अच्छा आमदनी जरूर कमेबा, तेकर में रोजगार के भी अवसर है। और फिर बाजार में भी एक जैसे बढ़िया मूल्य मिलो है, कहे कि देखा तू बाजार जब जाए आता देखा वहाँ बढ़िया सुंदर सुंदर सब्जी चुन के लगू है, तो पॉली हाउस में देखा कि जे भी सब्जी निकलू है सुंदर और सिलोल और बढ़िया निकलू है, तो बाजार में ओकर मांग भी जो है से बढ़िया रुआ और मूल्य भी जो है से बढ़िया मिलो है। तो किसान भाई बहन सब अभी कहीं ना जेबा अभी देखा कि बहुत चर्चा लेकर आ ली है हमें अभी और तोहनी संगे आज बात करवे बढ़िया तरीके से, तो अभी सबसे पहले सुनो ये हमें कुछ जरूरी संदेश।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: हाँ, तो देखा किसान भाई बहन से हमें सुना लिया जरूर संदेश, और हमें एक योजना के बारे में बात करो ये, और देखा कि बहुत ही बढ़िया योजना है इनके किसान भाई बहन सब खातिर की राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन। ये जो है देखा कि इतना बढ़िया योजना है कि किसान भाई बहन से अगर एक पर आधारित चलो

0: तो अच्छा से अच्छा लाभ कमा सकोतीन। देखा कि सतत कृषि के खातिर जैसे राष्ट्रीय मिशन भारत सरकार की एक योजना है और ये योजना के जो है से सन 2014-2015 में शुरू करल गए हैं और एक मुख्य उद्देश्य हल कि जलवायु परिवर्तन के अनुकूल अपन खेती बनावे के है और माटी के सेहत सुधारे के है और पानी के बचत भी करे के है और अपन बचत भी करे के है और बढ़ोतरी भी करे के है। देखा कि बहुत ही बढ़िया ये योजना के है तो एक आगे हम बात करो या कि एक मुख्य उद्देश्य का है तो देखा एक मुख्य उद्देश्य है कि माटी के जांच। सबसे पहले हमें माटी के जांच अपन जो है से करिए और पता करिए कि हमें के माटी में कौन पोषक तत्व के जो है से कमी है ओकरा हमें पूरा करिए और माटी जांच करावे से भी पता चल जाए। जब पोषक तत्व के पता चल जाए तो हमें के ये भी पता चल जाए कि हमें के माटी में जो है से कौन फसल लगावे से बढ़िया उपज होते है और जो पोषक तत्व के कमी है ओकरा हमें पूरा करे के कोशिश करिए। और फिर देखा क्या है कि जल प्रबंधन, जल प्रबंधन भी बहुत ही बढ़िया है कि हमें के जब देखा कि जब गर्मी के समय आ जाए तो जल के बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाए तो हमें के अपन तरफ से कोशिश करे के चाहिए कि जल के प्रबंधन बढ़िया तरह से करिए ताकि आवेला समय में गर्मी के समय में जब हमें के दिक्कत हो तो उस समय हमें के जल के दिक्कत ना हो। तो जल प्रबंधन में क्या है कि हमें ज़्यादा कोशिश करिए कि टपक बूंद के सिंचाई हमें करिए ताकि आवश्यकता अनुसार जो हम इनके जो है से पानी खर्च हुए ये ना कि ज़्यादा पानी बर्बाद हुए चाहे फुहारा विधि अपनाइए। ये विधि से कहा हुआ कि पानी के जो है से 90% बचत हो जाए और कहा कि 10% ही खर्चा होता है। देखा कितना बढ़िया बात है। और फिर देखा कि वर्षा आधारित खेत हम बनाइए, जैसे देखा कि अभी के समय है कि जे खेत में वर्षा हो रहा है वही खेत में हम जैसे बढ़िया तरीके से फसल लगा सको लेकिन ऐसा ना है। जैसे देखा कि अगर टाँट टुकुर तो बढ़िया तरीके से हम वर्षा आधारित खेत बनाइए ताकि ओकरा में हर समय में हम जैसे फसल ले सको ये। और फिर एक में उद्देश्य में कहा है कि एकीकृत खेती। देखा कि खेती तो हर किसान भाई बहन सब करबे करू थी लेकिन एकर अलावा जो है से हम इनकी कोशिश करे के चाहे कि कौन व्यवसाय अपनाइए ताकि जो है से हम इनकी एक तरह अलग तरह से जो है से आमदनी हो और खेती से भी रिलेटिव रहे। तो देखा अगर हम कहा है कि पशुपालन हम इन अपना सको ये, बागवानी कर सको ये, मछली पालन कर सको ये, तो देखा कि बहुत ही बढ़िया है कि अगर हम इन सब व्यवसाय अगर अलग से करो ये तो देखा कि खेती में अगर हम इनका हल्का फुल्का भी अगर कहीं दिक्कत हो जाए परेशानी हो जाए तो ये व्यवसाय अगर हम इन करो ये तो ओकर भरपाई हम इन कर सको ये और फिर अपन घर की स्थिति भी जो है से बहुत हद तक सुधार सको ये। और फिर देखा कि सतत विकास के अगर लाभ के हम बात करो ये किसान भाई बहन सब तो देखा कि लाभ भी बहुत है। तो एक में कहा कि प्राकृतिक संसाधन के सबसे पहले हमें संरक्षण करे के चाहिए जैसे जल है, मिट्टी है, वन है, तो एक हमेशा हम इनके संरक्षण करके रखे के चाहिए ताकि हम इनके दिक्कत ना हो, ना हम इनके माटी की दिक्कत हो, ना हम इनके फसल के दिक्कत हो, ना हम इनके अपने आप में किसी तरह के कोई दिक्कत हो। और फिर पर्यावरण संरक्षण करे भी बहुत ज़्यादा जरूरी है ताकि प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के जैसे हम इन कम कर सको ये। क्या कभी तू देखे तो वह कि बिना मौसम के पानी कभी कबाल हो जाए है, बहुत अधिक तेज धूप हो जाए, बहुत अधिक तेज हवा चलने लगो है, तो इस का है कि पर्यावरण संरक्षण अगर हम करो ये तो बहुत हद तक जो है से कर प्रभाव के हम कम कर सको ये। तो हम इनके कोशिश करे के चाहिए कि 2-4 गो 10 गो पेड़ हर साल हमें लगाइए जहाँ जहाँ हम इनके जमीन खाली पड़ल है, चाहे आर पर में जरूर जैसे कि फलदार वृक्ष अगर नहीं लगा रही है तो कहा महंगा वाला पेड़ जो लकड़ी महंगा बिकू है वो पेड़ के हमें जरूर लगाइए ताकि जो है से जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के हमें कम कर सको ये। और फिर देखा कि आर्थिक विकास के भी देखा कि बढ़िया थी है रोजगार और आय के नया अवसर पैदा हुए हैं इनके किसान भाई में सब जैसे रोजगार और आय के भी नया अवसर वगैरह में कर सको थी और गरीबी में भी कमी हुए, कमजोर वर्ग के जीवन स्तर में जितना भी सुधार गरीब आदमी सब अपने सुधार कर सको थी और स्वास्थ्य और शिक्षा में भी सुधार हुआ है। तो देखा कि हमें किसान भाई बहन सबके जितना भी है से बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा भी एक में मिल सको है। तो आगे हमें और भी बात करवाए देखा कि ओकर पहले हमें वो आली है भेंटवार्ता लेकर के और भेंटवार्ता देखे बहुत ही बढ़िया है कि धान और प्याज की खेती में हमें कैसे का करिए और कैसे पहले से तैयारी करके रखिए। तो एक बारे में जो जानकारी देवे हथिन वो हथिन संजय कुमार और हमें जो बातचीत कर लेते हथिन श्याम सुंदर रजक। तब चला सुनो जब बिना देर कुबेर कर ले जानकारी भरल बातचीत।
1: किसान भाई बंधु, आज हम आए हुए हैं चतरा जिला के ठोरी पर।

0: खंड और पिटखोरी प्रखंड के अंतर्गत आता एक ठो खौरा गांव और यहां पे देख रहे हैं कि एक ऐसे सफल किसान है जो लीज पे जमीन लेकर के जो है सो खेती बाड़ी कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं इनसे कि लीज आखिर लिए हैं तो जब खेती कर रहे हैं तो कितना बड़े पैमाने पे खेती करते हैं और उस खेती में क्या क्या ये उगाते हैं और अपना मार्केट कहाँ रखे हैं, अपना जो भी सामान उगाते हैं उनको कैसे मार्केट में बेचते हैं और लीज पे जो जमीन लिए हैं उस जमीन का भरपाई कैसे करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि जब लीज पे कोई भी अगर हमारे किसान भाई बंधु सब अगर जमीन लेते हैं तो उसमें जो है सो मेहनत काफी ज्यादा करना पड़ता है क्योंकि उनको दिमाग में लगा हुआ रहता है कि हमको इतना पैसा साल में देना है अगला किसान को जिसका जमीन है, तो उस हिसाब से मेहनत थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ता है। तो यही हिसाब से हम थोड़ा जानते हैं कि इनका घर कहाँ है और ये आए कहाँ से हैं और यहाँ पे जो है सो लीज पे जमीन लेके रह रहे हैं। तो आप अपना जो है सो गांव बताएं और अपना जो जहाँ से आए हैं उस जिला का नाम बताएं। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं?
1: हम बिहार सासाराम के रहने वाले हैं।
0: बिहार सासाराम के आप रहने वाले हैं, आपका नाम क्या है? शुभ नाम क्या बताइए?
1: संजय गुप्ता।
0: संजय गुप्ता, तो जो संजय जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि लीज पे जो जमीन आप लिए हैं लमसम कितना जमीन लिए हैं लीज पे?
1: 22 एकड़ है।
0: 22 एकड़ है, तो 22 एकड़ है, 22 एकड़ के जमीन जो आप लीज पे लिए हैं तो उस जमीन में आप कौन कौन सा फसल लगाते हैं?
1: देखिए सीजनी फसल लगता है।
0: सीजनी फसल
1: अभी देखिए मूंग लग गया।
0: जी हाँ,
1: मूंग के बाद मूंग और मक्का साथ में लग गया,
0: दोनों साथ में लगाते हैं। जी हाँ,
1: अब इसका सीजन समाप्त हो गया।
0: जी हाँ, को तो दिमाग में लगा हुआ है कि हमको जो है बड़े पैमाने पर जो है धान की खेती करना है।
1: हमारा जैसे कि 2-4 कट्ठा नहीं ना है।
0: जी जी,
1: हमको जैसे लीज पे लिए हैं तो हमको करके देना है उसको।
0: जी जी,
1: इसीलिए हम पहले कर दें कि कैसे पहले बारिश होगा तो सबसे पहले हम रोपा कर देंगे,
0: रोपा करके निकल जाएंगे। हाँ,
1: निकल जाएंगे।
0: अच्छा, जिसे आप बिछड़ा किए हैं संजय जी, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे किसान भाई बंधु सब जानने के लिए थोड़ा सा इच्छुक भी रहते हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि बिछड़ा करने का जो तरीका है वो क्या बढ़िया होना चाहिए, जो उसमें देखते हैं कि बहुत घास फूसा भी निकल जाता है।
1: घास फूसा तो निकलिए, तरह तरह के दवा का यूज होता रहता है।
0: जी हाँ, तो आप कैसे किए थोड़ा सा बताइए ना, आप शुरू से बताइए कितना जुताई किए, उसमें पानी कब घुसाया, बिछड़ा उसमें कैसे छीटे?
1: उसको पहले जब बारिश हुआ तो उसको 2 चांस पहले सूखे जोत दिए।
0: जिसमें बारिश हुआ तो उसमें सूखे जोत दिए,
1: थोड़ा थोड़ा घास निकल गया था जो निकलना था वो।
0: जी जी,
1: जोत कर उसको पानी से पहले पटा दिए।
0: जी,
1: पटाने के बाद गाड़ी से कादो कर दिए 2-3 चांस करके, चौकी दे दिए, एक दिन 12 घंटा छोड़ दिए उसको।
0: जी हाँ,
1: घास वाला दवा देकर।
0: जी हाँ,
1: जो नया घास जमीन से उगता है वो नहीं उगेगा।
0: जी हाँ,
1: उसको छोड़ दिए 12 घंटा, उसके 12 घंटा के बाद फिर मोरी डाल दिए,
0: फिर उसमें डाल दिए।
1: अब
0: फिर पानी डालने के बाद उसमें मोरी डाले है कि
1: पानी डालने के बाद पानी में पड़ता है वो,
0: पानी में पड़ता है, पानी डालने के बाद उसको पूरा कादो कर दिए। कितना बार जोते उसको?
1: 3 बार जोत दिए उसको
0: पानी डालने के बाद
1: 2 चांस उसको पानी में जोते, 1 चांस चौकी दिए।
0: जी जी,
1: चौकी देकर दवा देकर 12 घंटा उसको छोड़ दिए, जैसे मट्टी थरा हो गया अपन बैठ गया।
0: जी जी,
1: तब उसके बाद 12 घंटा के बाद बिहन
0: ऊपर से डाल दिए। अच्छा, बिहन जो आप डालते हैं, हमारे किसान भाई बंधु सब आप क्या देख रहे हैं कि थोड़ा सा नए तौर तरीके से खेती करते हैं कि धान को लाए फिर 12 घंटा की 24 घंटा फुलाते हैं?
1: 36 घंटा धान को फुलाए, 36 घंटा पानी में उसको फुला दिए, उसके बाद 36 घंटा के बाद उसको पानी से निकाल दिए।
0: जी जी,
1: सूती का बोरा में उसको पैक करके रख दिए,
0: सूती के बोरा में
1: रात भर उसको पैक करके छोड़ दिए।
0: जी,
1: छोड़ने के बाद वो अंकुर ले लिया।
0: जी,
1: रात भर में अंकुर गया, सुबह में डाल दिए उसको।
0: मैंने कि 12 घंटा आप छान के उसको 12 घंटा छोड़ दिए।
1: हाँ, छोड़ दिए
0: 12 घंटा में, वो जो अंकुर हो गया,
1: अंकुर आ गया, उसके बाद खेत में ले जाकर डाल दिए।
0: अच्छा, हाँ, इसका कोई लिमिट भी है कि कट्ठा में कितना बिहन करना है, कि अंदाज क्या होना चाहिए इसका? जैसे एक होता ना कि हमारे बहुत ऐसे किसान भाई बंधु क्या करते हैं कि उनको पता नहीं रहता है कि कितना बिहन कितना जमीन पे करना चाहिए, तो किसी का गाढ़ा हो जाता है, किसी का पतला हो जाता है, तो उस हिसाब से आपके पास क्या अनुमान है कैसे डालते हैं?
1: कट्ठा में देखिए कम से कम 15 केजी बिहन जाए।
0: कट्ठा में लमसम 15 केजी?
1: लमसम 15 से 20 केजी तक बिहन जाए कट्ठा में।
0: जी हाँ, कौन सा बिहन आप करते हैं अधिकतर?
1: हम लोग ये करते हैं, इसका क्या नाम है,
0: मैंने बाजार में बेचने वाला करते हैं
1: बाजारे से। हाँ,
0: ये खाने के लिए करते हैं,
1: खाने के लिए बाजार से बेचने वाले।
0: जी मैंने कि आप कोशिश करते हैं कि

0: मक्का भी तोड़ाई कर ली है, दोनों करके अब बाजार में बेच भी दिए। अच्छा, जैसे कि इतना खेती आप जब करते हैं संजय जी, 22 एकड़ का खेती आपके पास है, लीज पर लिए हुए हैं, तो इसके लिए सुविधा आप क्या क्या रखे, कैसे खेती करते हैं?
1: अब वहीं देखिए नहर का खेती है, नहर भी भागे भरोसे है, जब तक बारिश
0: जी हाँ अभी तो देख रहे नहर में पानी छोड़ा ही नहीं है,
1: पानी कहाँ है, चारों तरफ हमनी तरफ जाइए उधर बिहार तरफ, तो आपका नहर पूरा पानी दे दिया
0: जी,
1: इधर कोई किसान जागरूक ही नहीं है, तो एक किसान के करने से नहीं ना होगा जी।
0: जी जी, पूरा किसान को मैंने कि बोलना होगा कि पानी
1: बोलना होगा,
0: हाँ। पानी की कमी है तो पानी छोड़िए, देख रहे हैं कि अभी आपका नहर में पानी पूरा सूखा हुआ है,
1: तो अपना बोर से हम डाल दिए बिहन,
0: बिहन जो किए बोर से किए,
1: बोर से अपना किए।
0: तो संजय जी देखिए, जैसे कि सुविधा जैसे आपके पास बोले कि नहर नहीं है, लेकिन आज जोताई कोड़ाई के लिए देखें आपके पास मशीन है, तो एक मशीन हमको समझ में नहीं आ रहा जो पीछे रखा हुआ है आपका ट्रैक्टर का, वो कौन सा मशीन है?
1: वो फसल का, जैसे कि आपको मिर्ची हो गया, बैगन हो गया, बिलौती हो गया,
0: जी जी,
1: उसके लिए वो जोरा बनाता है, उसके ऊपर लगता है फसल,
0: मतलब जोरा बनाते है कि आपको कोड़ी चलाने का कोई
1: कोई
0: जरूरत नहीं है, तो आलू भी उसी से लगा लेते हैं?
1: नहीं, आलू उससे नहीं लगा,
0: आलू
1: के लिए उसको लगेगा लेकिन छोटा करना पड़ेगा,
0: छोटा करना पड़ेगा, मतलब बड़ा जोरा बनाता है,
1: बड़ा जोरा बनाता है।
0: चलिए, सुविधा तो आप बहुत ही अच्छी रखे हैं, और आप सासाराम बताए घर ना, सासाराम से बिहार, सासाराम से ला करके
1: भभुआ जिला के रहने वाले हम,
0: भभुआ जिला के जी, उतना दूर से ला करके आप यहाँ झारखंड के चतरा जिला में बसे हुए हैं, और एक खोरा गांव है जो नहर के किनारे जो है बसा हुआ है, और उसी में आप अपना काम कर रहे हैं। तो चलिए संजय जी, आप बहुत ही अच्छी जानकारी दिए, और आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि अभी देख रहे हैं आपका चौकी नीचे प्याज रखा हुआ है, तो अभी प्याज आप कितना लगाए थे लमसम?
1: प्याज लगल था आपको 400 ग्राम लगाए थे
0: अपने से बिहन करके 400 ग्राम, तो 400 ग्राम तो देखिए बहुत ही ज्यादा होता है, तो लमसम कितना कट्ठा में आपका प्याज लग गया था? 400 ग्राम
1: लग गया था, 7-8 कट्ठा में,
0: 7-8 कट्ठा में लग गया, तो कितना उसमें उपज कर सके? इस बार देखिए मौसम भी बहुत परेशानी
1: किया, मौसम तो ज्यादा, प्याज ठीक था लेकिन मौसम के लिए प्याज खराब हो गया, बारिश गिरते रह गया उस समय,
0: वही देखे
1: प्याज निकला नहीं, मट्टी में रह गया,
0: जी जी,
1: बहुत प्याज सारा गल गया,
0: गल गया, और पानी जो पड़ते रहने उसमें घास बढ़ते चला गया,
1: घास बढ़ते, घास ज्यादा दबा दिया,
0: दबा दिया, और उसको जमीन से निकालने में भी जो उसे परेशानी बहुत ज्यादा
1: हो गया।
0: तो चलिए, आप बहुत ही अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: चलिए, धन्यवाद।
0: हाँ, तो देखा किसान भाई बहन सभी, अभी हमें सुन लिए कि धान और प्याज की खेती की तैयारी हमें कैसे करिए, और ज़्यादा ध्यान एक पर कैसे दिए, और एक बारे में जो जानकारी देवे थल तीन बोलते हैं संजय कुमार, तो देखा कितना बढ़िया जानकारी है ले, और हमें आगे बात करूँ ये कि देखा कि आज के बाज़ार भाव के बारे में जानबे कि आज के बाज़ार भाव का है और मौसम की जानकारी का है, तो देखा कि आज के बाजार भाव जो है से देखा लाल आलू जो अभी है बाजार में 20 से 25 रुपये प्रति केजी चल रहा है, और सफ़ेद आलू जो है से 15 से 20 रुपये प्रति केजी चल रहा है, और प्याज की रेट अभी देखा 35 से 40 रुपये प्रति केजी है, और फूलगोभी जो है से 60 से 65 रुपये प्रति केजी है, और पत्ता गोभी जो है से अभी 40 45 50 इसी तरह बाजार में हर जगह भी चल रहा है, और पटल के दाम देखा अभी 30 35 40 इसी तरह से अभी बाजार में है, और भिंडी के दाम अभी देखा 30 से 35 है, और नेनुआ जो है से 20 से 25 रुपये प्रति केजी है, और कद्दू जो है से 15 से 20 20 से 25 इसी तरह से बाजार में जगह हर जगह पर चल रहा है, और हरा मिर्च के भी दाम देखा से 60 65 70 75 इसी तरह से अभी चल रहा है, और शिमला मिर्च के दाम जो है से 80 से 90 है, और गाजर जो है से 35 से 40 रुपये प्रति केजी है, और बीट जो है से 40 से 50 रुपये प्रति केजी है, और मूली के दाम देखा भी थोड़ा बहुत बाजार में बढ़ रहा है, वो है 25 से 30 30 से 35 इसी तरह से बाजार में भी है, और धनिया पत्ता भी दाम अभी बाजार में जो है से थोड़ा अधिक है, और 90 से 100 अभी चल रहा है, और अदरक के दाम भी अभी जो है से 100 से 150 रुपये प्रति केजी चल रहा है, और खीरा जो है से 30 से 35 रुपये प्रति केजी चल रहा है, टमाटर जो है से 35 से 40 है, और लाल साग और पालक साग जो है से 25 से 30 रुपये प्रति केजी चल रहा है, और आज की अगर मौसम के जानकारी के बारे में अगर जानिए तो आज के देखा कि अधिकतम तापमान जो है से 31 डिग्री सेल्सियस है, और न्यूनतम तापमान जो है से 25 डिग्री सेल्सियस है, और आर्द्रता जो है से 67% है, और मौसम पूर्वानुमान के अगर बारे में बात करें तो बारिश की संभावना जो है से 80% से 90% तक जो है से आज की है, और कल के अगर मौसम के बारे में हमें जानिए तो कल के अधिकतम तापमान जो है से 31 डिग्री सेल्सियस है, और न्यूनतम तापमान जो रहता है वो है 24 डिग्री सेल्सियस रहता है, और मौसम जो है से हल्का बारिश के भी संभावना कल बनल रहता है। तो देखा

किसान भाई बहन सब हमके जो है से समय समय पर बाजार भाव के भी जानकारी लेवे के बहुत ही ज्यादा जरूरी पड़ जाए, ताकि हमके पता चले कि आज के जो है से बाजार भाव का रहा है, फिर कल के हमके बाजार भाव का रहते है, वही हिसाब से हम अपन सब्जी के जो है से बाजार में बेच सको चाहे खरीदारी कर सको है। तो देखा कि आगे हम अब बात करबे किसान भाई बहन सब की बरसात के मौसम में जो है से गाय भैंस की देखभाल हम कैसे करिए और एक पर ध्यान हम कैसे अधिक से अधिक रखिए, ताकि हम इनके देखा कि गांव घर में जो है से हम इनके कहा कि पूंजी है गाय भैंस, ओकरे से हम जो है से अपन खेत के जुताई भी करो है और ओकरे से जमीन से दूध निकाल के जो है से अपन व्यवसाय भी करो है और बछड़ा बछिया भी बेच के जो है से पैसा की आमदनी हम करो है। तो देखा कि सबसे पहले हम के जो है से बरसात के समय में जो है से सूखा और साफ स्थान के जो है से ध्यान रखे चाहिए, जहाँ भी हम अपन गाय भैंस के बांधो ये सबसे पहले कि सूखा और साफ स्थान होवे के चाहिए। फिर ओकर बाद यह है कि बारिश से जो है से हमेशा हम इनके बचाव करे चाहिए, ना कि देखा कि जैसे कभी कभी हुए का कि दिन दिन भर पानी पड़ रहा है हल्का हल्का फुहारा गिर लगा हम बाहर छोड़ दिए, उस तरह से नहीं करे चाहिए। देखा कि उस तरह से रहे का हुए कि हल्का बुखार और सर्दी भी पकड़े के डर हो जाए और बीमार पड़े के डर हो जाए इनके गाय भैंस के। और फिर साफ पानी के ज़्यादा इस्तेमाल करे चाहिए, ना कि देखा कि बाहर बाल्टी पानी रखा है और फिर वही पानी जो है से हम अपन गाय भैंस के जो है से पिला दिए। उग्रस कहा तक देखा बरसात के समय हुआ कि तरह तरह के मक्खी कीड़ा मकोड़ा जो है से वो पानी में पड़ जाए फिर ले जाकर नीचे भी बैठ जाए, और गाय भैंस तो देखा बोलता धन है वो सब जो है से लगातार प्यासल रोते हैं तो पानी जैसे पी जाए उसका चलते कीड़ा मकोड़ा भी साथ ही पेट में चल जाए और फिर बीमारी होवे की भी डर हो जाए। तो हम इनकी कोशिश करे चाहिए कि ताज़ा पानी हमेशा अपन गाय भैंस के पास दिए पिए ले। और फिर देखा कि कीट और परजीवी के भी एकदम देखा कि नियंत्रण हमें के करे बहुत ज़्यादा जरूरी है। बरसात के समय में देखे तो हुआ कि मच्छर है मक्खी है बहुत ही ज़्यादा हो जाए, तो कर लेकर के हमें के हमेशा जो है से ध्यान देवे के चाहिए और दवा के हमेशा प्रयोग करते रहे के चाहिए कि मच्छर मक्खी से बचाव करिए। जैसे शाम के समय है उस समय में जरूर धुआं अपन गुहाल में लगाइए ताकि मच्छर मक्खी भाग जाए। और टीकाकरण भी जो है से समय पर करावे के चाहिए, जैसे अभी बरसात का समय है तो बरसात से पहले हमके जैसे टीकाकरण करवा लेवे के चाहिए, ताकि हमके जो भी बीमारी आवेला है हमके गाय भैंस में जैसे खुरपका हो गलो मुँहपका हो गलो, तो ये सब बीमारी से बचाव करे के एक उपाय है टीकाकरण। तो टीकाकरण हमके समय से करावे के चाहिए, और बीमार पशु जो है ओकरा जो है से स्वस्थ पशु से हमेशा हमके अलग रखे के चाहिए, ताकि स्वस्थ पशु भी बीमार न हो जाए अलग रखे के चाहिए। और संतुलित आहार देवे के चाहिए, जैसे समय से सबसे पहले चीज समय से तो खाना देना बहुत जरूरी है सुबह में और शाम में, और खाना के साथ जैसे संतुलित आहार देना बहुत जरूरी है, जैसे घट्टा हो गलो चोकर हो गलो खल्ली हो गलो, तो प्रयुक्त मात्रा में देना बहुत ही जरूरी हो जाए। और जो गाय भैंस जैसे दूध दे रहे थे उस समय इनके पर ध्यान देवे के जिस समय हम दूध निकालो भैया उसमें बढ़िया तरह से स्वच्छता से जैसे दूध निकाल लीजिए, ना कि तू जब गल्हा निकाले तो ठंडा पानी लेके गल्हा और फिर या तो फिर गंदे संदे उसी तरह से तू गाय लगाओ लगला, ये नहीं होवे के चाहिए। जब भी तू जा तो सुसुम गर्म पानी लेकर के थन के बढ़िया से धो लेवे के चाहिए, और फिर देखा ओकर पैर उन में कीचड़ लगल है तो वो भी धो देवे के चाहिए, ओकर बाद ही जो है से दूध निकाले के चाहिए। तो किसान भाई बहन सब आगे हम और भी चर्चा करवे और भी बात करवे, ओकर पहले में सुनो ये कुछ लोकगीत, तो चला सुनो ये बढ़िया एगो लोकगीत।

सुनो सुनो सब श्रोता वृंद, सुनो सुनो सब श्रोता वृंद, कुछ दिल के जख्म नॉर्मल हो तो प्रारब्ध है परधान जगत में, लाल बिहारी सच सुना दिल का। हो गया उदंड का है, हो गया उदंड का है सुदा।

तो अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती बाड़ी FM 102.1 MHz पर। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से।

0: नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। झारखंड उच्च न्यायालय ने आज जेएसएससी सीजीएल और सीडीपीओ परीक्षाओं की नियुक्ति रद्द करने के सरकारी आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश दीपक रोशन की अदालत ने मामले पर राज्य सरकार और जेपीएससी को 7 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। झारखंड रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण द्वारा रियल एस्टेट अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन पर जागरूकता के लिए 23 अगस्त को रांची में एक दिवसीय सेमिनार आयोजित किया जाएगा। इस सेमिनार में विशेषज्ञ बिल्डरों, प्रमोटरों, होम बायर्स और बैंक प्रतिनिधियों को परियोजना पंजीकरण, अधिकार दायित्व, वित्तीय प्रबंधन और शिकायत निवारण जैसे विषयों पर मार्गदर्शन देंगे। राजधानी रांची समेत राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर 22 और 23 अगस्त को मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए अंतिम विशेष शिविर लगाया जाएगा। शिविर में नए नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6 और परिवार का नाम एक ही केंद्र पर लाने के लिए फॉर्म 8 भरे जाएंगे। पलामू के मेदिनीनगर सदर थाना क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज के पास आज 4 थाना भवनों के निर्माण की आधारशिला रखी गई। पलामू प्रक्षेत्र के डीआईजी किशोर कौशल और पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी ने संयुक्त रूप से निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। धनबाद के कोयला नगर स्थित जुबली हॉल में आज अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ की ओर से मजदूर सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान मजदूरों के हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम अंगना, बस कुछ ही पल में।

कार्यक्रम अंगना सुन रही सभी बहनों को आपकी सखी वंदना अर्चना का प्यार भरा नमस्कार। तो बहनों, आप सभी कैसी हैं? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही मजे में होंगी और अच्छी होंगी। वैसे भी बहनों, लगातार 2-3 दिनों से बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से सभी जनजीवन परेशान थे। पर बारिश के बाद जब मौसम खुला और धूप निकली तो राहत भी हुई और गर्मी भी बहुत है। पर सबसे अच्छी बात है कि जब इस मौसम में लगातार बारिश के बाद जब धूप खिलती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। और वैसे भी बारिश का जो मौसम होता है वो काफ़ी सुहाना लगता है, चारों ओर हरियाली छा जाती है। और अभी सावन का महीना भी चल रहा है। सावन का जो महीना होता है वो हमें प्रकृति के साथ जोड़ता है। जैसे प्रकृति में चारों ओर हरियाली छा जाती है, ठीक उसी तरह इस सावन में

के महीने में महिलाएं भी जो है हरी चूड़ियां, हरी साड़ी, मेहंदी लगाकर प्रकृति के साथ अपना जुड़ाव महसूस करती हैं। साथ ही साथ इस मौसम में, सावन के मौसम में सावन महोत्सव भी मनाया जाता है, झूले डालकर झूले भी झूलती हैं, साथ ही साथ गीत संगीत का माहौल भी बनता है। तो क्यों ना हम और आप भी मिलकर इस माहौल में घुल मिल जाते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: वर्क फ्रॉम होम हाई सैलरी बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
4: भनो, ये बारिश का मौसम जो होता है काफ़ी सुहाना लगता है, पर इस मौसम में हमें अपने खान पान की का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि इस मौसम में हम क्या खाएं, क्या सावधानी रखें, क्योंकि अगर इस मौसम में ज़रा सी लापरवाही से हम बीमार हो जाते हैं, तो इसलिए इस मौसम में हमें अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि बहनों, जो हमारे शरीर होता है वो खान पान के अलावा मौसम और जलवायु का भी प्रभाव पड़ता है। आयुर्वेद में बताया गया है कि हमारा सेहत और मौसम में से गहरा संबंध होता है, इसलिए हमें हर मौसम के हिसाब से खान पान रखना चाहिए। जैसे कि अभी बारिश का मौसम चल रहा है, तो इस मौसम में नमी का जो स्तर होता है वो काफ़ी बढ़ा रहता है और हमारे शरीर में कई संक्रमण बीमारियों के प्रति संवेदनशील बना देता है, जिसकी वजह से हम बीमार हो जाते हैं। और इस मौसम में पाचन शक्ति जो होता है वह भी कमज़ोर हो जाता है और संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए इस मौसम में हमें खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस मौसम में हमें पानी जो होता है हमेशा उबला हुआ उबाल कर ठंडा करके ही पानी पीना चाहिए, या तो फिर वाटर प्यूरिफाई है तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि पानी से बहुत जल्दी हम बीमार पड़ते हैं। इसलिए हमें इस मौसम में खास करके पानी का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। साथ ही इस मौसम में हमें घर पर बने हुए ताज़ा और गर्म भोजन करना चाहिए जो सुपाच्य हो, क्योंकि इस मौसम में अगर हम भारी भरकम खाना खाते हैं तो जल्दी पचता नहीं है और इससे हमारा पेट खराब हो जाता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो भी खाना हम खाएँ घर पर बना हुआ खाएँ, गर्म खाना खाएँ, ताज़ा खाना खाए। साथ ही साथ खाना को भी हमेशा हमें ढक कर रखना चाहिए, क्योंकि इस मौसम में कई तरह के कीटाणु जो होते हैं मक्खी मच्छर हो जाते हैं, तो इसलिए ऐसे खुला खाना हमें नहीं छोड़ना चाहिए। साथ ही साथ जो खुले हुए स्ट्रीट फूड जो मिलते हैं वो सब पर भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें वो सब खाना जो होता है कम से कम खाना चाहिए, क्योंकि खुले में जो खाना रखा रहता है या स्ट्रीट फूड पे रहते हैं अगर ध्यान नहीं देते हैं तो उस पर बहुत सारे मक्खी मच्छर बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से अगर हम खा लेते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं। साथ ही साथ इस मौसम में कटे हुए फल, यानी अगर कोई फल को काट के घर पर भी अगर हम काट के फल को खुला छोड़ दिए तो उस फल को हमें नहीं खाना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि जो भी फल है तो उसे ढक के रखें, और साथ ही साथ इस मौसम में हरे पत्तेदार सब्जियों से भी हमें परहेज करना चाहिए। इस मौसम में हरे पत्तेदार सब्जी, क्योंकि बारिश का मौसम होता है, बारिश होती है तो कई बार होते हैं जो मैंने इतने छोटे कीटाणु होते जो हमें दिखाई भी नहीं देते हैं नग्न आँखों से, तो वो सब जो होते हैं पत्ते में चिपके रहते हैं, इसलिए इस मौसम में हमें वो हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी चाहिए, परहेज करना चाहिए। और इस मौसम में हमें सूप, खिचड़ी, दलिया और उबली हुई ताज़ी सब्जियाँ खाना चाहिए, क्योंकि ये सब सुपाच्य होते हैं और आसानी से पच जाते हैं, तो इन हमें ऐसे ही अपने खाने में ऐसे ही शामिल करना चाहिए इन खानों को। साथ ही साथ इम्यूनिटी पावर हमारा इस मौसम में घट जाता है, तो इसे बढ़ाने के लिए खाने में हल्दी, अदरक, लहसुन, काली मिर्च का नियमित रूप से इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही साथ इस मौसम में हर्बल चाय कोशिश करनी हमें चाहिए कि हम पिए, या फिर अगर हम चाय पीते हैं तो उसमें तुलसी अदरक का इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर काढ़ा बनाकर पी सकते हैं, जिससे भी हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ता है। और इस मौसम में बच्चों को भी वो काढ़ा पिलाना चाहिए जिससे कि वो बीमार ना पड़े, और अदरक का भी सेवन करना चाहिए, क्योंकि एक तो अदरक गर्म होता है तो उससे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है और शरीर में भी गर्माहट बनी रहती है और ख़ास करके इस मौसम में जो होते मच्छर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए खास करके शाम के वक्त बच्चों को भी और खुद भी फुल बाजू वाले कपड़े पहनने चाहिए जिससे कि मच्छर हमें ना काट सके। साथ ही साथ सोने के वक्त मच्छरदानी का भी प्रयोग जरूर करना चाहिए या फिर जो घर की खिड़कियां होती हैं उन पर जाली लगा देना चाहिए क्योंकि शाम के ही वक्त जो होते हैं मच्छर घर में आते हैं। तो हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हम बच सकते हैं। और साथ ही साथ इस मौसम में जो बाहर के गोलगप्पे होते हैं, चाट पकौड़े या बाजार की तली भुनी चीज़ों से भी हमें परहेज करना चाहिए। साथ ही कटे हुए या खुले हुए में रखे हुए फल नहीं खाने चाहिए। साथ ही साथ हमें खाने से पहले अच्छे से हाथ धोना चाहिए। जब भी हम कहीं बाहर से आते हैं तो हमें अच्छे से हाथ धोकर ही खाना खाना चाहिए। बच्चों को भी ये आदत डालनी चाहिए कि वो भी जब भी बाहर से आए तो खाना हाथ धोकर ही खाना खाए। साथ ही साथ अगर बच्चों को जुकाम होती है तो कोशिश करना चाहिए कि घर में अगर किसी को भी जुकाम होता है तो जब भी हम छींकते हैं तो हमें हमेशा टिश्यू या रुमाल का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे जो छींकने समय जो हमें हमारे संक्रमण या जो निकलते हैं वो किसी और को ना लगे, इसलिए इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। और जैसे कि हमने कहा कि इस मौसम में हमें पत्तेदार सब्जियाँ नहीं खानी चाहिए, जैसे पत्ता गोभी हुआ, पालक हुआ या साग वगैरह इस मौसम में नहीं खाना चाहिए क्योंकि इस मौसम में इनमें कई कीड़े या बैक्टीरिया हो सकते हैं, तो इसलिए हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और साथ ही साथ इस मौसम में हमें समुद्री भोजन से भी परहेज करना चाहिए क्योंकि मानसून का जो मौसम होता है वह मछलियों का प्रजनन काल का समय होता है, इसलिए इस मौसम में सी फूड खाने से भी हमें बचना चाहिए क्योंकि सी फूड खाने से कई तरह की पेट की गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। तो अगर हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो इस बारिश का मौसम का हम लुत्फ़ भी उठा सकेंगे। हम आगे आपसे और भी बातें करेंगे मगर आप भी आइए सुनते हैं भेंट वार्ता। सिलाई कढ़ाई का कार्य स्व रोजगार का बढ़िया जरिया है, बता रही हैं चांदनी प्रसाद, उनसे बातें कर रही हैं ममता प्रसाद।
5: आज महिलाएं घर से निकलकर बाहर आत्मनिर्भर होने की कोशिश कर रही हैं और इसी क्रम में महिलाएं जैसे कई घरेलू काम करके आमदनी कमा रही हैं, तो आइए आज इस कार्यक्रम में आपकी मुलाकात करवाते हैं चांदनी प्रसाद से। तो चांदनी जी, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है और नमस्कार।
6: नमस्कार
5: चांदनी जी, सबसे पहले तो हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आप क्या करती हैं।
6: हम गृहिणी हैं और साथ में सिलाई कढ़ाई भी करते हैं।
5: ये तो बहुत अच्छी बात है, आप गृहिणी हैं, अपना घर संभालती हैं, घर में आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, घर के और अन्य सदस्य हैं उनकी देखभाल करती है, साथ में आप सिलाई कढ़ाई का भी काम करती हैं जिससे आपके परिवार की आमदनी होती है और परिवार को चलाने में इस आपकी मदद मिल जाती है। तो हम यहाँ ये जानना चाहेंगे कि ये इस काम की शुरुआत आपने कब से की है।
6: हम मैट्रिक का एग्जाम दिए थे, उसके बाद मम्मी बोली सिलाई सीख लो, तो सीख लिए, फिर अच्छा लगने लगा तो सिलाई करने लगे, फिर शादी हुई तो थोड़ा बहुत छोड़ना पड़ा बीच में, फिर जब हस्बैंड साथ रहने लगे तो थोड़ा परेशानी आने लगा घर चलाने में, तो हम फिर सिलाई का काम स्टार्ट कर दिए।
5: ये तो बहुत अच्छी बात है चांदनी जी। अच्छा, आप बता रही हैं आप मैट्रिक की उसके बाद से सिलाई का काम शुरू की है।
6: सिलाई के साथ पढ़ाई भी किए, इंटर किए, बीए किए।
5: बहुत अच्छी बात है, आप ग्रेजुएट हैं फिर भी सिलाई के काम को जारी रखा है, इसमें आपको क्या फायदे नजर आते हैं सिलाई का काम?
6: यही हुआ कि घर बैठकर बच्चे लोग का भी देखभाल हो जाता है और साथ में कुछ पैसा भी आ गया सिलाई करके, कहीं जाना नहीं पड़ा।
5: बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये सिलाई के काम की शुरुआत आपने कैसे की है इसके बारे में थोड़ा विस्तार से हमारी बहनों को बताइए जो समझती हैं कि घर में रहने के साथ वो कोई दूसरा काम नहीं कर पाती हैं। कुछ महिलाओं का ये मानना है कि घर का काम ही इतना ज्यादा होता है कि उन्हें समय ही नहीं मिल पाता है कि वो परिवार के आर्थिक वृद्धि के लिए कुछ सोच सकें, कुछ आमदनी के लिए सोच सकें। तो वैसे में आप क्या चाहेंगे, अपनी परेशानियों को थोड़ा हमारे साथ साझा कीजिए, हमारी जो बहनें और रेडियो पर आपके कार्यक्रम को सुन रही हैं उन्हें थोड़ा सा उत्साह मिले काम करने का, इसलिए हम चाहेंगे आप अपनी परेशानियां हम सबके साथ साझा करें।
6: घर बैठे ऐसे भी सुबह काम हो जाने के बाद 12 बजे के बाद मतलब महिलाएं बैठी ही रहती है, इधर उधर ना जाके घर में आराम से कपड़ा सी लिए, कुछ पैसा भी आ जाएगा, साथ में घर में बच्चा लोग भी देख, छोटा बच्चा है तो देखभाल कीजिए, बीच बीच में टाइम निकाल के सिलाई भी कीजिए, फिर वही सब कीजिए आप, फिर इधर उधर थोड़ा हो गया जाना आना, इधर थोड़ा उतना करिए घूमिए फिरिए भी, लेकिन बीच में सिलाई भी कीजिए, पैसा भी आएगा, घर चलने में भी हेल्प हो जाएगा, हस्बैंड का भी हेल्प हो जाएगा।
5: आप सही कह रही हैं कि महिलाओं के पास काफी वक्त होता है जिसमें वो इधर उधर की बातें करती हैं, बैठ करके समय बिताती हैं, उससे अच्छा है कि वो कुछ भी इस तरह के काम करें। चांदनी जी, शुरुआत जब आपने की थी इसकी, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि शुरुआत आपने कैसे की थी।
6: हाँ, जब हम एक बार हुआ कि हम ब्लाउज साड़ी खरीदे और कम टाइम था, तीज का टाइम था, इतना जल्दी कोई सिल नहीं देता, तो हम सोचे खुद ही सिल ले, मशीन भी नहीं था अवेलेबल घर में, तो हम दूसरे के यहाँ जाके सिले, लेकिन वहाँ हमको बहुत अच्छा नहीं लगा दूसरे के यहाँ सिलने में, तो फिर हम खुद मशीन खरीदे, फिर खुद सिलने लगे, फिर अगल बगल की महिलाएं भी बोली अच्छा सिलती हो, तो वो लोग भी फिर सिलवाने लगी, फिर धीरे धीरे करके मेरा काम बढ़ने लगा, पैसा आने लगा, फिर हमको खुद अच्छा लगने लगा, पैसा आया जब हाथ में
5: बिल्कुल,
6: तो फिर हम खुद काम धीरे धीरे बढ़ाए, फिर इधर उधर महिलाओं को सिखाने भी लगे, जिससे और मेरा मतलब काम बढ़ता चला गया आगे की ओर, फिर हम सिलाई करने के साथ सिखाने भी लगे, आमदनी भी अच्छी होने लगी।
5: चांदनी जी, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि आप खुद अपना ब्लाउज सिलने के लिए आपको दूसरे के यहाँ जाना पड़ा शुरुआत में, क्योंकि आपके पास मशीन नहीं था, और यहीं से आपकी ये जो सिलाई का काम है उसकी शुरुआत हो गई। तो अभी आप क्या क्या बना रही हैं वो बताइए।
6: अभी लेडीज की सारे चीजें बनाती हूँ, ब्लाउज है, पेटीकोट है, डिजाइनर ब्लाउज भी हो गया, सूट सलवार हो गया, आजकल जो भी सूट में जो कटिंग आ रहा है वो सब बनाती हूँ, साथ में लहंगा भी बनाती हूँ, और थोड़ा बहुत स्कूल ड्रेस भी बना लेती हूँ, और बच्चे का भी कपड़ा बनाती हूँ कुछ कुछ।
5: चांदनी जी, अभी आपने मुझे लहंगा ये दिखाया, बहुत ही खूबसूरत लहंगा था, आप का जो ये डिजाइनर सूट है वो भी मैंने देखा है, और डिजाइनर ब्लाउज भी आप बहुत खूबसूरत बना लेती हैं। चांदनी जी, आप बता रही हैं कि आप डिजाइनर लहंगा भी बना लेती हैं, तो अभी तो लहंगे की कीमत मार्केट में मुझे लगता है जहां तक कि बिल्कुल सिंपल भी लहंगा हो तो 4000 से नीचे नहीं मिलता है, तो हम इसमें ये जानना चाहेंगे कि आपका मुनाफा कितना होता होगा। जैसे इसमें मान लीजिए एक सिंपल लहंगा आपको बनाने का ऑर्डर आया, तो इसमें लागत जो है वो कितनी होती है और मुनाफा कितना होता है उसके बारे में बताइए।
6: सिंपल लहंगा अगर हम खुद बनाएंगे तो सिंपल बनाएंगे तो 2000 तो खर्च आ ही जाएगा, और फिर उसमें आप चुनरी उनरी अगर खुद खरीदिएगा तो वो भी हो जाएगा, ब्लाउज बनाइए डिजाइनर लहंगा के साथ में लैस उस जो लाना पड़ता है, तो अगर हम किसी और का बना रहे हैं तो थोड़ा बहुत उसमें भी फायदा है, और वही हो गया लहंगा के लिए जितना आपको जैसा घेरा चाहिए उस हिसाब से कपड़ा मंगवाते हैं हम, अपना ग्राहक को बोलते हैं इतना लेके आइए इतना में हम करेंगे, उसके बाद जो हम अपना बेनिफिट देखते हैं उस हिसाब से उसको रेट बताते हैं, बनने के बाद कितना खर्च आया, और तो मतलब जैसा हम जाएंगे गोटा खरीदने लैस खरीदेंगे तो जैसा पैसा लगाएंगे उस तरह का सामान होगा, तो ग्राहक अगर अपना पसंद से ला के देता है तो भी लगाते हैं, खुद बोलता है लगाने तो खुद भी लगा देते हैं, उसी में देख लेते हैं जितना भी हो।
5: जी जी, यानी कि इसमें कहिए कि एकदम डबल फायदा है ना, अगर मान लीजिए हम 2000 इसमें लागत लगाते हैं तो 4000 हमको, चूंकि शादी के सीजन में इसका डिमांड काफी होता है इसलिए ज्यादा कीमत आपको मिल जाएगी। और उसी तरह रहा ब्लाउज की बात, तो ब्लाउज का डिमांड तो हर वक्त होता है, शादी का सीजन हो या ना हो।
6: जी हाँ, ब्लाउज का तो डिमांड हमेशा होता रहता है, आजकल टेलर पास देख लीजिए धोती पैजामा का 250 मांगता है, जबकि हम लोग घर में 150 में बनाते हैं।
5: जी बिल्कुल,
6: तो हम लोग 150 में बनाते हैं तो 150 से 200 भी बोल सकते हैं, उसमें भी हम लोग का फायदा है
5: जी।
6: अच्छा सिलेंगे तो जरूर बेनिफिट होगा।
5: तो चांदनी जी, इसका मतलब ये है कि महिलाएं अपने समय का सही उपयोग कर सकती हैं, घर में रहते हुए भी वो आमदनी कमा सकती हैं, और आज तो सिलाई की इतनी डिमांड है कि महिलाओं को कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर कहीं पता चल जाता है किसी महिला को कि वहाँ सिलाई हो रहा है तो उनके पास ऐसे ही डिमांड आ जाती है। अक्सर हम देखते हैं कि टेलर के पास जब त्योहार में या शादी ब्याह में हम जाते हैं तो वहाँ पर वो लेते नहीं है, जल्दी देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनके पास इतनी डिमांड होती, इतना सामान पहले से ही बुक होता है कि वो अगला लेना नहीं चाहते हैं। और वैसे में अगर किसी घर में कोई महिला बहुत अच्छी तरह से बना रही है कोई कपड़े और किसी को एक बार पसंद आ जाए तो दोबारा वो फिर टेलर के पास भी नहीं जाना चाहती है, वो उसी महिला के पास जाती है जो सिलाई करती है। तो आप ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हम सुनते हैं कि इस कार्यक्रम को जो महिलाएं सुन रही होंगी उन्हें भी आपकी बातों से कुछ जरूर ही प्रेरणा मिलेगी, वो घर बैठे काम कर सकती हैं और आमदनी अपने परिवार की बढ़ा सकती हैं। तो चांदनी जी, इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
6: धन्यवाद।
4: तो भी आप लोगों ने सुना, भेंट वार्ता सिलाई कढ़ाई का कार्य स्वरोजगार का बढ़िया जरिया है, बता रही थी चांदनी प्रसाद और उनसे बातें कर रही थी ममता प्रसाद। बहनों, गर्भावस्था का जो समय होता है महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है और इस समय महिलाओं का ज़्यादा ध्यान रखने की भी जरूरत होती है, क्योंकि माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहे ये बेहद ज़रूरी है। तो इस दौरान आयरन और कैल्शियम और जरूरी पोषक तत्वों का क्या महत्व होता है, ये बहुत ही जरूरी होता है जो गर्भावस्था के दौरान आयरन, कैल्शियम और अन्य पोषक तत्व माँ और शिशु दोनों के स्वास्थ्य विकास के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। आयरन जो होता है शरीर में खून की कमी यानी एनीमिया से बचाता है, बच्चे तक ऑक्सीजन पहुंचाता है और समय से पहले प्रसव के खतरे को भी कम करता है, क्योंकि जो आयरन होता है वह ऐसे भी महिलाएं के शरीर में प्रेगनेंसी के में महिलाओं के शरीर में सामान्य तौर पर 40-50% ज़्यादा खून की जरूरत होती है। तो आयरन हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है और इसके वजह से बच्चा का सही जो होता है पोषण पा सकता है, साथ ही साथ एनीमिया से भी बचाता है जिससे थकान, चक्कर या कमजोरी जैसी जो समस्याएँ होती हैं वो कम होती है। इसीलिए आयरन नियमित तौर पे हमें आयरन की गोली जो होती है वो प्रेगनेंसी के दौरान जरूर खानी चाहिए, साथ ही साथ बच्चे के मस्तिष्क और नर्वस सिस्टम के लिए भी बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि आयरन की कमी से बच्चों का विकास जो होता है वो धीमा हो जाता है और जन्म के समय उनका वजन भी कम होता है। तो इसलिए इस बहुत ही जरूरी होता है कि इस प्रेगनेंसी के दौरान आयरन की गोली का नियमित रूप से हमें इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह से हमें खानी चाहिए, साथ ही साथ डिलीवरी के दौरान जो खून की कमी होती है उससे भी बचता है और इससे माँ को का जो जान का खतरा है वो कम रहता है, क्योंकि अगर खून की कमी रहेगी तो जान पर का खतरा बढ़ जाता है, तो इसलिए बेहद ज़रूरी होती है। और साथ ही साथ जो होता है वो कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम होता है बच्चों के हड्डी और दांतों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, मांसपेशी और तंत्रिका तंत्र के लिए विकास में भी काम करता है, साथ ही साथ माँ की हड्डियों को भी कमज़ोर होने से बचाता है। तो इसलिए बहुत ही ज़रूरी होता है कि गर्भावस्था के दौरान कैल्शियम गोली जो होता है वो जरूर खानी चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों के हड्डियों और दांतों का अहम विकास में अहम भूमिका निभाता है, साथ ही साथ जो होता है माँ के हड्डी के लिए जो होता है वो बहुत ही जरूरी होती है, क्योंकि जो बच्चा अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए माँ की हड्डियों से कैल्शियम खींचना शुरू कर देता है, तो इसके लिए माँ की हड्डियाँ और दांतें कमज़ोर हो सकती है, साथ ही साथ और भी कई ऐसी समस्याएँ का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए गर्भावस्था के दौरान जो होता है कैल्शियम जरूर खाने चाहिए, साथ ही फॉलिक एसिड भी, यह भी बच्चा के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जन्मजात विकारों को दूर करता है। प्रोटीन जो है कोशिकाओं के निर्माण और गर्भ में पल रहे बच्चों की ग्रोथ में मदद करता है। विटामिन डी जो है ये शरीर के कैल्शियम सोखने में सहायता करता है जिससे बच्चे का ढांचा मजबूत बनता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान इन प्रोटीन का जरूर, हम पोषक तत्वों का जरूर इस्तेमाल करना चाहिए ताकि माँ और बच्चे दोनों स्वस्थ रहें। और घड़ी की सुइयां बता रही कि आपसे विदा लेने का भी वक्त हो गया है, तो इसी के साथ कार्यक्रम अंगना से अपनी सखी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

तो अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अंगना। घड़ी की सुइया में संध्या के 6:31 हो रहे हैं। पेश है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

कभी आपने सुना आशा भोसले को फिल्म चरस में, और आइए आगे आपको सुना रहे हैं आशा भोसले और यशोदास की आवाज़ में गाए फिल्म छोटी सी बात फिल्म का ये

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

कभी आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार को फिल्म तीन देवियां में। और आइए प्रोग्राम का आखिरी नगमा आपको सुना रहे हैं, आवाजें हैं सोनू निगम और श्रेया घोषाल की।

और इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं पे समाप्त होता है। तो भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत FM 102.1 MHz पर। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या 7 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और 7:10 पर आप सुनेंगे जिले में आजकल हमारे रांची केंद्र से। हमारे अगले प्रसारण के लिए कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मैं रामकर मंडल, ग्राम पंचायत तारावत, ब्लॉक मोहनपुर, जिला देवघर, झारखंड का निवासी हूं। मैं पिछले 3 सीजन से अपनी फसलों का बीमा करा रहा हूं। इस योजना से जुड़कर मैं अपने को खुश और चिंता मुक्त महसूस कर रहा हूं। सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वे अपना फसल बीमा जरूर कराएं।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। जेपीएससी के बाद अब सीजीएल और सीडीपीओ पद के लिए चयनित अभ्यर्थियों को भी हाईकोर्ट से मिली राहत, सरकार के आदेश पर लगाई रोक। छात्र संगठनों ने राज्य सरकार पर न्यायालय में मजबूती से पक्ष नहीं रखने का लगाया आरोप। 24 अगस्त से भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा निकालने का ऐलान। एचएससी के पुनरुद्धार के लिए गठित संसदीय उप समिति के सदस्यों ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात। वर्तमान स्थिति और भविष्य की कार्य योजनाओं पर हुई चर्चा। सीईओ ने एसआईआर के विशेष शिविर को लेकर की राजनीतिक दलों के साथ बैठक। 22 और 23 अगस्त को सभी बूथों पर लगेगा विशेष शिविर। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र में अत्याधुनिक वर्षा मापक उपकरण डिस्ड्रोमीटर स्थापित। 23 अगस्त को पलामू समेत 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड उच्च न्यायालय ने आज जेएसएससी सीजीएल और सीडीपीओ परीक्षाओं की नियुक्ति रद्द करने के सरकारी आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश दीपक रोशन की अदालत ने मामले पर राज्य सरकार और जेपीएससी को 7 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी।
1: एक तो फास्ट ट्रैक मोड पे इस बात को सुना जाएगा, इतने सारे स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, जल्द से जल्द न्याय किया जाए। कोर्ट का ये मंतव्य है कि 15 सितंबर तक, जो अगली डेट ऑफ हियरिंग है, उसके पहले तक सरकार को ये डायरेक्शन दिया गया है कि वो जल्द से जल्द अपना जवाब दायर करे। कोर्ट ने बोला है कि अभी कोई टर्मिनेशन ऑर्डर्स अपॉइंटमेंट्स का जो हो चुका है उस पर पास नहीं किया जाएगा, उस पर स्टे है।
0: इससे पहले कल जेपीएससी की 11वीं से 13वीं और एक अन्य नियुक्ति को रद्द करने के सरकारी आदेश पर उच्च न्यायालय ने अंतरिम रोक लगाई थी। इधर छात्र संगठनों ने उच्च न्यायालय के फैसले के बाद राज्य सरकार के प्रति नाराजगी जताई है। छात्र आंदोलनकारी देवेंद्र नाथ महतो ने आज प्रेस वार्ता में सरकार पर न्यायालय में मजबूती से पक्ष नहीं रखने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि छात्रों की मांगों को लेकर आगामी 24 अगस्त से रामगढ़ के नेमरा से भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा निकालने का ऐलान किया।
2: नेमरा से दिन सोमवार से हम लोग भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा का शुरुआत करने जा रहे हैं। कोर्ट में अपना कमजोर दलील देकर के फिर से राज्यवासियों को हराने का जो मंशा रखते हैं, जो अगला तारीख है उस दिन अगर किसी भी प्रकार का मजबूती से रखने में अगर कोताही बरती तो आगे हम लोग मुख्यमंत्री आवास घेराव करके अनिश्चितकालीन झारखंड में चक्का जाम करेंगे।
0: जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में हुई धांधली और गड़बड़ियों को लेकर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में सरकार पर जनता और छात्रों की आंखों में धूल झोंकने का आरोप लगाते हुए कहा कि परीक्षा में धांधली का भंडाफोड़ होने के बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों को संरक्षण दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज रांची स्थित आवासीय कार्यालय में हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड एचएससी के पुनरुद्धार के लिए गठित 6 सदस्यीय केंद्रीय संसदीय उप समिति के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री और केंद्रीय उप संसदीय समिति के सदस्यों के बीच एचएससी की वर्तमान परिस्थिति और इसके पुनरुद्धार से संबंधित भविष्य की कार्य योजना को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने खान और खनिज संशोधन विधेयक को झारखंड जैसे राज्यों की तकदीर और तस्वीर बदलने वाला ऐतिहासिक कदम बताया है। उन्होंने रांची में प्रेस वार्ता में कहा कि यह विधेयक राज्यों के हितों को मजबूत करने के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।
3: KMMDR बिल राज्य की तकदीर और तस्वीर बदलने वाला है, गांवों की तकदीर और तस्वीर बदलने वाला है, लाखों लाख लोगों को रोजगार देने वाला है, चाहे ट्रांसपोर्ट के रूप में, होटल के रूप में, और अवैध माइनिंग पे लगाम। झारखंड तेजी से बढ़ेगा क्योंकि झारखंड में ईश्वर ने हमको सब कुछ दिया है।
0: इधर

0: प्रदेश कांग्रेस ने खान एवं खनिज संशोधन विधेयक को लेकर चरणबद्ध आंदोलन की रूपरेखा तैयार की है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने आज रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस विधेयक के विरोध में 27 अगस्त को जिला मुख्यालय में पार्टी की ओर से प्रदर्शन किया जाएगा।
1: खान खनिज संशोधन विधेयक 2026 जो केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में पारित की गई है, इसका मतलब है कि केंद्र की सरकार यहाँ सौतेला व्यवहार कर रही है, यहाँ की हितों के साथ अनदेखी कर रही है। तो हम लोग इसका जोरदार विरोध करेंगे और इसका पहला चरण हम लोगों ने 27 अगस्त से प्रारंभ किया है।
0: राज्य मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक आगामी 25 अगस्त को रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में होगी। बैठक में राज्य हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज रांची में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर SIR के तहत कल से मतदान केंद्रों में लगने वाले विशेष शिविर को सफल बनाने की अपील की है। श्री कुमार ने बताया कि राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर 22 और 23 अगस्त को सभी बूथों पर विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। उन्होंने सभी पात्र भारतीय नागरिकों से इस विशेष शिविर में पहुंचकर अपना नाम दर्ज कराने की अपील की है।
2: आने वाला शनिवार रविवार को सभी पोलिंग स्टेशन में एक विशेष कैंप आयोजन किया जा रहा है ताकि झारखंड का सभी पात्र भारत नागरिक, इनका उम्र 1 अक्टूबर 2026 में 18 हो रहा है, वो अपने फॉर्म 6 भरवा के अपने नाम का निबंधन कर लें। साथ ही साथ आपका परिवार का नहीं, मतलब आपका नाम नजदीकी बूथ से दूर होगा तो भी आप फॉर्म 8 भरवा के अपने नजदीकी बूथ में अपने नाम लेकर आए।
0: रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ कल चांडिल पुरुलिया रेल मार्ग पर नवनिर्मित पितकी रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण करेंगे। इस ओवरब्रिज के चालू होने से यात्रियों का समय बचेगा और क्षेत्र में आवागमन तथा व्यावसायिक गतिविधियों को भी गति मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत गुमला जिले की 62 पंचायतों को टीबी मुक्त पंचायत घोषित किया गया है। इस उपलब्धि को लेकर आज संबंधित पंचायतों के मुखिया, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, सहिया बहनों और चिकित्सकों को सम्मानित किया गया। जिले के उपायुक्त दिलेश्वर महतो ने कहा कि टीबी उन्मूलन की दिशा में यह बड़ी उपलब्धि है। हजारीबाग पुलिस ने पिछले दिनों हुई लूट की दो अलग अलग घटनाओं का खुलासा किया है। विष्णुगढ़ के SDPO फैजान अहमद ने आज पत्रकारों से बातचीत में बताया कि पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके निशानदेही पर सामान भी बरामद कर लिए गए हैं। मौसम। राजधानी रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र में आज अत्याधुनिक वर्षा मापक उपकरण डेस्ड्रोमीटर की स्थापना की गई। यह बिहार झारखंड क्षेत्र में अपनी तरह का पहला उन्नत उपकरण है जो वर्षा की सूक्ष्म भौतिक विशेषताओं के अध्ययन तथा उच्च रेजोल्यूशन वर्षा मापन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इधर मौसम विज्ञान केंद्र ने आगामी 25 अगस्त तक राज्य के अनेक स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं 23 अगस्त को पलामू, गढ़वा, चतरा, गुमला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है, जिसे लेकर चेतावनी जारी की गई है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। JPSC के बाद अब CGL और CDPO पद के लिए चयनित अभ्यर्थियों को भी हाईकोर्ट से मिली राहत। सरकार के आदेश पर लगाई रोक। छात्र संगठनों ने राज्य सरकार पर न्यायालय में मजबूती से पक्ष नहीं रखने का लगाया आरोप। 24 अगस्त से भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा निकालने का ऐलान। HSC के पुनरुद्धार के लिए गठित संसदीय उप समिति के सदस्यों ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात। वर्तमान स्थिति और भविष्य की कार्य योजनाओं पर हुई चर्चा। सीई

0: सीईओ ने एसआईआर के विशेष शिविर को लेकर की राजनीतिक दलों के साथ बैठक। 22 और 23 अगस्त को सभी बूथों पर लगेगा विशेष शिविर। और रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र में अत्याधुनिक वर्षा मापक उपकरण डिस्ट्रोमीटर स्थापित। 23 अगस्त को पलामू समेत 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं जिले में आजकल।
2: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: अंक में आप सुनेंगे हजारीबाग जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे हजारीबाग संवाददाता।
1: उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल आयुक्त विजय कुमार गुप्ता ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कर्जन ग्राउंड हजारीबाग में झंडा तोलन कर देश की आन बान और शान राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को सलामी दी। इस दौरान इन्होंने केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं के बारे में लोगों को अवगत कराया।
2: पीएम जनमन योजना अंतर्गत 143 आवासों की स्वीकृति प्रदान की गई है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आवास के अंतर्गत 2741 आवासों को पूर्ण करा लिया गया है। जिले में 77 आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण और स्वच्छ भारत में 106 आंगनबाड़ी केंद्रों में शौचालय निर्माण कराई जा रही है।
1: हर घर तिरंगा अभियान को लेकर हजारीबाग में स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर तिरंगा यात्रा निकाला गया। स्थानीय हरीश श्रीवास्तव बताते हैं,
3: हर घर तिरंगा, तो ये झंडा सिर्फ झंडा नहीं है, हमारी कुर्बानियों का प्रतीक, हमारी एकता का प्रतीक है। प्रधानमंत्री जी का आह्वान है, उसी के मद्देनजर हजारों हजार युवाओं ने झंडा थाम के पूरे शहर को झंडामय कर दिया।
1: राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर हजारीबाग में खिलाड़ियों का महाकुंभ लगेगा। आयोजन में 7 जिला से लगभग 1288 खिलाड़ी पहुंचेंगे। नगर निगम के महापौर अरविंद कुमार राणा बताते हैं,
4: 29, 30, 31 अगस्त को हजारीबाग में खेल महोत्सव का आयोजन हो रहा है। पूरे प्रमंडल से 1233 हमारे खिलाड़ी आने वाले हैं। कुल 8.5 लाख रुपए का हम नगद पुरस्कार देने वाले हैं। 6 खेलों से इसका शुरुआत कर रहे हैं।
1: रक्षाबंधन के अवसर पर भारतीय डाक सेवा बहनों के लिए विशेष सुविधा लेकर आई है।
5: सभी डाकघरों पर स्पेशल राखी इनवेलप उपलब्ध कराया जा रहा है। यह एक टेम्पर प्रूफ वाटर प्रूफ राखी इनवेलप भारतीय डाक विभाग के द्वारा बनाया गया है, जिसका मूल्य मात्र 10 रुपए है। सभी मुख्य डाकघरों, उप डाकघरों में और ग्रामीण क्षेत्र के शाखा डाकघरों में भी उपलब्ध है।
1: झारखंड में जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और फूड सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति को रद्द करने के राज्य कैबिनेट के फैसले पर उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाए जाने के बाद छात्रों में झारखंड सरकार के खिलाफ असंतोष गहरा रहा है। जेपीएससी जेसीएल रिफॉर्म मंच के सदस्य विनय मेहता बताते हैं,
6: जो काम कर रहे थे कर्मी उसको भगा दिया, लेकिन आज हाईकोर्ट में फिर से उसको स्टे लगा दिया। अब इसका मतलब ये हुआ कि सरकार का कोई तैयारी नहीं था, आपके पास कोई इनपुट नहीं था, तो ये गलत है। हम लोग का मैन था जेएसएससी सीजीएल, तो इसमें हम लोग कोई समझौता नहीं करने वाले हैं। इसमें आर पार की लड़ाई हम लोग वहाँ भी घोषणा किए थे और पुनः हजारीबाग में घोषणा करते हैं। इस एग्जाम को अगर छेड़ा गया तो हम लोग कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे। चूंकि सर आप ये समझिए, जेएसएससी सीजीएल पूरे भारत में सबसे बड़ा स्कैम इसको कह सकते हैं। 11 साल के बाद ये एग्जाम कम्प्लीट होता है। नेपाल में 135 में से 120 आंसर को मैच किया था। आपका नियामतपुर में 120 लोग पढ़ने गए उसको दबाया गया। आपका बोकारो में 15 लोग पढ़ने गया, मुंबई से अरुण शर्मा गिरफ्तार हुआ। अभय तिवारी आपका जो टीडीपीएल का मार्केटिंग मैनेजर है वो सेकंड टॉपर, जेएसएससी सीजीएल का, पीजीटी का फर्स्ट टॉपर।
1: आने वाला दिन झारखंड सरकार के लिए चुनौती भरा होगा। जहां एक ओर सरकार को हाईकोर्ट में जवाब देना है तो दूसरी ओर छात्रों को संतुष्ट करना भी है। गौरव प्रकाश, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग।
0: अभी आप सुन रहे थे हजारीबाग जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आज कल।

FM 102.1 MHz पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 7:15 हो रहे हैं। पेश है कार्यक्रम झनकार।

तो अभी आपने सुना कूली नंबर वन का ये नगमा और आवाजें थी अभिजीत और चंदना दीक्षित की। और आइए प्रोग्राम का आखिरी नगमा सुनते हैं।

0: और इसी गीत के साथ कार्यक्रम झंकार यहीं पे समाप्त होता है। तो अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम झंकार। FM 102.1 MHz पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है कार्यक्रम खेल गतिविधियों पर आधारित हमारा कार्यक्रम खेलेंगे सान से। संकलन एवं वाचन दिया है परमेंद्र कुमार मिश्रा ने। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता है राजीव कुमार और संयोजक है विक्रम कुमार रंजन। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम।
1: कार्यक्रम खेलेंगे सांसे के आज के इस ताजे अंक में आप सभी खिलाड़ियों खेल प्रेमियों का बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही स्वीकार करें अपने रेडियो दोस्त परमेंद्र कुमार मिश्रा का सप्रेम नमस्कार। श्रोताओं, आज के इस ताजे अंक में हम बातें करेंगे फेंसिंग या तलवारबाजी खेल की और जानेंगे इस खेल से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें। फेंसिंग या तलवारबाजी एक आधुनिक युद्धक खेल है जिसमें दो खिलाड़ियों विशेष नियमों के तहत तलवार से एक दूसरे पर वार करते और बचाव करते हैं। इसकी उत्पत्ति प्राचीन सैन्य प्रशिक्षण से हुई और 19वीं सदी के अंत तक यह एक औपचारिक खेल बन गया। तलवारबाजी की सबसे पुरानी प्रमाण मिस्र यानी इजिप्ट में मिलते हैं। लगभग 1190 ईसा पूर्व के मेडिने ठाबो मंदिर की दीवारों पर नक्काशी मिली है जिसमें सुरक्षात्मक मास्क और गद्देदार उपकरणों के साथ मुकाबला दर्शाया गया है। प्राचीन यूनान रोम और मिस्र में सैनिकों को युद्ध कौशल के लिए तलवारबाजी सिखाई जाती थी। रोमन सैनिक वार करने की तुलना में नुकीले वार पर अधिक ध्यान देते थे। जर्मनी और इटली में तलवारबाजी ने एक संगठित खेल का रूप लेना शुरू कर दिया। 15वीं शताब्दी में जर्मनी में पहले फेंसिंग गिल्ड बने, स्कूलों की स्थापना हुई और 17वीं से 18वीं शताब्दी में फ्रांस और इटली में इसके विशेष नियम और स्कूल बने। फ्रांस में बिना धार वाली हल्की तलवार यानी फॉइल और चेहरे की सुरक्षा के लिए वायर मेस मास्क का आविष्कार हुआ जिसने इसे सुरक्षित खेल बना दिया। डोमिनिको एंजिलो ने 1763 ईस्वी में लंदन में अपनी अकादमी शुरू की और इसे हिंसा की जगह एक कलात्मक और एथलेटिक खेल के रूप में बढ़ावा दिया। पहली आधिकारिक फेंसिंग प्रतियोगिता 1880 में लंदन में आयोजित की गई। ओलंपिक में 1896 ईस्वी से ही फेंसिंग को शामिल किया गया। इसके तीन मुख्य प्रकार है फॉइल, एपी और सेबर। फेंसिंग या तलवारबाजी खेल में हार और जीत का निर्णय प्रतिद्वंदी पर सटीक वार करके अंक हासिल करने के आधार पर होता है। व्यक्तिगत मुकाबलों में प्रारंभिक चरणों में 3 मिनट के भीतर 5 अंक जबकि सीधे एलिमिनेशन नॉकआउट मुकाबलों में 3-3 मिनट के 3 राउंड होते हैं और जो खिलाड़ी पहले 15 अंक हासिल कर लेता है वह विजेता बनता है। स्कोरिंग और निर्णय के मुख्य आधार इलेक्ट्रॉनिक स्कोरिंग सिस्टम। मैच के दौरान खिलाड़ी को एक विशेष इलेक्ट्रिक वायर के जरिए स्कोरिंग मशीन से जुड़े होते हैं। तलवार का वैध हिस्सा विरोधी के शरीर पर लगते ही मशीन पर लाल या हरी बत्ती जल जाती है जिसमें अंक मिलता है। वेपन के प्रकार और नियम की बातचीत करें तो इसमें केवल तलवार की नोक से प्रतिद्वंदी की धड़ पर वार करने पर ही अंक मिलता है। इसमें राइट ऑफ वे प्राथमिकता हमेशा पहले हमला करने वाले को वरीयता का नियम लागू होता है। एपी में इसमें भी नोक से वार करना होता है लेकिन इसमें सिर से लेकर पैर तक पूरा शरीर लक्ष्य क्षेत्र होता है। इसमें राइट ऑफ वे का नियम नहीं होता और दोनों खिलाड़ियों को एक साथ वार करने पर दोनों को अंक मिलते हैं। सेबर की अगर हम बातचीत करें तो इसमें तलवार की नोक के साथ साथ धार वाले हिस्से से भी कमर के ऊपर शरीर हाथों और सिर पर वार करके अंक बटोरे जा सकते हैं। इसमें भी राइट ऑफ वे का नियम लागू होता है। श्रोताओं, फेंसिंग खेल के कुछ अहम बातों को जानेंगे खेल के एक्सपर्ट की राय से। कार्यक्रम के इस खंड में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं खेल प्रशिक्षक संत रॉबर्ट बालक मध्य उच्च विद्यालय कैथोलिक आश्रम होली क्रॉस रोड हजारीबाग के एक्सपर्ट सिंह रॉय सुंदी जी से और साथ ही बातें करेंगे खिलाड़ी रोशन कुमार जी से फेंसिंग खेल। सर, आपको आकाशवाणी परिवार की ओर से नमस्कार।
2: नमस्कार सर, मैं सिंगराज सुंडी आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपना मैं बताना चाहूँगा कि यह जो खेल है हमारे हजारीबाग में 2017 से शुरू हुआ था और हमारे बच्चों ने नेशनल तक अपना परचम को लहराया है, हमारे हजारीबाग को बहुत अच्छा नाम दिया है। और अभी आने वाले 28 तारीख में भी हमारे बच्चे स्टेट खेलने के लिए जा रहे हैं और हमारे बच्चे बहुत ही इंटरेस्टेड है इसमें, क्योंकि इसमें मतलब बहुत ही अच्छा गेम है ये बच्चों के लिए। इसमें ज़्यादातर मतलब चोट भी नहीं लगता है और प्लस है कि ये एक ओलंपिक गेम भी है। सबसे बड़ी बात की पिछले साल की बात कहना है कि नाम मैं थोड़ा सा भुला रहा हूँ उनका, पूरे ओलंपिक में उन्होंने मेडल लिया था, ब्रॉन्ज मेडल लेकर के फेंसिंग को उन्होंने आगे बढ़ाया था, तो उन्हीं से ये पहचान मिली फेंसिंग का। फेंसिंग बोलने से तलवारबाजी नाम आता है और जैसे तलवारबाजी बोलने से गार्जियन लोगों के मन में डर आ जाता है कि ये तलवारबाजी से चोट लग सकता है, ये नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये इसमें एक पॉइंट वाला गेम है, ये तलवार जो रहती है वो वैसे तलवार नहीं

0: रहती है जैसे कि हम लोग काटने मारने वाला, वैसा नहीं, उसके तलवार के आगे में पॉइंट लगा होता है, बटन लगा होता है, और वो बटन जैसे हमारे बॉडी पर टच करता है वो बटन से मतलब वायर लगा होता है और स्क्रीन पे पॉइंट दिख जाता है जी। और इसमें पूरा होल बॉडी कवर रहता है, फेस कवर रहता है, हैंड कवर रहता है, फिर पूरी तरह से सुरक्षित है। जैसे एक पॉइंट एक बार टच किया, एक बार ले लिया, ये कम्प्लीटली कि सुरक्षित गेम है और फेयर गेम है। ये जैसे ही आपने पॉइंट लिया, कोई भी पहले पॉइंट लेगा वो स्क्रीन पे आ जाएगा। बहुत अच्छा गेम है ये। लड़कियां तो बहुत आगे बढ़ चढ़ के हैं, और खासकर मतलब हजारीबाग में हो गए और फिर रांची रामगढ़ में, तो उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। वे मतलब वे भी नेशनल इंटरनेशनल की तरफ से अग्रसर हो रहे हैं, वो जा रहे हैं सर। और मैं ये पूरे हजारीबाग को भी बोलना चाहूंगा कि इस फेंसिंग को एक बार आप जरूर देखें, खेलें, और सचमुच में ये आने वाला भविष्य के समय में एक उज्जवल भविष्य देगा। सभी हजारीबाग वासियों को मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग इस फेंसिंग को समझें, देखें, इसके बारे में जानकारी लें, और एक बार जरूर अपने बच्चों को इस फेंसिंग को खेलने के लिए मौका दें आप। और ये तो क्योंकि इंटरनेशनल गेम है, ओलंपिक गेम है, और ऑब्वियसली कि अगर जो कोई इंटरनेशनल खेल गया, ओलंपिक खेल गया, तो उनका तो भविष्य बनना ही बनना है। अभी बहुत सारे गेम में जैसे मेडल लेने के बाद उनको जॉब भी हो जाता है। हाँ जी जी जी। और प्लस है कि उनके फिर सरकार भी बहुत सारा उनको मतलब मदद करती है,
1: कई तरह की सुविधाएं देती,
0: देती है। यस,
1: किसी कॉलेज में नामांकन करना हुआ
0: जी, तुरंत हो जाता जी। लाभ तो बहुत है क्योंकि कॉलेज में भी नामांकन हो जाता है, स्कूल में भी, क्योंकि एक जो प्लेयर होता है उसका प्रतिभा जब निखर के आता है तो कौन नहीं चाहेगा कि उसको अपने साथ ले। गार्जियन को भी मतलब बिल्कुल ही उनको मतलब टेंशन फ्री रहते हैं कि ये गेम उनके मतलब उनको किसी प्रकार से चोट नहीं पहुंचाएगा, और ये गेम उनके लिए बहुत ही अच्छा है। और भी जैसे कि यहाँ और भी गेम होते हैं, ग्रुप गेम है, जैसे फुटबॉल है, हॉकी है, ये सब बहुत अच्छे हैं। क्यों नहीं अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, क्योंकि ये इंडिविजुअल गेम है हमारा, ये जो फेंसिंग है इंडिविजुअल गेम है, और ग्रुप गेम भी होता है, लेकिन इनका जो है थोड़ा सा अलग रूल रेगुलेशन रहता है, तो साथ में ही चलते हैं। मतलब जैसे इंडिविजुअल भी रहता है, फिर बाद में ग्रुप, एक ग्रुप बनता है, फिर ग्रुप के साथ भी सिंगल बाय सिंगल गेम होता है इसमें। हमारे संत रॉबर्ट में एक रोशन कुमार हैं बच्चे जो 8वीं क्लास में पढ़ते हैं, और ये नेशनल खेले हुए हैं सर, और ये बहुत ही प्रतिभाशाली बच्चा है, और छोटा सा ही खेल रहा है 13 साल की उम्र से, और ये बच्चा बहुत ही मतलब आगे तक मतलब स्टेट में उम्मीद नहीं था, लेकिन ये बहुत अच्छा किया, और करने के साथ साथ फिर आगे नेशनल भी खेला।
1: क्यों नहीं हम रोशन कुमार जी से ही बातचीत कर ले, तो कहते हैं उनसे जानते हैं कि वो फेंसिंग गेम में क्या कुछ उन्होंने किया और क्या कुछ करने वाले हैं। जो ये फेंसिंग खेल है वो इस खेल में कैसे मतलब आप आए, किस तरह से आपको ये लगा कि ये खेल दूसरे खेलों के बनिस्बत बहुत अच्छा है?
2: जो सर है मतलब मेरे कोच है सिंगराज सर, वो बताए कि ये गेम है जो थोड़ा ओलंपिक लेवल का गेम है। मेरे गार्जियन से पहले बात हुआ, उसके बाद फिर हम और सर बैठ के मतलब सर हमको बताए कि कैसे क्या गेम है, कैसे खेला जाता है। हम और सर फिर मतलब सर हमको बाद में यही गेम में इन्वॉल्व किए और हम खेले, और सर हमको अच्छा से गाइड होता है ना, तो अच्छा से गाइड कराए, हम अच्छा से प्रैक्टिस किए, अच्छा से खेले। मेरा जहां हम जहां जहां भी खेलने गए मेरा वहां परफॉर्मेंस थोड़ा बढ़िया था।
1: अच्छा, कब से आप खेल रहे हैं फेंसिंग खेल?
2: जी 2023 से जी।
1: अच्छा, तो वहाँ से अब तक आप कौन कौन से खेल में आपने हिस्सा लिया और वहाँ पर आपका प्रदर्शन कैसा रहा?
2: जी अभी तक तो हम खेले हैं स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और नेशनल। डिस्ट्रिक्ट में तो उम्मीद नहीं था, लेकिन सर का मेहनत और मेरा मेहनत से डिस्ट्रिक्ट पार किए, और फिर वहाँ से फिर गए स्टेट, स्टेट में मेरा मेडल लगा जो कि था गोल्ड मेडल।
1: गोल्ड मेडल जी, बहुत अच्छा, बधाई हो आपको।
2: थैंक यू सर। गोल्ड मेडल लगा, फिर वहाँ से गए नेशनल, नेशनल में खेले, हम अपना 100% दिए, लेकिन होता है ना कि एक प्रैक्टिस करता है तो अगला आदमी उससे ज्यादा करता है,
1: तो भागी कैसा हाँ, वो तो हमको नहीं पता, वो तो मैदान में पता चलता।
2: हाँ, तो अपोनेंट जो था मेरे से थोड़ा सा ज्यादा एक्स्ट्रा था, अच्छा खेला वो
1: तो
2: भी और हम भी।
1: किससे हुआ
2: मेरा मुकाबला? जब हम लोग खेले तो हम लोग का पहले पुल बटाता है, तो हम लोग का पुल बटा कि कौन कौन सा है, पार करने के बाद आता है नॉकआउट राउंड, तो उसमें पहले मेरा हुआ इस छत्तीसगढ़ से, फिर उसका वो स्टेट का एक बच्चा को हरा है, मिजोरम का बच्चा था, तो उसके साथ मेरा मैच हुआ, वो मेरे से बड़ा था, काफी बड़ा था। जिस टाइम हम खेलने गए थे नेशनल केरला, हाँ केरला गए थे, तो उस टाइम ना हम थोड़ा छोटे थे, जो मेरा अपोनेंट है वो मेरे से काफी बड़ा था, हमको तो लगा था कि नहीं हो पाएगा मेरे से, बस खेलते हैं। फिर जब खेले पॉइंट अच्छा खासा निकला, मिजोरम का एक लड़का को हराए, फिर उसके बाद एक आया हरियाणा से, उसके साथ खेले, अच्छा मैच हुआ, बाउट बढ़िया हुआ, जो हम लोग का मैच होता है उसको हम लोग बाउट बोलते हैं। तो बाउट हम लोग का अच्छा से हुआ, उसके बाद फिर हम थे सो थोड़ा थक गए थे, तो खेलते खेलते होता है ना थक जाना।

0: तो थक गए थे, तो उसके बाद पता नहीं कैसे क्या हुआ, नॉकआउट रन से एक बार हारे, उसके बाद खत्म गेम।
1: रोचकता जो है सुन करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और ये उन खिलाड़ियों के लिए भी प्रेरणा स्रोत है जो है हर मिनट हर सेकंड से कुछ न कुछ सीखा है। और रोशन कुमार आपने भी बहुत अच्छी जानकारी दी और आपने भी अपना बहुमूल्य और बेशकीमती वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद सर।
2: कार्यक्रम का अगला सेगमेंट है खेल टिप्स। दोस्तों शुरुआत हमेशा वार्म अप से करें ताकि चोट का रिस्क कम हो, फिर बेसिक टेक्निक्स पर ध्यान दें। सही फॉर्म हमेशा पावर से पहले आता है, रेगुलर प्रैक्टिस करें, लेकिन बीच बीच में रेस्ट भी उतना ही जरूरी है। हाँ, कोच या सीनियर से फीडबैक लेते रहिए क्योंकि बाहर से दिखने वाला आपकी गलती जल्दी पकड़ लेता है। तलवारबाजी से संबंधित महान खिलाड़ी भवानी देवी का मानना है कि तलवारबाजी सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि अनुशासन, धैर्य और आत्मविश्वास का प्रतीक है। वो कहती हैं कि मेहनत और लगातार अभ्यास से कोई भी खिलाड़ी अपने सपनों को हकीकत में बदल सकता है। कार्यक्रम का अगला सेगमेंट है सुनो खिलाड़ियों। फेंसिंग खेल के लिए सबसे पहले फुटवर्क पर फोकस करो, आगे पीछे का संतुलित मूवमेंट, नरम घुटने और शरीर को हमेशा हल्का और तैयार रखो। दूसरी चीज ब्लेड कंट्रोल, हमेशा सीधा और शांत रहें, हर ट्रेनिंग सेशन में ड्रिल्स दोहराएं, जल्दबाजी से बचें और सांस को स्थिर रखें। मैच के दौरान विरोधी की लय को पढ़ें और जब मौका मिले तभी साफ सुथरा अटैक करें और फालतू रिस्क न लें। और अब चलते हैं दोस्तों कार्यक्रम के अगले खंड की ओर जो है खेल अपडेट्स। राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता के लिए दूसरे चरण की खुली चयन प्रक्रिया में 18 अगस्त को 1037 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। राजधानी के खेलगांव में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने 17वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता के लिए दूसरे चरण की खुली चयन प्रक्रिया आयोजित की गई। मंगलवार को 3 खेलों में कुल 1037 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, इनमें 920 बालिका एवं 117 बालक खिलाड़ी शामिल हुए। चयन प्रक्रिया में ताइक्वांडो, कबड्डी और निशानेबाजी के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। ताइक्वांडो के अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 बालिका वर्ग में 255, कबड्डी के अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 बालिका वर्ग में 595 तथा निशानेबाज में अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 बालक बालिका वर्ग में 185 खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इधर हजारीबाग में प्रमंडलीय स्तरीय हजारीबाग खेल महोत्सव के सफल आयोजन को लेकर गुरुवार को जिला खेल पदाधिकारी की अध्यक्षता में शारीरिक शिक्षा शिक्षकों के साथ बैठक हुई। खेल महोत्सव का आयोजन 29 से 31 अगस्त तक कर्जन ग्राउंड स्टेडियम हजारीबाग में खेला जाएगा। सभी खेल स्पर्धाएं स्टेडियम परिसर में ही होंगी, आयोजित जिला प्रशासन और हजारीबाग ओलंपिक एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में होगा। प्रतियोगिता में प्रमंडल के 7 जिलों हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, रामगढ़, बोकारो, गिरिडीह और धनबाद के पुरुष एवं महिला खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। और इस प्रतियोगिता में बैडमिंटन, तीरंदाजी, एथलेटिक्स, फुटबॉल, खो खो और वॉलीबॉल शामिल है। और आज हॉकी में भारतीय टीम का सामना नीदरलैंड से हो। भारतीय महिला युगल जोड़ी त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 के क्वार्टर फाइनल में चीन की चौथी वरीयता प्राप्त जिया यी फैन और झांग सुक्सियान जोड़ी को हराया। तो दोस्तों ये थी खबरें कुछ खेल जगत से जुड़ी, और इसी के साथ कार्यक्रम खेले गए सांसे के आज के इस अंक से विदा लेने का समय आ गया है। जाते जाते श्रोताओं, अगर अपना कोई मार्गदर्शन या सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें सुझाव अवश्य दे सकते हैं ताकि हम और बेहतर कुछ कर सके। हमारा पता है कार्यक्रम खेलेंगे सांसे, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी हजारीबाग, पोस्ट बॉक्स संख्या 1, पिन संख्या 825301। कार्यक्रम खेलेंगे सांसे के आज के इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम अपने ताजा तरीन खबरों और खेल जगत की गतिविधियों के रोचक जानकारियों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें यानी अपने रेडियो दोस्त परमेंद्र को दीजिए अनुमति। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है राजीव कुमार, संयोजक विक्रम कुमार रंजन।
3: तो भी आप सुन रहे थे खेल गतिविधियों पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम खेलेंगे शान से। संकलन एवं वाचन दिया था परमेंद्र कुमार मिश्रा ने, और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे राजीव कुमार और संयोजक थे विक्रम कुमार रंजन।

FM 102.1 MHz पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स।

FM 102.1 MHz पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है फरमाइसी गीतों का कार्यक्रम आपकी चाहत।

तो दोस्तों पेश है आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपकी चाहत, जहां आपके खतों में छुपी होती है आपकी भावनाएं और आपकी फरमाइशों में होती है आपके दिल की पसंद। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं आपके भेजे हुए खूबसूरत खत और उन्हीं खतों से जुड़ी प्यारी प्यारी फरमाइशें। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं आज का यह सुरीला सफर। तो सबसे पहला खत हमें भेजा है, आप हैं इटखोरी से पंकज, मिनी, स्वाति और इनके परिवार के सभी सदस्य। आप हैं रांची झारखंड से सचिदानंद दुबे, मोहन पाठक, कुमार दिवाकर, निखिल, विपिन, अर्जुन, आनंद, शमीर, रामदेव, इफ्जाल, ताज, नूर, हसन और इनके ढेर सारे दोस्त। आप हैं पटियाला से बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता। तो आइए आप सबों के फरमाइश पर प्रोग्राम का पहला नगमा सुनते हैं।

इस गीत के लिए फरमाइश भेजी थी आप है ग्राम पोचरा से महेश राम, सरिता देवी, पिंटू, वर्षा, फुलवासी देवी और परिवार के सभी सदस्य, और आप हैं इंद्रपुरी चौक से दिलीप ठाकुर और अरविंद ठाकुर। और प्रोग्राम का अगला नगमा हम आपको सुना रहे हैं। इस प्यारे से गीत के लिए फरमाइश भेजी है पच मंदिर रोड हजारीबाग से आप हैं कलाम अहमद आरजो, नीलोफर परवीन, हबीबा खातून, कहकशा परवीन, इरफान अहमद, शबाना परवीन, फिरोज अहमद और शमा परवीन आरजो। और आप हैं मध्य प्रदेश से बहादुर चक्रवर्ती, नंदकिशोर, भरत चक्रवर्ती, संजय, अजय, श्रीमती शीला और श्रीमती जसोदा और परिवार के सभी सदस्य। तो आइए आप सबों की फरमाइश पर सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

और इस गीत के लिए फरमाइश भेजी थी बड़का गांव से, आप हैं श्री बाबूलाल ठाकुर, श्रीमती शबिया ठाकुर, भरत ठाकुर, मंजू संतोष, विकास कुमार, प्रभात कुमार, जितेश, अनुराधा और प्रियंका। और आप हैं बड़का काना से रविंद्र वर्मा, अमन, आरती, उर्वशी, रिया, परी, कोको, चारू और आरके वर्मा। और प्रोग्राम का अगला गीत हम आपको सुना रहे हैं और इस गीत के लिए फरमाइश भेजी है, आप हैं औरंगाबाद से राजेश साबेल, पाटिल, शीतल, राजदीप और राशि राजेश। और आप हैं पंजाब से हरदेव, मीका, बलविंदर, बीरक, जैतग और मीका। और आप हैं चंडीगढ़ से टीरी मल्होत्रा, रीतिका, प्रतीक, नवनीत राय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा। और आप है कालका से शुभ चंद्र बजाज और विट्टा बजाज।

और प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अगली फरमाइश के लिए खत भेजा है आप हैं मगनपुर से अब्बास आलम और अमजद अली और आप हैं पतरातू से बेसिल खलको मधु रितु मीतू श्वेता पल्वी रोहित प्रवीण नदीम मनीष मनीषा शोरेन और परिवार के सभी सदस्य और इसी गीत के लिए फरमाइश भेजी है आप हैं झुमरी तिलैया से विजय शर्मा मनोज मगदीहा और अंशु तो आइए आप सबों के पसंद पर सुनते हैं

और आप हैं रामनगर हजारीबाग से अमित, मोहित, राकेश आदि, आर्यन और विशाल, और आप हैं महेश सोनी चौक से नवीन गुप्ता, अनिल गुप्ता, और आप हैं ग्वाल टोली चौक हजारीबाग से महेश ठाकुर और उपेंद्र ठाकुर।

तो अभी आप सुन रहे थे फरमाइसी गीतों का कार्यक्रम आपकी चाहत। FM 102.1 MHz पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे आप सुनेंगे न्यूज़ @9 हमारे दिल्ली केंद्र से। हमारे अगले प्रसारण के लिए कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने पिछले 10 से 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री ने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग का आह्वान किया। 20 अंतरिक्ष स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। गृहमंत्री अमित शाह ने प्रत्येक अवैध प्रवासी को देश से बाहर भेजने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सरकार ने कहा, देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घरेलू आपूर्ति श्रृंखला और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए 62,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट आवंटन के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने H1N1 इन्फ्लुएंजा संक्रमण की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। और हॉकी में FIH हॉकी विश्व कप में दूसरे चरण में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड्स से। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने पिछले 10 से 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी इस समय फोरम को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की व्यवस्था है, 10,000 से ज्यादा लेवल क्रॉसिंग गेट्स को भी इंटरलॉकिंग से जोड़ा जा चुका है। इससे ह्यूमन एरर से होने वाले हादसों की आशंका बहुत कम हुई है। साथियों, जब 2014 में हमारी सरकार आई तो करीब 9,000 फाटक ऐसे थे जो अनमैंड थे। इन्हें हटाना कोई रॉकेट साइंस नहीं था। अनमैंड क्रॉसिंग की वजह से हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन पहले की सरकारों को इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता था। हमने मिशन मोड में गत 10 वर्ष में इन अनमैंड क्रॉसिंग को समाप्त कर दिया।
0: प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक में स्टार्टअप संस्थापकों ने सरकार के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने आज सिलीगुड़ी के कावाखाली मैदान में 3 नए आपराधिक कानूनों पर 6 दिन की जागरूकता प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के नवनिर्मित भवन और नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 20 बिस्तरों वाले नशा मुक्ति केंद्र का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता BNS के 3 नए आपराधिक कानूनों से नागरिकों की सुरक्षा और मजबूत होगी। श्री शाह ने कहा कि भाजपा के लिए देश, राज्य और जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।
2: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि BSF और SSB के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है, जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता है।
0: श्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के बारे में कहा कि पुराने दंड कानूनों को समाप्त कर नई भारतीय न्याय संहिता बनाई गई है जो प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता और समय सीमा पर आधारित है।
3: मैं बांग्लादेश से आए हुए हिंदू, सिख, जैन शरणार्थियों को वादा कर जाता हूं कि 6 माह में आप सभी को हम नागरिकता दे देंगे। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने अपने सारे अधिकार बंगाल सरकार के 8 कलेक्टरों को दे दिए हैं। एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर पश्चिम बंगाल से निकालने का मैं फिर से एक बार बंगाल की जनता को वादा करना चाहता हूं।
0: गृह मंत्री ने कहा कि अवैध प्रवासन कतई बर्दाश्त न कर

0: 2024 से ही देश में यह कानून लागू हो गया था, परंतु विगत की टीएमसी की ममता सरकार ने इसे पूर्ण रूप से लागू होने नहीं दिया। परंतु भाजपा की सरकार आते ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस कानून को पूर्ण रूप से लागू कर दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए सिलीगुड़ी से अशोक चौरसिया।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है, हालांकि इसका उत्पादन अनुमान से कम रहने की संभावना है। सरकार ने चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को देखते हुए पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतें स्थिर रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। रिपोर्ट।
2: सरकार चीनी की आपूर्ति बढ़ाने के लिए जमाखोरी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मंत्रालय ने पाया कि कुछ चीनी मिलों और व्यापारियों द्वारा जमाखोरी की वजह से भी चीनी की कीमतें बढ़ी हैं। सरकार ने 1 अगस्त से 30 नवंबर तक पूरे देश में चीनी व्यापारियों के लिए अधिकतम 400 टन का स्टॉक रखने की सीमा तय की है। इसके अलावा थोक उपभोक्ताओं को 1 सितम्बर से 15 दिन की खपत से ज्यादा चीनी का स्टॉक रखने की इजाजत नहीं होगी। सरकार द्वारा राज्यों और चीनी मिलों को 15 अक्टूबर से पेराई शुरू करने की सलाह दी गई है। इससे अक्टूबर में चीनी का उत्पादन सामान्य 3 से 4 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 10 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा होने की उम्मीद है, जिससे त्योहारों के मौसम में चीनी की उपलब्धता और बेहतर होगी। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि वो स्थिति पर करीबी नजर रख रहा है। मंत्रालय ने कहा कि चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को इथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी के इस्तेमाल से जोड़ना सही नहीं है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज मोबाइल फोन विनिर्माण योजना MPMS का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने 62,500 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ इस योजना को मंजूरी दी थी। मंत्रालय ने योजना की अधिसूचना जारी कर दी है। योजना का उद्देश्य उत्पादन का स्तर बढ़ाकर मोबाइल विनिर्माण की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत और व्यापक बनाते हुए घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को सशक्त बनाकर वैश्विक प्रतिस्पर्धा में देश की स्थिति मजबूत करना है। इस योजना से भारतीय मोबाइल ब्रांड को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर सृजित करने में भी मदद मिलेगी। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि ये योजना भारतीय स्वामित्व वाले मोबाइल ब्रांड, बौद्धिक संपदा और डिजाइन के विकास को महत्वपूर्ण बढ़ावा देगी।
3: भारत में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट का इकोसिस्टम बहुत वाइड स्प्रेड हो गया है। एमएसएमई और फाइनल प्रोडक्ट्स के बीच में पूरा एक वैल्यू चेन का रिलेशन है। उस तरीके से ये चीज डेवलप हो रही है। पीएलआई केवल एक प्योरली प्रोडक्शन बेस्ड था। इसमें डोमेस्टिक वैल्यू के लिए अलग से, डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन के लिए अलग से रखा गया है, और साथ ही साथ इंडियन ब्रांड को डेवलप करने के लिए, इंडियन आईपी को डेवलप करने के लिए, इंडियन डिजाइन को डेवलप करने के लिए अलग से प्रोविजन रखे गए।
1: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा कि योजना की अवधि के दौरान देश में मोबाइल फोन का संचयी उत्पादन करीब 39 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। सरकार ने फिर कहा है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा और कल्याण उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखे हुए है। श्री जायसवाल ने विदेशी ध्वज वाले 2 जहाजों से संबंधित घटना के बारे में कहा कि सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए हुए है।
4: 2 ships which are foreign flag. 2 जहाज हैं, दोनों पर विदेशी झंडे लगे हैं। उन पर कुल 22 भारतीय नाविक सवार हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक वे सभी सुरक्षित हैं। सरकार उनकी सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए इस मामले में संबंधित अधिकारियों से संपर्क में है।
5: वी आर इन टच विद द अथॉरिटीज दैट आर कंसर्न्ड इन दिस।
1: विदेश मंत्रालय की सचिव श्रीप्रिया रंगनाथन की फिलिस्तीन यात्रा के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि यात्रा के दौरान उन्होंने फिलिस्तीन के विकास साझेदार के रूप में भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रवक्ता ने बताया कि सुश्री रंगनाथन ने फिलिस्तीन के लोगों के लिए जीवन रक्षक दवाओं की एक खेप भी फिलिस्तीन सरकार को सौंपी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा संक्रमण की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में श्री नड्डा ने निरंतर सतर्कता, निगरानी और सक्रिय तैयारियों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने इन्फ्लुएंजा के मामलों पर कड़ी नजर रखने के भी निर्देश दिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के पास स्वास्थ्य सेवा उन्नत बनाने का अनूठा अवसर है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि तकनीकी उपलब्धियां सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली हों। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत का चिकित्सा प्रौद्योगिकी

0: औद्योगिक क्षेत्र वर्तमान में लगभग 12 अरब डॉलर का है। भारत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठकों की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक कल और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक 23 अगस्त को होगी। इन बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। सरकार ने कहा है कि संशोधित व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 29 प्रस्तावों के बारे में सूचना मिली है। इनमें 4,800 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। इन प्रस्तावों में सूचना प्रौद्योगिकी, एआई, संचार, विनिर्माण, औषधि, डेटा सेंटर और परिवहन सेवाओं सहित कई क्षेत्र शामिल हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब कुछ खेल खबरें। एफआईएच हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज अम्स्टरडैम में भारतीय महिला टीम का मुकाबला मेजबान नीदरलैंड से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले कल भारत ने पूल डी के अपने अंतिम मैच में इंग्लैंड के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलकर दूसरे दौर में प्रवेश किया था। भारतीय महिला पहलवान काजल ढोचक ने लगातार दूसरी बार अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। महिलाओं के 76 किलोग्राम वर्ग में काजल ने फाइनल में चीन की जिंगरू सून को 7-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। 72 किलोग्राम वर्ग में भारत की तनु शर्मा और 62 किलोग्राम वर्ग में सविता ने रजत पदक अपने नाम किया। 68 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक के लिए फाइनल में भारत की मानसी लाथेर का मुकाबला चीन की चेंग लिंग से होगा और 59 किलोग्राम वर्ग के रैपिचेस राउंड में कोमल स्पेन की रोजा मोलिना के साथ खेलेंगी। नई दिल्ली में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने महिला डबल्स में चीन की यी फैन और झांग शू की जोड़ी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। इस जीत के साथ इस जोड़ी ने भारत के लिए एक पदक सुनिश्चित कर दिया है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। असम, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित भारत के उत्तर पूर्वी भागों में भी इस महीने की 24 तारीख तक तेज बारिश की आशंका है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: सेंसेक्स 3 अंक की बढ़त के साथ 77,541 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 20 अंक की तेजी दर्ज करता हुआ 24,252 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में लगभग सपाट रहते हुए 95.71 रुपये पर बंद हुआ।
0: और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने पिछले 10 से 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री ने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग का आह्वान किया। 20 अंतरिक्ष स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। गृहमंत्री अमित शाह ने प्रत्येक अवैध प्रवासी को देश से बाहर भेजने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सरकार ने कहा, देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घरेलू आपूर्ति श्रृंखला और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए 62,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के आवंटन के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने H1N1 इन्फ्लुएंजा संक्रमण की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। और हॉकी में FIH हॉकी विश्व कप में दूसरे चरण में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India is emerging as a global bright spot for growth amid concerns over global growth and weaponization of resources. Home Minister Amit Shah reiterates government's commitment to deport every illegal immigrant from the country. Government assures availability of adequate sugar stocks to meet domestic demand. Union Minister Ashwani Vaishnav launches mobile phone manufacturing scheme with outlay of over 62,000 crore rupees to enhance domestic supply chain एंड ग्लोबल कंपेटिटिवनेस। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर जेपी नड्डा रिव्यू सिचुएशन एंड प्रिपेयरेडनेस फॉर H1N1 इन्फ्लुएंजा इन द कंट्री। एंड इन हॉकी वर्ल्ड कप इंडियन वुमेन्स टीम टू टेक ऑन द नेदरलैंड्स इन द सेकेंड पूल फेज मैच। Prime Minister Narendra Modi has said India has been seen as a bright spot of growth throughout the globe, even as the world has many concerns regarding growth and resources are getting weaponized. Addressing the Economic Times World Leaders Forum in New Delhi this evening, the Prime Minister said India continues to take several steps to ensure continued growth momentum and reforms are commitment of his government.
3: दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों। रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा, अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा, लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। भारत ने पिछले 10-12 साल में अपनी 25 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है।
2: The Prime Minister said India has moved away from production-linked punishment model during earlier governments to production-linked incentives now. He alleged it was a policy of earlier regimes to keep people in scarcity so that they beg before the government for even basic needs. Mr. Modi said license raj of earlier governments was used to increase unemployment while his government's production-linked incentive model creating opportunities. We now go over live to the Prime Minister's address.
3: साथियों, पॉलिटिक्स में अक्सर वही फैसले हेडलाइंस बनते हैं जिनका असर आज दिखाई दे, यानी उसकी उम्र 24 घंटे हो। पहले की सरकारों ने इलेक्शन सामने देखकर भी घोषणा करने का फॉर्मूला अपनाया, लेकिन ऐसी घोषणाओं से देश नहीं बदला। देश बदलने वाले फैसले वो होते हैं जिनका प्रभाव जमीन पर दिखे, जो वर्तमान और भविष्य दोनों को ध्यान में रख करके लिए गए होने चाहिए। साथियों, पीएम कुसुम योजना और पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना इसका बहुत बड़ा यूनिक एग्जाम्पल है। कुसुम योजना से किसानों को बिजली की चिंता से मुक्ति मिली है और सूर्यघर योजना से मिडिल क्लास को बहुत फायदा हुआ है। साथियों, मैं ये जानता हूं कि अगर मैंने ये अनाउंस कर दिया होता कि आज से लाखों लाख परिवारों के लिए बिजली मुफ्त है तो सारा मीडिया, सारी स्क्रीन्स, सारे न्यूज़पेपर्स बड़ी बड़ी हेडलाइन बनाकर के खबर दे देते कि मोदी जी ने आज अनाउंस कर दिया है।
2: अर्लियर टुडे प्राइम मिनिस्टर इंटरेक्टेड विद चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, सीईओज एंड फाउंडर्स ऑफ 20 स्पेस स्टार्टअप्स इन न्यू दिल्ली। द प्राइम मिनिस्टर कॉल्ड फॉर वाइडर एप्लीकेशंस ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी टू इंप्रूव लाइव्स ऑफ पीपल। मिस्टर मोदी नोटेड दैट द कंट्री स्पेस सेक्टर कैन बिकम अ मैग्नेट फॉर ग्लोबल टैलेंट, कंपनीज एंड इन्वेस्टमेंट एंड सजेस्टेड क्रिएटिंग एन इकोसिस्टम एंड एन एनवायरमेंट where when the world thinks of space, it looks towards India. The UN and Home Minister Amit Shah has reiterated that the zero-tolerance policy against illegal immigrants will continue and the detect, delete and deport process will be strictly followed. He said the government's commitment to deport every illegal immigrant from the country is utmost priority, adding that demographic change will be strictly stopped. The Home Minister was addressing a gathering in Siliguri, West Bengal today after inaugurating a 6-day awareness exhibition on the Bharatiya Nyaya Sanhita at the Kawakhali ground.
4: I assured the Hindu, Sikh and Jain refugees who have come from Bangladesh that within 6 months we will grant citizenship to all of you. The Union Home Ministry has delegated its power to 8 characters of the West Bengal government. At the same time, I want to once again assure the people of Bengal that every infiltrator will be identified and removed from the state.
5: Main phir se ek bar Bengal ki janta ko vaada karna chahta hu.
2: Mr. Shah said for the safety and security of the state and the nation, the sensitive Siliguri corridor known as the chicken neck is paramount. He added that the chicken neck connecting 8 states of the northeastern India and 3 countries, Nepal, Bhutan and Bangladesh, will be fortified by a triangular grid of army cantonments built in Chopra, Dhub.

0: हाथियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: किसने कहा है कि शोधन, एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोलो रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में

लीजिए पेश है प्रोग्राम आज के फनकार। आप सभी को राजेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में जिक्र है जानी मानी अभिनेत्री अरुणा ईरानी का।

अभिनेत्री अरुणा ईरानी की फिल्मों में शुरुआत 1961 की फिल्म गंगा जमुना से हुई थी, जिसमें उन्होंने अभिनेत्री आजरा के बचपन की भूमिका अदा की थी। गंगा जमुना फिल्म यदि दोस्तों आपने देखी हो तो आपको याद होगा ये गीत भी, जिसमें अरुणा ईरानी स्कूल के गुरुजी और बच्चों के समूह में पर्दे पर गीत गाती दिखाई देती हैं।

मुंबई में जन्मी अरुणा ईरानी के पिता फरीदुन ईरानी नाटक मंडली चलाते थे और उनकी माँ सगुना अभिनेत्री थीं। परिवार के हालात ठीक नहीं थे, इसलिए अरुणा जी को बचपन में पढ़ाई छोड़ देनी पड़ी। जिम्मेदारी का एहसास उन्हें हो चुका था क्योंकि 8 भाई बहनों में वो सबसे बड़ी थीं। इसलिए बचपन से ही फिल्मों में काम करना उनका आर्थिक सहारा बन चुका था।

0: साठ के दशक में कुछ फिल्मों में बतौर बाल कलाकार काम करने के बाद 1967 में फिल्म फर्ज में उन्हें अच्छा मौका मिला जंपिंग जैक जितेंद्र के साथ।
1: मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

दोस्तों, अरुणा ईरानी को बतौर चरित्र अभिनेत्री पहचाना जाता है, लेकिन उन्होंने कई फिल्मों में बेहतरीन सहायक भूमिकाओं में भी काम किया है और कमाल का काम किया है। कई बार तो उन्होंने खलनायिका बनकर भी पर्दे पर एक नया ही मंजर पैदा किया है। अभिनय के अलावा पर्दे पर उन्हें बेहतरीन डांसर भी माना जाता रहा है। उनके हिस्से में कई मशहूर गाने आए हैं जो सुनते ही हमारी जुबान पर चढ़ जाते हैं। 1971 की फिल्म कारवा में अरुणा जी का काम बेहद सराहा गया और चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी गीत के अलावा ये गीत भी अरुणा जी के डांस की वजह से

जहां आ रहा आया सावन झूम के, और उपकार कुछ ऐसी फिल्में हैं जिसमें अरुणा जी ने अलग अलग चरित्रों को पर्दे पर उभारा और लोगों के दिलों में जगह बनाई। 1972 में अरुणा ईरानी के फिल्मी जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आया। अभिनेता महमूद ने उन्हें तत्कालीन संघर्षशील कलाकार अमिताभ बच्चन के साथ बतौर हीरोइन मौका दिया और वो फिल्म थी बॉम्बे टू गोवा।

सहायक भूमिका निभाते हुए भी वो हीरोइन पर भारी पड़ जाती थीं और लोग अरुणा ईरानी को पसंद भी करते थे। 1973 में राज कपूर साहब की फिल्म बॉबी में छोटी लेकिन एक दिलचस्प भूमिका में उन्होंने अपनी खास छाप छोड़ी थी।

शुरुआत में अरुणा ईरानी को लेकर फिल्मकारों की सोच ये रही कि उनके रोल में कुछ नकारात्मकता का पुट बरकरार रहे, यानी उन्हें वैंप बना दिया जाए। लेकिन रफ्ता रफ्ता ये सोच बदली और अरुणा जी ने हिंदी फिल्मों में लगातार भूमिकाएं करके एक सशक्त चरित्र और सहायक भूमिकाएं निभाने वाली बेहतरीन अभिनेत्री का दर्जा हासिल किया। अभिनेता महमूद के साथ तो उनकी कई फिल्में आईं। फिल्म औलाद का ये गीत हम कैसे भुला सकते।

अपनी अदाकारी के साथ साथ अरुणा ईरानी के साथ खूबी ये रही दोस्तों कि उन पर कई हिट सुपरहिट गाने फिल्माए गए हैं जो हरदम हमें बहलाते हैं, फुसलाते हैं। द ट्रेन फिल्म का

इन गीतों और फिल्मों के अलावा हम जोली, देवी, नया जमाना, गरम मसाला, दो फूल, मिली, लैला मजनू, शालीमार, कुर्बानी, दयावान, अंगूर, फकीरा, सरगम, रेड रोज, रॉकी और बेटा जैसी फिल्मों में अरुणा ईरानी ने बेहतरीन अभिनय की छाप छोड़ी है। दोस्तों, अरुणा जी को फिल्म फेयर के अवार्ड्स के लिए कई बार नॉमिनेट किया गया, लेकिन 1984 की फिल्म आई थी पेट, प्यार और पाप, और इसके बाद 1992 की फिल्म बेटा के लिए भी अरुणा ईरानी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर

0: 1980 के उत्तरार्ध से लेकर 90 के दशक तक तमाम फिल्मों में अरुणा ईरानी ने माँ की भूमिका को अपनाकर अपनी अदाकारी को एक नया आयाम दिया। इसी दौरान कई फिल्मों में कॉमेडी का तड़का भी लगाया। लोगों ने उनके इस अंदाज को भी खूब पसंद किया।
1: कोई बुड्ढो लंबो लंबो, कोई जादुआ।

दोस्तों, 300 से भी ज्यादा फिल्मों में काम करने के बाद अरुणा ईरानी ने अपनी एक्टिंग के साथ बहुत ही गहरा संबंध बना लिया। इमोशनल और परिपक्व हो चुका था उनका अभिनय के साथ ये ताल्लुक। कुछ मराठी फिल्मों में भी उन्होंने काम किया है। सन 2000 से उन्होंने टीवी धारावाहिकों में भी एक्टिंग की शुरुआत की है, जो लगातार जारी है। कई सीरियल्स को उन्होंने प्रोड्यूस भी किया है और बड़े और छोटे दोनों ही पर्दों पर अरुणा जी

वर्तमान में भी सक्रिय हैं। फिल्म निर्देशक इंद्र कुमार उनके भाई हैं और अरुणा जी के पति हैं फिल्मकार कुकू कोहली। हालांकि सन 2012 में अरुणा जी को 57वें फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा जा चुका है, लेकिन दोस्तों अरुणा ईरानी को आज भी फिल्मों से और फिल्म देखने वालों से बेहद प्यार है, बहुत ही बेशुमार मोहब्बत है। हम उनके स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं और उन्हें शुभकामनाएं देते हैं कि वो हमेशा ही सक्रिय बनी रहें।

0: तो दोस्तों ये था आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था जानी मानी अभिनेत्री अरुणा ईरानी पर, और कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

FM 102.1 MHz पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है कार्यक्रम रजनीगंधा।

तो आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में गाए लव मैरिज फिल्म का ये नगमा।

तो अभी आपने सुना चित्र लेखा फिल्म में लता मंगेशकर को, और आइए आगे आपको सुना रहे हैं आशा भोसले की आवाज में गाए मनोरंजन फिल्म का ये नगमा।

तो अभी आपने सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को माँ और ममता फिल्म में, और आइए आगे आपको सुना रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में गाए प्रोग्राम का अगला नगमा।

एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक फिल्म से। कार्यक्रम एक फिल्म से में आज हम आपको सुनाएंगे 1993 में आई फिल्म, हिंदी फिल्म रंग। इस फिल्म के गीत आपको सुनाएंगे। इस फिल्म को निर्देशित किया था तलत जानी ने।

और नदीम श्रवण की जोड़ी ने इस संगीत को हिट किया और गाने के बोल लिखे समीर और सुरेंद्र साथी ने लिखे। तो आइए प्रोग्राम का पहला नगमा सुनते हैं अलका याग्निक और कुमार शानू की आवाज़ में।

तो आप सुन रहे कार्यक्रम एक फिल्म से में रंग फिल्म के गीतों को, और आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं अलका याग्निक और कुमार शानू की आवाज में गाए प्रोग्राम का अगला नगमा।

तो अभी आप सुने थे कार्यक्रम एक फिल्म से FM 102.1 MHz पर। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 11:05 में आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। हमारे अगले प्रसारण के लिए कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया में विकास और संसाधनों को लेकर कई चिंताओं के बीच भारत को वैश्विक स्तर पर विकास के उज्ज्वल उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है। नई दिल्ली में आज शाम इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर फोरम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत विकास की गति बनाए रखने के लिए लगातार कई कदम उठा रहा है और सुधारों के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों की नीति लोगों को अभाव में रखने की थी, ताकि वे बुनियादी जरूरतों के लिए भी सरकार के सामने हाथ फैलाने को मजबूर रहें। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार केवल नियमों में बदलाव नहीं कर रही, बल्कि नियमों से जुड़ी पूरी नीति में बदलाव ला रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक में स्टार्टअप संस्थापकों ने सरकार के फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सिलीगुड़ी के कावाखाली मैदान में 3 नए आपराधिक कानूनों पर 6 दिन की जागरूकता प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के नवनिर्मित भवन और नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 20 बिस्तरों वाला नशा मुक्ति केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के

0: में आपराधिक कानूनों से नागरिकों की सुरक्षा और मजबूत होगी। श्री शाह ने कहा कि भाजपा के लिए देश, राज्य और जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।
1: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि बीएसएफ और एसएसबी के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया, कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता।
0: श्री शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए के बारे में कहा कि पुराने दंड कानूनों को समाप्त कर नई भारतीय न्याय संहिता बनाई गई है जो प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता और समय सीमा पर आधारित है। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है, हालांकि इसका उत्पादन अनुमान से कम रहने की संभावना है। सरकार ने चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को देखते हुए पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतें स्थिर रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि वह स्थिति पर करीबी नजर रख रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को इथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी के इस्तेमाल से जोड़ना सही नहीं है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगले महीने की 5 तारीख को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इन शिक्षकों का चयन जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 चरणों की चयन प्रक्रिया के जरिए किया गया है। पुरस्कार के लिए चुने गए 48 शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से हैं। इनमें 26 पुरुष और 22 महिला शिक्षक शामिल हैं। सरकार ने कहा है कि संशोधित व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 29 प्रस्तावों के बारे में सूचना मिली है। इनमें 4,800 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। नई दिल्ली में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज भारत की तेसा जौली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने महिला डबल्स में चीन की यी फैन और झांग शू की जोड़ी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज Read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi has said India is being seen as a bright spot of growth throughout the globe, even as the world has many concerns regarding growth and resources are getting weaponized. Addressing the Economic Times World Leaders Forum in New Delhi this evening, the Prime Minister said, India continues to take several steps to ensure continued growth momentum and reforms are commitment of his government.
3: दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों। रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा, अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा, लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। भारत ने पिछले 10-12 साल में अपनी 25 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है।
2: The Prime Minister said India has moved away from production-linked punishment model during earlier governments to production-linked incentives now. He alleged it was policy of earlier regimes to keep people in scarcity so that they beg before the government for even basic needs. Mr. Modi said license raj of earlier governments was used to increase unemployment while his government's production-linked incentive model creating opportunities. Talking about the seven powers representing 7 key streams which he spoke about from the Red Fort, the Prime Minister highlighted that 7 such sectors include manufacturing power, agriculture and food processing, technology and innovation, and the green and blue economies on which India is placing immense focus. He said India is currently undertaking next generation reforms at the policy level to secure future and the government is implementing reforms in governance and ease of living. He said reform is not a compulsion as it is government's commitment and conviction. The Prime Minister highlighted that the rapid